0: 印度德里广播电台学子普通话节目播送到这里，谢谢大家收听，再会。
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम चिंतन। आइए सुनते हैं रामचरितमानस से अयोध्या कांड का भाग 54।

पुत्र वियोग में राजा दशरथ का देहांत हो चुका है। शोक संतप्त अयोध्यावासी और महलों में रानियां विलाप कर रही हैं। सभी लोग कैकई की भर्त्सना कर रहे हैं, जिसने जैसे संसार भर की दृष्टि ही छीन ली है। किंतु जगत अपनी गति से चलता रहता है। कुलगुरु वशिष्ठ ने समयानुकूल वचनों द्वारा ज्ञान विज्ञान के प्रकाश से सबके शोक का अंधकार दूर कर तेल भरी नौका में राजा के पार्थिव शरीर को रखवाया। फिर ननिहाल से भरत तथा शत्रुघ्न को तत्काल बुलाने के लिए दूत भेजे, किंतु उन्हें आदेश दिया कि वहां महाराज की मृत्यु का समाचार उन्हें न सुनाएं। दोनों भाइयों से मात्र इतना कहना है कि कुलगुरु ने बुला भेजा है। इधर अयोध्या में जब से अनर्थ प्रारंभ हुए, तभी से भरत को अपशकुन होने लगे थे। उन्हें भयंकर स्वप्न आते और नींद उचट जाने पर अशुभ कल्पनाएं मन में जगने लगती थीं। वो अनिष्ट शांति के लिए तरह तरह के उपाय करते, दान पुण्य तथा भगवान शंकर से माता पिता और भाइयों के कुशल क्षेम की प्रार्थना करते। दूतों से संदेश सुनकर दोनों भाई वायुवेग से अयोध्या लौट चले। नगर में प्रवेश करते ही चारों ओर उन्हें अपशकुन दिखने लगी।

0: Pia dan Anita Das dengan semua staf dari Seksi Bahasa Indonesia mengucapkan selamat pagi, selamat tinggal, sampai berjumpa kembali besok pada waktu dan gelombang yang sama. Terima kasih banyak.
1: Namaskar, Akashwani se Samachar Prabhat ke saath main Farhat Naz. सरकार ने सब्सिडी वाली रसोई गैस की बुकिंग के लिए 1 अक्टूबर से आधार से जुड़ा बायोमेट्रिक प्रमाणन जरूरी किया। 100 सप्ताह के नशा मुक्त युवा अभियान के अंतर्गत आज देशभर में 1067 स्थानों पर राष्ट्रीय संकल्प समारोह। मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने और हटाने में सहायता के लिए आज दिल्ली में सभी मतदान केंद्रों पर विशेष शिविर का आयोजन। मौसम विभाग ने आज तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरलम, कर्नाटक और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया और उज्बेकिस्तान में शतरंज ओलंपियाड में भारतीय पुरुष टीम ने स्पेन को 3-1 से और महिला टीम ने मंगोलिया को 3-1 से हराया। अब समाचार विस्तार से। सब्सिडी वाले रसोई गैस की बुकिंग के लिए 1 अक्टूबर से आधार से जुड़ा बायोमेट्रिक प्रमाणन जरूरी होगा। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा है कि इसका उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि सब्सिडी वाला एलपीजी सिलेंडर केवल पात्र परिवारों को मिले। एक रिपोर्ट।
2: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि इस प्रक्रिया का उद्देश्य किसी भी पात्र परिवार को एलपीजी से वंचित करना नहीं है। जो ग्राहक पहले ही प्रमाणीकरण पूरा कर चुके हैं, उन्हें दोबारा यह कराने की जरूरत नहीं है। मंत्रालय ने कहा कि प्रत्येक कनेक्शन को आधार से सत्यापित उपभोक्ता से जोड़ने से सब्सिडी वाले घरेलू सिलेंडरों का व्यावसायिक और औद्योगिक इस्तेमाल के लिए होने वाले दुरुपयोग को रोकने में मदद मिलेगी। बायोमेट्रिक आधार प्रमाण सिलेंडर की डिलीवरी के समय वितरक के शोरूम पर या तेल विपणन कंपनियों के मोबाइल ऐप के माध्यम से किया जा सकता है। सुपर्णा सैकिया के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: विकसित भारत के लिए 100 सप्ताह के नशा मुक्त युवा अभियान के अंतर्गत आज देशभर में युवा एकजुट हो रहे हैं। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के अनुसार राष्ट्रीय संकल्प समारोह 1067 स्थानों पर होगा। समारोह में नशा मुक्ति शपथ, हस्ताक्षर अभियान, नुक्कड़ नाटक, नारा लेखन और चर्चाओं के जरिए अभियान का संदेश सीधे युवाओं तक पहुंचाया जाएगा। इस अभियान में आध्यात्मिक समूह, प्रमुख व्यापारिक समूह, कॉलेज और स्थानीय संगठन शामिल हैं। ये आयोजन एक महत्वपूर्ण क्षण होगा जो स्वस्थ विकल्पों और नशा मुक्त भविष्य के प्रति साझा प्रतिबद्धता के लिए युवाओं को एकजुट करेगा। पंजाब में भारतीय जनता पार्टी की नशा मुक्त पंजाब यात्रा को अपार जन समर्थन मिल रहा है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने इसकी शुरुआत 18 सितंबर को पठानकोट से की थी। ये अभियान 4 चरणों का है। एक रिपोर्ट।
3: यह 13 दिन की नशा मुक्त पंजाब यात्रा पंजाब के सामने मौजूदा 3 बड़ी चुनौतियों पर केंद्रित है। ये चुनौतियां हैं नशों का बढ़ता खतरा, बिगड़ती कानून व्यवस्था और प्रशासन के हर स्तर पर भ्रष्टाचार। यह यात्रा राज्य में 4000 किलोमीटर का सफर तय करके सभी 117 विधानसभा क्षेत्रों के लोगों को नशों के खिलाफ लड़ाई के लिए एकजुट करेगी। तीसरी यात्रा आज केंद्रीय कानून और न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल फाजिल्का के सादिकी बॉर्डर से शुरू करेंगे और कल चौथे फेज को केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बठिंडा के तलवंडी साबो से हरी झंडी दिखाएंगे। राजेश बाली, आकाशवाणी समाचार, जलंधर।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल दिया है। श्री मोदी ने कल 20वें रोजगार मेले में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विभिन्न सरकारी संगठनों में 51,000 से अधिक नवनियुक्त युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किए। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार पिछले कुछ वर्षों से युवाओं को भविष्य की चुनौतियों के लिए आवश्यक कौशल और अवसर उपलब्ध कराने पर लगातार ध्यान दे रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। इस दौरान जनसेवा से देश सेवा मंत्र के साथ सेवा और सुशासन उनका ध्येय रहा है और इसी सोच के साथ सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत बनाने के लिए संकल्पित है। ये प्रतिबद्धता समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण को बढ़ावा दे रही है जिससे लोगों के जीवन में बदलाव आ रहा है। इस विशेष श्रृंखला में आज हम बात करेंगे किस तरह वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी को लागू कर इस सोच को अमल मिलाया गया।
4: वस्तु एवं सेवा कर यानी GST को 2017 में कई केंद्रीय और राज्य करों और सीमा जांच चौकियों के कारण बटे हुए घरेलू बाजार को एकीकृत करने के उद्देश्य से लागू किया गया था। 17 करों और 13 उपकरों

0: को एक साझा व्यवस्था के तहत लाया गया, जिससे एक देश एक कर एक बाजार की अवधारणा व्यवहारिक रूप से साकार हुई। जीएसटी दरों में हाल के सुधारों का उद्योग और आम लोगों दोनों ने स्वागत किया है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में MVIRDC वर्ल्ड ट्रेड सेंटर मुंबई और ऑल इंडिया एसोसिएशन ऑफ इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष डॉक्टर विजय कलंत्री ने कहा,
1: जो हाल ही में जीएसटी का जो रिडक्शन किया है गवर्नमेंट ने, वो जो कमी की है उससे रेशनलाइज किया है टैक्स स्ट्रक्चर। कई चीजों पे बहुत ज्यादा था, कई चीजों पे पड़ नहीं था, तो रेशनलाइज करने से गवर्नमेंट की इनकम बढ़ी है, कम नहीं हुई है। और ऐसे ही जहां जहां गवर्नमेंट को उचित लगे कि यहाँ ज्यादा है या जरूरी है कम करना, और यहाँ उम्मीद है कि यहाँ बढ़ाए तो फर्क नहीं पड़ेगा लग्जरी और गुड्स में या लग्जरी आइटम्स में, तो वो बहुत अच्छी सुविधा रहेगी कॉमन मैन के लिए और एक बिजनेस कम्युनिटी के लिए।
0: मुंबई की नेहा कुलकर्णी ने कहा कि आवश्यक वस्तुओं पर जीएसटी कम होने से उनके परिवार का मासिक खर्च घटा है और बचत भी काफी बढ़ी है।
2: हमारे घर का महीने का बजट जो है वो बनाते समय रोजमर्रा की चीजों पर काफी खर्च हो जाता था, जैसे शैम्पू, टूथपेस्ट और दूसरी हाउस होल्ड आइटम्स। इन चीजों पर जीएसटी घटाकर 5% कर दिया गया है। दूध और कई डेयरी प्रोडक्ट्स पर भी जीएसटी कम हुआ है, तो डेफिनेटली थोड़ी राहत मिल रही है।
0: पिछले 9 वर्षों में जीएसटी सुधारों के कर व्यवस्था को सरल बनाया है, अनुपालन का बोझ कम किया है और उपभोक्ताओं तथा कारोबारियों को अधिक राहत दी है। प्रार्थना, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
3: अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ABBP ने दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव में 3 प्रमुख पद जीत लिए हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृहमंत्री अमित शाह ने विश्वविद्यालय चुनाव में ABBP की सफलता पर बधाई दी है। श्री सिंह ने कहा कि ये जीत राष्ट्र प्रथम नीति में युवाओं के अटूट विश्वास का प्रतीक है। उधर श्री शाह ने कहा कि ये जीत छात्र कल्याण के लिए ABBP की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। ये समाचार हमारी न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
4: चलते फिरते खबरों से जुड़े रहिए, expert@airnewshindi को फॉलो करें और PB शब्द पर आकाशवाणी समाचार सुने।
3: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। निर्वाचन आयोग आज दिल्ली में सभी मतदान केंद्रों पर विशेष शिविर आयोजित करेगा। इस दौरान मतदाता सूची में नए नाम जोड़े जा सकेंगे। किसी नाम को जोड़ने के प्रस्ताव या हटाए जाने पर आपत्ति दर्ज की जा सकेगी और मतदाता सूची के विवरण को ठीक कराया जा सकेगा। दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी अशोक कुमार ने विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के संबंध में कहा कि सुनवाई के दौरान गैर सूचीबद्ध दस्तावेज पर भी विचार किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि अलग अलग मामलों में नाम, जन्मतिथि या अन्य जानकारी से जुड़े दस्तावेज पर विचार किया जाएगा।
5: अगर किसी के नाम में मिसमैच है या किसी को DOB में मिसमैच है तो उसके सामने भी ग्राउंड लिखा हुआ है कि उसको नोटिस क्यों आएगा, और नोटिस लिस्ट में है। अब ये भी ना सोचे कि मुझे मेरा नाम तो लिस्ट में लेकिन अभी तक मुझे नोटिस नहीं आया, तो नोटिस स्टैगर्ड मैनर में जाएगी, क्योंकि वो हियरिंग होनी है, तो हियरिंग ERO के यहाँ पे होनी है। उसमें प्लेस लिखा होता है, एक दिन में एक लिमिट होती है कि कितने विजिटर्स को वो हैंडल कर सकते हैं, तो उसके हिसाब से वो स्टैगर्ड मैनर में नोटिस दे रहे हैं, और जैसे जैसे नोटिस जो ऑलरेडी जनरेटेड है वो डिस्पोज होते जाएंगे, उसी हिसाब से सक्सेसिव नोटिसेस इश्यू होते जाएंगे।
3: दिल्ली पुलिस ने द्वारका जिले में अवैध रूप से और वीजा अवधि समाप्त होने के बावजूद रह रहे विदेशी नागरिकों की पहचान के लिए विशेष अभियान चलाया है। इसका उद्देश्य ऐसे विदेशी नागरिकों की पहचान करना, उनके दस्तावेज का सत्यापन करना, आपराधिक गतिविधियों में शामिल लोगों का पता लगाना और नियमानुसार कार्रवाई करना है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि सेमीकंडक्टर उद्योग को उन देशों के साइबर हमलों और ऐसी बाधाओं के लिए तैयार रहना चाहिए जो नहीं चाहते कि भारत इस क्षेत्र में आगे बढ़े। एक मीडिया संस्थान से बातचीत में उन्होंने कहा कि भारत को संभावित भू राजनीतिक जोखिमों को लेकर सतर्क रहना होगा, क्योंकि अब वे चिप डिजाइन और निर्माण करने वाले सक्षम देश के रूप में उभर रहा है। इसे कई कंपनियां और देश अपने लिए खतरा मान सकते हैं।
6: भारत चिप्स डिजाइन और निर्माण करने वाले देश के तौर पर उभर रहा है, इसलिए हमें संभावित भौगोलिक राजनीतिक जोखिमों पर लगातार नजर रखनी होगी। कई दूसरे स्थापित प्रतिभागी इसे एक चुनौती के तौर पर देखेंगे, हमें दूसरे प्रतिभागियों को लेकर भी सावधान रहना होगा। इसलिए मैंने उद्योग जगत से साफ साफ कहा है, साइबर हमलों और किसी भी तरह के व्यवधान के लिए तैयार रहें।
3: मौसम विभाग ने आंध्र प्रदेश के तटवर्ती क्षेत्रों कर्नाटक केरलम माहे तमिलनाडु तेलंगाना और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में आज तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। मध्य महाराष्ट्र ओडिशा कर्नाटक तमिलनाडु पुदुचेरी और कराईकल में कल तक गरज चमक और तेज हवा चलने की संभावना है। वहीं

0: सेना का ये नौवां विमान था। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि भारत नेपाल के पुनर्वास और राहत कार्यों में लगातार सहयोग कर रहा है। और अब खेल जगत की खबरों के साथ हैं वीरेंद्र कौशिक।
1: चेस ओलंपियाड में कल भारतीय पुरुष टीम ने स्पेन को 3-1 से हरा दिया। उज्बेकिस्तान के समरकंद में हुए मुकाबले में विश्व चैंपियन डिगो केश ने पूर्व वर्ल्ड चैंपियनशिप चैलेंजर एलेक्सी शिरोव को हराकर टीम की जीत में अहम भूमिका निभाई। वहीं आर प्रणानंद का डेविड एंटोन गुइजारो के साथ और निहाल सरीन का जेमे सैंटोस लाटासा के साथ मुकाबला ड्रॉ रहा। महिला वर्ग में भारत ने मंगोलिया को 3-1 से हरा दिया। प्रतियोगिता में आज 46वें फिडे चेस ओलंपियाड का 5वां राउंड खेला जाएगा। मुकाबला भारतीय समय के अनुसार दोपहर 3:30 बजे होगा। 20वें एशियाई खेलों में आज भारत की टैकबॉल खिलाड़ी क्यूमसी डिसूजा कांस्य पदक के लिए जापान की युइना साकामोतो से खेलेंगी। भारतीय महिला हॉकी टीम का ग्रुप चरण के पहले मैच में आज उज्बेकिस्तान से सामना होगा। उधर पुरुष हॉकी टीम अपने पहले मैच में इंडोनेशिया से भिड़ेगी। प्रतियोगिता का महिला क्रिकेट सेमीफाइनल आज भारत और बांग्लादेश के बीच खेला जाएगा। ये नॉकआउट मैच भारतीय समय के अनुसार सुबह 10:30 बजे से होगा। समाचार कक्ष से मैं वीरेंद्र कौशिक।
0: अमेरिका ने अपने नागरिकों को आगाह किया है कि वे पश्चिम एशिया की यात्रा बहुत सोच समझ कर ही करें। अमेरिकी प्रशासन ने यह चेतावनी क्षेत्र में बढ़ते तनाव, तेजी से स्थिति बिगड़ने की संभावना, उड़ानों में रुकावट और अमेरिकी ठिकानों पर हमले की आशंका को देखते हुए जारी किया है। यमन के हूती लड़ाकों ने सऊदी अरब की तरफ मिसाइल और ड्रोन से हमले किए हैं। अमरीकी विदेश विभाग की चेतावनी में पश्चिम एशिया में मौजूद अमरीकी नागरिकों को ज्यादा सतर्क रहने को कहा गया है, क्योंकि उड़ानें रद्द हो सकती हैं, हवाई मार्ग बंद हो सकते हैं और यात्रा संबंधी अन्य परेशानियां भी हो सकती हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: अपडेट रहें, आगे रहें। expert@airnewshindi और इंस्टाग्राम पर AIR न्यूज अलर्ट्स को फॉलो करें।
0: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ है वैष्णवी।
3: धन्यवाद फरहत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करने का समाचार सभी समाचार पत्रों ने दिया है। लोकसत्य ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शब्द प्रकाशित किए हैं। विकसित देशों में कार्बन उत्सर्जन भारत से 6 गुना अधिक। राष्ट्र ने COP21 के सभी जलवायु लक्ष्य समय से पहले पूरे किए। हिन्दुस्तान लिखता है, दुनिया को जलवायु चुनौतियों का समाधान दे रहा भारत। दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ डूसू चुनाव में 17 साल बाद किसी निर्दलीय उम्मीदवार के जीतने का समाचार सभी अखबारों ने सचित्र दिया है। जनसत्ता लिखता है, करीब 1.5 दशक से डूसू के चारों पदों पर एबीवीपी और एनएसयूआई का रहा है कब्जा। अमर उजाला की सुर्खी है, डूसू में फिर भगवा, एबीवीपी ने 3 सीटें जीती। जापान के नागोया शहर में 20वें एशियन गेम्स के भव्य उद्घाटन समारोह की तस्वीरें सभी समाचार पत्रों ने सचित्र दी है। पंजाब केसरी लिखता है, नागोया में एशियाड का आगाज, मनु भाकर और पवन सहरावत ने फहराया तिरंगा। मयूर विहार से सरायका लिखा, 5 मिनट में 3.5 किलोमीटर लंबा एलिवेटेड कॉरिडोर बनकर तैयार, 29 सितंबर को होगा शुरू। दैनिक भास्कर की खबर है। राजस्थान पत्रिका ने ईरान में हिजाब कानून को लेकर सख्ती के बीच राजधानी तेहरान में महिलाओं के रनिंग इवेंट के ध्यान खींचने का समाचार दिया है। पत्र लिखता है, बिना हिजाब के तेहरान की सड़कों पर 10 किलोमीटर दौड़ी सैकड़ों महिलाएं। ग्रीनलैंड पर कब्जे के बजाय अमेरिका करेगा इसकी चौकीदारी। ग्रीनलैंड और अमेरिका में हुआ करार, आर्कटिक में थमा तनाव, दैनिक जागरण की सुर्खी है। पत्र लिखता है, संयुक्त राष्ट्र महासभा में हस्ताक्षर की संभावना।
0: धन्यवाद वैष्णवी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार ने सब्सिडी वाली रसोई गैस की बुकिंग के लिए 1 अक्टूबर से आधार से जुड़ा बायोमेट्रिक प्रमाणन जरूरी किया। 100 सप्ताह के नशा मुक्त युवा अभियान के अंतर्गत आज देश भर में 1067 स्थानों पर राष्ट्रीय संकल्प समारोह। मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने और हटाने में सहायता के लिए आज दिल्ली में सभी मतदान केंद्रों पर विशेष शिविर का आयोजन। मौसम विभाग ने आज तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरलम, कर्नाटक और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया। और उज्बेकिस्तान में शतरंज ओलंपियाड में भारतीय पुरुष टीम ने स्पेन को 3-1 से और महिला टीम ने मंगोलिया को 3-1 से हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज़।

0: आदाब खबरनामे के साथ मैं जमीर रजवी। सबसे पहले इस वक्त की सुर्खियां। हुकूमत ने अगले महीने की एक तारीख से सब्सिडी वाले एलपीजी सिलेंडरों की रिफिलिंग के लिए आधार बायोमेट्रिक तस्दीक को लाजमी करार दिया है। राष्ट्रीय संकल्प समारोह आज मुल्क भर में 1067 मकामात पर मुनक्किद किया जा रहा है, जो कि 100 हफ्तों तक जारी रहने वाले नशा मुक्त युवा अभियान का हिस्सा है। इंतखाबी कमीशन आज दिल्ली के तमाम पोलिंग मराकज पर खुसूसी कैंपों का इनेकाद करेगा, ताकि शहरियों को वोटर फहरिस्तों में नाम शामिल करने या उन्हें हजफ करने से मुतालिक मदद फराहम की जा सके। भारतीय महकमे मौसमियात ने आज साहिली आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरलम, कर्नाटक और अंडमान और निकोबार जजायर में शदीद बारिश की पेशगोई की है। और समरकंद में शतरंज ओलंपियाड में भारत की मर्दों की टीम ने स्पेन के खिलाफ 3-1 से शानदार कामयाबी हासिल की, जबकि खवातीन की भारतीय टीम ने भी मंगोलिया को 3-1 से हरा दिया। अब खबरें तफसील से। हुकूमत ने कहा है कि इस साल 1 अक्टूबर से सब्सिडी वाले घरेलू इस्तेमाल के एलपीजी सिलेंडर के लिए बायोमेट्रिक आधार तस्दीक जरूरी होगी। काबिल इतलाक सब्सिडी वाले घरेलू एलपीजी ग्राहकों को इन मराकज से सिलेंडर हासिल करने के लिए बायोमेट्रिक आधार तस्दीक का अमल पूरा करना होगा। तफसील हमारे नामानिगार से।
1: बायोमेट्रिक आधार तस्दीक इस बात को यकीनी बनाती है कि सब्सिडी वाले एलपीजी सिलेंडर सिर्फ मजाज और अहल कुंभों तक ही पहुंची। हर कनेक्शन को आधार तस्दीक से जोड़ने से घरेलू इस्तेमाल के गैस सिलेंडरों के कमर्शियल और सनती इस्तेमाल में डायवर्जन की रोकथाम होगी। इसके अलावा इससे जाली और गैर मजाज कनेक्शन खत्म करने में भी मदद मिलेगी और सब्सिडी फराहम करने का अमल शफाफ और मरकूज हो सकेगा। वजारत ने कहा है कि बायोमेट्रिक आधार तस्दीक का मकसद किसी भी मजाज कुंबे को एलपीजी फराहम करने से इनकार करना नहीं है। वहीं वजारत ने यह भी कहा कि हर ग्राहक के पास इस अमल को पूरा करने के कई आसान तरीके दस्तियाब होंगे। वजारत ने कहा कि 27 करोड़ 43 लाख सार्फीन पहले ही इस अमल को पूरा कर चुके हैं और उन्हें अब कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। तस्दीक का यह अमल सिलेंडर की डिलीवरी लेते वक्त डिस्ट्रीब्यूटर के शोरूम जाकर या तेल मार्केटिंग कंपनियों के एप्स पर भी पूरा किया जा सकता है। पेट्रोलियम और कुदरती गैस की वजारत ने अब तक बायोमेट्रिक तस्दीक न करने वाले सार्फीन से अपील की है कि वह इस काम को 1 अक्टूबर 2026 से पहले मुकम्मल कर ले। नई दिल्ली से सकलैन अख्तर की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं फैसल खान।
0: विकसित भारत के लिए नशा मुक्त युवा अभियान के 100 हफ्ते के तहत आज मुल्क भर में नौजवानों की शमूलियत वाले प्रोग्राम होंगे। नौजवानों के उमूर और खेलों की वजारत ने बताया कि मुल्क भर के 1067 मकामात पर राष्ट्रीय संकल्प समारोह का इनेकाद होगा। इन मकामात में 471 जिले माय भारत दफातर और 596 शराकतदार तंजीमों के मकामात शामिल होंगे। ये तकरीब मुल्कगीर सतह पर नौजवानों की शमूलियत का अहम लम्हा होगा, जिसमें माय भारत, शराकतदार तंजीमें और नौजवान अफराद सेहतमंदाना फैसलों और नशा मुक्त मुस्तकबिल के अहद के लिए यकजा होंगे। भारतीय जनता पार्टी पंजाब की नशा मुक्त पंजाब यात्रा, जिसे पार्टी के कौमी सदर नितिन नबीन ने 18 सितंबर को सरहदी जिले पठानकोट से शुरू किया था, रियासत के अवाम की जानिब से इसे जबरदस्त पजीराई मिल रही है। दिल्ली की वजीराला रेखा गुप्ता ने कल फतेहगढ़ साहिब से यात्रा के 4 मरहलों में से दूसरे मरहले का आगाज करते हुए इसे पंजाब में एक नई तहरीक का आगाज करार दिया। उन्होंने कहा कि नशा मुक्त पंजाब यात्रा महज एक सियासी प्रोग्राम नहीं, बल्कि पंजाब को मनुष्यात, जरायम और खौफ से आजाद कराने की इज्तिमाई कार्रवाई की अपील है। तफसील हमारे नामानिगार से।
2: 13 दिन तक जारी रहने वाली नशा मुक्त पंजाब यात्रा, जो भाजपा द नारा नशा मुकाना सारा के नारे के साथ शुरू हुई है, पंजाब को दरपेश 3 बड़े चैलेंजों पर तवज्जो मरकूज कर रही है। ये चैलेंजेस हैं मनुष्यात का बढ़ता हुआ मसला, अमन अमान की बिगड़ती सूरत हाल और हुक्मरानी की हर सतह पर बदनवानी। यात्रा रियासत में 4000 किलोमीटर का सफर तय करेगी और तमाम 117 संभली हलकों से लोगों को मुतहरिक करेगी, ताकि मनुष्यात के खिलाफ जंग को एक बड़े अवामी एहतजाज तहरीक में तब्दील किया जा सके। तीसरी यात्रा आज कानून इंसाफ के मरकजी वजीर ममलकत अर्जुन राम मेघवाल की जानिब से फाजिलका के सादिकी सरहदी इलाके से शुरू की जाएगी। कल चौथे मरहले का आगाज मरकजी वजीर ज़राअत शिवराज सिंह चौहान और हरियाणा के वजीर आला नायब सिंह सैनी की जानिब से

0: भटिंडा के तलवंडी साबोह से किया जाएगा। नशा मुक्त पंजाब यात्रा 30 सितंबर को जालंधर में इख्तिताम पजीर होगी, जहां मरकजी वजीर दाखला अमित शाह की शिरकत मुतवक्के है। जालंधर से राजेश बाली की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं मोहम्मद अम्मार।
1: वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 20वें रोजगार मेले में मुख्तलिफ सरकारी इदारों में नई तकरीरी पाने वाले 51,000 से ज्यादा नौजवानों में तकरीरी नामे तकसीम किए। इस मौके पर खिताब करते हुए वज़ीर आज़म ने विकसित भारत और आत्मनिर्भर भारत की तामीर में नौजवानों के अहम रोल पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि मरकजी हुकूमत ने हालिया बरसों में नौजवानों को मुस्तकबिल के लिए ज़रूरी महारतें और मौके फराहम करने पर मुसलसल तवज्जो मरकूज की है।
2: बीते वर्षों में भारत सरकार का निरंतर जोर युवाओं को भविष्य के लिए तैयार करने पर रहा है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, स्किल इंडिया मिशन, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना या अप्रेंटिसशिप को बढ़ावा देने का प्रयास, हमारी कोशिश है कि युवाओं की पढ़ाई और उनकी स्किल्स बदलती इकोनॉमी की जरूरतों के साथ चले। जैसे एक उदाहरण है पीएम सेतु। इस योजना के माध्यम से 60,000 करोड़ रुपए के निवेश से 1,000 सरकारी आईटीआईस को आधुनिक बनाया जा रहा है। इसमें इंडस्ट्री की सीधी भागीदारी सुनिश्चित की गई है।
1: वजीर आजम नरेंद्र मोदी आवामी खिदमत के 25 साल मुकम्मल कर रहे हैं। उनका यह सफर जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और मुसलसल और अंतक अजम से इबारत है, जो आज भी मजबूती के साथ जारी है। खिदमत और बेहतर हुक्मरानी के इसी नजरिए से रहनुमाई हासिल करते हुए हुकूमत साल 2047 तक विकसित भारत के हदफ के लिए हुसूल के लिए मुसलसल काम कर रही है। जामे तरक्की और समाज को बाइख्तियार बनाने के जरिए ये अज़्म लोगों की जिंदगियों में तब्दीली ला रहा है। आज सेवा संकल्प अभियान की खसूसी सीरीज के तहत अशिया और खिदमत टैक्स GST के तारुफ के जरिए इस नजरिए को कार्रवाई में बदलने का जायजा पेश किया जा रहा है।
0: अशिया और खिदमात टैक्स GST साल 2017 में मुतारफ कराया गया था, जिसका मकसद मुख्तलिफ मरकजी और रियासती टैक्सों में तकसीम बाजार को वसीतर टैक्स निजाम में लाना था। इस मुश्तरका फ्रेमवर्क के तहत 17 टैक्सों और 13 सेस को यकजा किया गया और एक मुल्क एक टैक्स एक बाजार को हकीकी शक्ल दी गई। GST से पहले बैन रियासती नकलो हरकत में मुतादिद टैक्स, कागजी कार्रवाई और तवील इंतजार शामिल होता था। GST शरहों की मौजूदा असलाहत का सनत और आम आदमी दोनों ने खैर मकदम किया। आकाशवाणी न्यूज से बात करते हुए MVIRDC वर्ल्ड ट्रेड सेंटर मुंबई के चेयरमैन और ऑल इंडिया एसोसिएशन ऑफ इंडस्ट्रीज के सर डॉक्टर विजय कलंतरी ने कहा कि टैक्स शरहों को मौजूदा सूरत हाल के मुताबिक हम आहंग करने से शहरियों की टैक्स अदायगी के तहत हौसला अफजाई हुई है। मुंबई की पेशावर नेहा कुलकर्णी ने कहा कि जरूरी अशिया पर GST की गई कमी से उनके कुंबे के माहाना अखराजात में कमी आई है और बजट में इजाफा हुआ है। पिछले 9 साल के दौरान GST इस्लाहात में टैक्स के निजाम को आसान बनाया है, जाब्तों की तामील को सहल किया है और सार्फीन और कारोबारियों को राहत पहुंचाई है। इसके नतीजे में शहरियों की जिंदगी में बड़े पैमाने पर तब्दीलियां रूनुमा हुई हैं। मुंबई से प्रार्थना की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं मोहम्मद अम्मार।
1: ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। इंतखाबी कमीशन आज कौमी राजधानी दिल्ली के तमाम पोलिंग मराकज पर खसूसी कैंप मुनक्किद करेगा। दिन भर जारी रहने वाली इस मुहिम का मकसद शहरियों को वोटर फहरिस्त में नए नाम शामिल कराने, मुजवजा नामों की शमूलियत या अखराज पर एतराज दर्ज कराने और वोटर फहरिस्त में मौजूद मालूमात और तफसीलात दुरुस्त कराने में मदद फराहम करना है। बूथ सतह के अफसरान BLOs मुकर्रा पोलिंग बूथ्स पर मौजूद रहेंगे और दरख्वास्तें वसूल करेंगे। नए वोटर के इंदराज के लिए फॉर्म 6, किसी नाम के इंदराज पर एतराज या नाम हजफ कराने के लिए फॉर्म 7, जबकि वोटर फहरिस्तों में किसी भी मालूमात को दुरुस्त कराने या अपडेट कराने के लिए फॉर्म 8 जमा कराया जा सकता है। कौमी राजधानी में जारी खसूसी जाम नजरसानी SIR के सिलसिले में सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए दिल्ली के चीफ इलेक्टोरल अफसर अशोक कुमार ने वाजे किया कि इंतखाबी रजिस्ट्रेशन अफसरान ERO समाअत के दौरान नोटिस में दर्ज दस्तावेजात के अलावा दीगर दस्तावेजात को भी केस की नौयत के मुताबिक जेर गौर ला सकते हैं। उन्होंने कहा कि नोटिस के साथ मुंसलिक दस्तावेजात की फहरिस्त हतमी या मुकम्मल फहरिस्त नहीं है। वोटर अपना नाम, तारीख पैदाइश या नोटिस में मजकूर दीगर तफसीलात साबित करने के लिए मुतालिका दस्तावेजात पेश कर सकते हैं, जिन पर

0: ईआरओ हर मामले को अलग से देखते हुए फैसला करेगा।
1: अगर किसी के नाम में मिसमैच है या किसी को डीओबी में मिसमैच है तो उसके सामने भी ग्राउंड लिखा हुआ है कि उसको नोटिस क्यों आएगा और नोटिस लिस्ट में है। अब ये भी ना सोचे कि मुझे मेरा नाम तो लिस्ट में लेकिन अभी तक मुझे नोटिस नहीं आया, तो नोटिस स्टैगर्ड मैनर में जाएगी क्योंकि वो हियरिंग होनी है, तो हियरिंग ईआरओ के यहाँ पे होनी है। उसमें प्लेस लिखा होता है, एक दिन में एक लिमिट होती है कि कितने विजिटर्स को वो हैंडल कर सकते हैं, तो उसके हिसाब से वो स्टैगर्ड मैनर में नोटिस दे रहे हैं और जैसे जैसे नोटिस जो ऑलरेडी जनरेटेड है वो डिस्पोज होते जाएंगे, उसी हिसाब से सक्सेसिव नोटिसेस इश्यू होते जाएंगे।
0: अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एबीवीपी ने दिल्ली यूनिवर्सिटी तलबा यूनियन डूसू इंतखाबात में 3 अहम ओहदों पर कामयाबी हासिल की है। एबीवीपी के यश दबास सदर मुंतखब हुए हैं जबकि रिया चावड़ी ने सेक्रेटरी और लक्ष्य राज सिंह ने ज्वाइंट सेक्रेटरी के ओहदों पर जीत दर्ज की है। वजीर दिफा राजनाथ सिंह और वजीर दाखिला अमित शाह ने डूसू इंतखाबात में जीत हासिल करने पर एबीवीपी को मुबारकबाद दी है। ईरान ने अमरीका के साथ मुजाकिरात दोबारा शुरू करने के लिए बैन अल-अक़वामी सालिसकारों को अपनी शरायत से वाकिफ करा दिया है। वहीं ईरान ने यह भी इंतबाह दिया है कि अगर वाशिंगटन उसके मुतालबात को ठुकरा देता है तो तेहरान फैसलाकुन जंग के लिए तैयार है। इस दौरान अमरीका ने अपने शहरियों से कहा है कि वह इलाकाई कशीदगी, जंग में अचानक मुमकिन तेजी, परवाजों में रखना और अमरीकी मफादात पर हमलों के तनाजुर में मगरबी एशिया के अपने सफर पर नजरसानी करें। यह मशवरा ऐसे वक्त में दिया गया है जब यमन के हूसी लड़ाकों ने सऊदी अरब की जानब मिजाइल और ड्रोन हमले शुरू कर दिए हैं। भारतीय महकमे मौसमियात ने साहिली आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरलम, माहिर, तमिलनाडु, तेलंगाना और अंडमान और निकोबार जजायर में आज शदीद बारिश की पेशगोई की है। महकमे मौसमियात ने वस्ती महाराष्ट्र, ओडिशा, कर्नाटक, तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में कल तक गरज चमक और तेज हवाओं के साथ बारिश का इम्कान जाहिर किया है। शतरंज ओलंपियाड में मर्दों की भारतीय टीम ने स्पेन को 3-1 से हरा दिया। इस दौरान आर प्रगनंदा ने डेविड एंटन गुइजारो के खिलाफ ड्रॉ खेला, वहीं निहान सरीन को भी जेमी लतासा के खिलाफ ड्रॉ खेलना पड़ा। वहीं खवातीन के जुमरे में भारत ने मंगोलिया के खिलाफ 3-1 की जबरदस्त जीत हासिल की। भारत की सविता ने मशहूर खिलाड़ी मंगुथुन बतखुया के खिलाफ बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए लगातार चौथी जीत दर्ज की है। उज्बेकिस्तान के समरकंद के सिल्क रोड इंटरनेशनल एग्जीबिशन सेंटर में आज 46वें फीडे शतरंज ओलंपियाड के 5वें राउंड के मुकाबले होंगे। ये मुकाबले भारतीय वक्त के मुताबिक दोपहर 3:30 बजे शुरू होंगे। ये थी खबरें और अब अखबार के आईने के साथ हैं फैसल खान।
2: शुक्रिया जमीर। कौमी राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के तकरीबन सभी उर्दू अखबार ने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की जानिब से मुनाकिदा दो रोजा कॉन्फ्रेंस के इफ्तिताह के मौके पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी के खिताब को नुमाया तौर पर शाये किया है। रोजनामा इनकलाब ने सुर्खी लगाई है, गुज़श्ता 12 वर्षों में माहौलियात के लिए भारत ने गैर मामूली पेशरफ्त की। रोजनामा प्रताप ने हाई कोर्ट्स में जजों की तकरीरी से मुतालिक खबर को अहमियत के साथ शाये करते हुए सुर्खी लगाई है, मरकजी हुकूमत ने मुख्तलिफ हाई कोर्ट्स में 14 नए जजों की तकरीरी की मंजूरी दी। रोजनामा इनकलाब ने सऊदी वजारत दिफा के ऐलान की खबर को शह सुर्खी बनाते हुए लिखा, दिफाई बहरी इतिहाद के चौथे मनसूबाबंदी इजलास में 41 ममालिक की शिरकत। अखबार की कुछ अहम बैन अवी खबरें इस तरह हैं, ग्रीनलैंड पर अमरीका और डेनमार्क के दरमियान माहिदा, इस्लामाबाद माहिदा दोबारा बहाल करने की कोशिश जारी, ईरान का बयान।
0: और आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर, हुकूमत ने अगले महीने की 1 तारीख से सब्सिडी वाले एलपीजी सिलेंडरों की रीफिलिंग के लिए आधार बायोमेट्रिक तस्दीक को लाजमी करार दिया है। राष्ट्रीय संकल्प समारोह आज मुल्क भर में 1067 मकामात पर मुनक्किद किया जा रहा है जो कि 100 हफ्तों तक जारी रहने वाले नशा मुक्त युवा अभियान का हिस्सा है। इंतखाबी कमीशन आज दिल्ली के तमाम पोलिंग मराकज पर खसूसी कैंपों का इनेकाद करेगा ताकि शहरियों को वोटर फहरिस्तों में नाम शामिल करने या उन्हें हजफ करने से मुतालिक मदद फराहम की जा सके। भारतीय महकमे मौसमियात ने आज साहिली आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरलम, कर्नाटक और अंडमान और निकोबार जजायर में शदीद बारिश की पेशगोई की है। और समरकंद में शतरंज ओलंपियाड में भारत की मर्दों की टीम ने स्पेन के खिलाफ 3-1 से शानदार कामयाबी हासिल की है जबकि खवातीन की भारतीय टीम ने भी मंगोलिया को 3-1 से हरा दिया। इसके साथ ही आकाशवाणी से ये खबरनामा खत्म हुआ।
3: ये आकाशवाणी दिल्ली है, लीजिए सुनिए हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम साहित्य की। श्रोताओं, जब कोई रचना समाज के तय दायरों

0: को चुनौती देती है तो वह केवल पढ़ी नहीं जाती, उस पर बहस होती है, असहमतियां उभरती हैं और सवाल खड़े होते हैं। क्या घरेलू जिम्मेदारियों को संभालता पुरुष वाकई पितृसत्ता की जड़ों पर प्रहार है, या फिर यह मात्र काल्पनिक और सुविधा भोगी प्रयोग? क्या लेखक ने दाम्पत्य के यथार्थ को सही ढंग से छुआ है, या पाठक की नजर में कहानी कहीं लड़खड़ा गई है? पाठक को शिकायत लेखक से क्रम में लीजिए, सुनिए सुरजीत सिंह जलैया की कृति हाउस हस्बैंड पर चर्चा। प्रतिभागी विशेषज्ञ हैं वरिष्ठ लेखक समीक्षक और प्राध्यापक डॉक्टर नृत्य गोपाल शर्मा, वरिष्ठ लेखक और समीक्षक श्री राहुल सिवाय, वरिष्ठ लेखिका और प्राध्यापक डॉक्टर रजनी सिंह और युवा पत्रकार श्रीमती शिल्पा गुप्ता। चर्चा का संचालन कर रही हैं शिल्पा गुप्ता।
1: घर आखिर होता क्या है? चार दीवारें, कुछ रिश्ते और ढेर सारी जिम्मेदारियां। लेकिन जब इन जिम्मेदारियों को निभाने वाला पुरुष हो तो क्या समाज की नजर बदल जाती है? साहित्य समाज का आईना ही नहीं बल्कि कई बार वह सवाल भी है जिसे समाज पूछने से बचता है। आज हम बात करेंगे ऐसे ही एक उपन्यास की जो परिवार, रिश्तों, पुरुष की पहचान और समाज की बनी बनाई धारणाओं को एक नए नजरिए से हमारे सामने रखता है। उपन्यास है हाउस हस्बैंड। नाम सुनते ही एक सवाल मन में आता है। हाउस वाइफ शब्द तो हम बहुत सहजता से सुनते आए हैं, लेकिन हाउस हस्बैंड सुनकर हमारे मन में इतनी जिज्ञासा क्यों पैदा होती है? इसी सवाल के बहाने आज हम जानेंगे इस उपन्यास की कथा। आप सभी का कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है।
2: धन्यवाद
3: धन्यवाद।
1: राहुल जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि हाउस हस्बैंड जब आपके पास प्रकाशन के लिए आई, पढ़ने के बाद आपके मन में सबसे पहला विचार या सवाल क्या आया?
3: जब भी कोई किताब हमारे पास आती है तो हम दो बातों का विशेष रूप से ध्यान रखते हैं, एक कथ्य कैसा है और उसका शीर्षक कैसा है। क्योंकि कोई भी किताब वह बिकती बाद में है, सबसे पहले उसके शीर्षक को देखकर ही उसका पाठक आकर्षित होता है, उसका बाजार आकर्षित होता है। तो हाउस हस्बैंड नाम सुनते ही मन में एक जिज्ञासा उत्पन्न होती है कि आखिर यह उपन्यास किस प्रकार का है। मन में बहुत सारी बातें उठी कि क्या यह पुरुष विमर्श को लेकर लिखी गई कुछ बातों का उपन्यास है, या इसके अंदर की जो मनोवैज्ञानिक चीजें हैं वो पाठकों के साथ साथ बाजार को कितना प्रभावित कर पाएगी, क्या लोग उसकी तरफ देखेंगे। तो पहला प्रश्न तो बिल्कुल क्लियर था कि हाउस हस्बैंड जिज्ञासा तो पैदा कर रही है, तो इस रूप में इस किताब को लाने से हमें फायदा होगा ही। हमने किताब को देखा, सुरजीत से हमने बात भी की और हमें जो लगा हमने कुछ सुझाव भी दिए, और सुजीत ने उसको बहुत बेहतर तरीके से इम्प्लीमेंट किया और एक बेहतरीन किताब जो कि अपने लगातार जिज्ञासाओं के साथ साथ संदर्भ और मनोविज्ञान तीनों को प्रस्तुत करती है आज हमारे सामने है।
1: जैसा कि राहुल जी ने कहा कि किताब का शीर्षक ही काफी अलग है, तो नृत्य जी आपसे जानना चाहेंगे कि हाउस वाइफ हम अक्सर सुनते हैं, लेकिन हाउस हस्बैंड तो क्या लगता है, सिर्फ एक भूमिका है या इसके पीछे पुरुष की पहचान और सामाजिक सोच का भी सवाल छुपा है?
2: शिल्पा जी, ये जो नाम की अपनी सार्थकता है ना, ये किसी भी रचना के साथ बहुत गंभीरता से जुड़ा विषय होता है। ये आकर्षण भी होता है और उस रचना का प्रतिदर्पण भी होता है। अब ये जो शब्द है कि हाउस हस्बैंड और हाउस वाइफ चलता रहा अब तक, लेकिन पहली बार एक इस तरीके के विमर्श को केंद्र में लाना या एक रचना के रूप में सामने लाना सचमुच कई तरीके की जिज्ञासाएं उत्पन्न करता है। मैं जब ये उपन्यास पढ़ रहा था तो मैंने देखा कि लेखक ने बीच में लिखा, ये जो जब रचना कर रहे हैं तो उन्होंने नाम दिया इसको घर का आदमी, लेकिन ये बाद में परिवर्तित हुआ क्योंकि घर का आदमी कह देने से वो आकर्षण नहीं आ पा रहा है, वो भाव नहीं आ पा रहा है, वो संदेश नहीं आ पा रहा है, और जो परत जिसको आप उघाड़ना चाहते हैं वो परत नहीं उघड़ पाती है। इसलिए जब ये नाम आया कि हाउस हस्बैंड, तो एकाएक ना आपको ये आकर्षित करता है और उसके बाद विवश करता है कि आखिर इसमें ये कौन सी व्यवस्था है, कौन सी चीजें हैं, कौन सी ऐसी बातें हैं कि अब हाउस हस्बैंड किन किन बातों का ध्यान रख रहे हैं। तो ये जो इस के शीर्षक में आकर्षण है और जो विषय उठाया गया, देखिए अभी तक की जो शिल्पा जी व्यवस्थाएं हैं उसमें हम यही देखते आ रहे हैं कि स्त्री पुरुष, और उसमें भी स्त्री की भूमिका नारी के रूप में, और हम कह देते हैं कि घर की चार दीवारी में, लेकिन वहां से आगे समाज बहुत आगे आ गया, बहुत दूर तक हम लोग यात्रा कर चुके हैं जिसमें स्त्री और पुरुष बराबर की भूमिका में है कि दोनों

0: आजीविका के क्षेत्र में जा रहे हैं और दोनों मिलके बहुत सारी चीजों को कर रहे हैं, लेकिन बधाई देनी होगी सुरजीत मान को कि उन्होंने एक नए विषय को इस ढंग से प्रस्तुत कर दिया है कि कुछ विषय और भी हैं, चिंताएं और भी हैं, और ये चिंताएं यदि समाज आज इन पर ध्यान नहीं देगा तो कल बड़ी भारी हो जाएंगे।
1: जैसे कि डॉक्टर नित्य ने कहा कि हम स्त्री और पुरुष की भूमिका के बारे में बात कर रहे हैं, डॉक्टर रजनी आप महिला हैं, वरिष्ठ लेखिका हैं, प्राध्यापक हैं, तो आपसे जानना चाहेंगे कि इस उपन्यास की खास बात आपको क्या लगी, कहानी, पात्र, भाषा या फिर वह सामाजिक सवाल जिसे ये उठाता है।
2: शिल्पा जी, इस उपन्यास को जैसे मैंने पढ़ा और मेरी नज़र में इस उपन्यास में सभी चीजें जो आपने मेरे से पूछी अपनी अपनी जगह पे सभी बहुत बेहतर है। अब बात शुरू करूंगी मैं उपन्यास के शीर्षक से, हाउस हस्बैंड। अब हिंदी में उपन्यास है और शीर्षक उन्होंने दिया है हाउस हस्बैंड, वो क्यों दिया, क्योंकि समाज में हाउस वाइफ ही प्रचलित है नाम पहले से, तो उन्होंने हाउस हस्बैंड दिया। सबसे पहले तो सुरजीत को मुबारक है हाउस हस्बैंड के लिए। अब बात है कि कुछ नए शब्द जो उन्होंने चुने इसमें, वो शब्द साधारण है लेकिन उन्होंने खुद के लिए, जैसे एक उदाहरण दूंगी मैं इसी उपन्यास का, जब मैंने उस उपन्यास को पढ़ा तो उन्होंने खुद को कहीं लिखा है दीवार का सुराख, तो सुरजीत जी कहते हैं कि मैं खुद को एक दीवार का सुराख महसूस कर रहा हूं, जिसके अंदर झांकना तो हर कोई चाहता है लेकिन उस सुराख को, उस कमी को, उस कमजोरी को, उस दर्द को कोई महसूस नहीं कर रहा और उस दर्द को कोई भरने की कोशिश नहीं कर रहा। समाज में जो उनको ताने मिल रहे हैं उन तानों को वो एक गिद्ध का रूप मानते हैं। लेखक ने खुद ही कहा कि तानों की जो तुलना है वो गिद्धों से करती है, जो मृत शरीर का मांस नहीं खाते बल्कि अपनी जीभ और अफवाहों से एक जीवित व्यक्ति के आत्म सम्मान को देख रहे हैं। और इसी तरीके से एक समाज में जो हमारे पितृसत्तात्मक समाज की परंपरा चल रही है उसकी एक संकीर्ण सोच जो समाज में है उसको उन्होंने उभार के सामने लाए।
1: अब हमारे साथ इस किताब के लेखक सुरजीत मानजलिया सिंह भी फोन पर जुड़ रहे हैं, देखते हैं वो क्या कहते हैं।
3: नमस्कार। सच कहूं तो वक्त को कौन समझ पाया है, जब कुछ हो रहा होता है तब तो जरा भी नहीं पता चलता कि क्या हमारे भले के लिए है और क्या बुरे के लिए। ये सब तो बहुत बाद में समझ आता है। और अगर इस किताब की बात करूं तो सच बताऊं मैंने कोई उपन्यास सोच समझ कर लिखा ही नहीं था। बस दिन भर के काम काज के बाद जो फुर्सत मिलती, अकेले में बैठकर जो मन में आता वो कागज पर लिख लेता था। पन्ने भरते गए, दिन बीतते गए और बात यहाँ तक आ पहुंची। वो तो असल में मेरी डायरी के पन्ने थे, कब पूरा उपन्यास बन गए मुझे खुद पता नहीं चला। पर अच्छा ही है ना, अगर अपने घर की आम बातें और अपनी खुद की कहानी भी एक किताब बन सकती है तो हम सब लिखने वालों के लिए इससे बढ़िया बात और क्या होगी।
1: इन्होंने बिल्कुल ऐसे कहा जैसे अपने दिल की बात तो इन्होंने किताब में तो डाली ही और अब अपने शब्दों में भी डाली है। तो राहुल जी आप क्या कहेंगे इस बारे में?
4: देखिए, जब भी हम किसी चीज को अपने हृदय से, अपनी संवेदना से, अपने जीवन, अपने भावों से जोड़ देते हैं ना, तो उसका विस्तार अपने आप दूसरे के दिल से जुड़ जाता है। आप एक तरह से कहिए कि सुरजीत का ये कहना कि ये सिर्फ डायरी के पन्ने नहीं, धीरे धीरे जो ये उपन्यास के स्वरूप में हमारे सामने आया, वह ऐसा लगता है कि जैसे उसके मन से निकली हुई बात उसके पाठक के मन तक पहुंच रही है। वह उस तरीके से नहीं लिखता कि जहां पर उसे ये महसूस हो कि वह किसी प्रेमचंद के शिल्प को फॉलो करना चाह रहा है या ज्ञानेंद्र की तरह लिखना चाह रहा है या किसी नए लेखक की तरह लिखना चाह रहा है, कुछ विशिष्ट करना चाह रहा है, और वो दिखता भी है। सबसे विशेष बात यह है कि हाउस हस्बैंड को देखते हुए ना लोगों के मन में एक बात आती है कि यह जो हाउस हस्बैंड है यह पितृसत्तात्मक समाज या उसके विरुद्ध एक प्रयास और पुरुष विमर्श की बात करते हुए आगे बढ़ने वाला एक संग्रह होगा, लेकिन ऐसी चीज नहीं दिखती। वहां भी यह दिखाई देता है कि उस पुरुष की सफलता के पीछे एक स्त्री है जो उसकी पत्नी है, जो कि एक विलन की तरह दिखाई देने लगती है बीच में, वो विलन नहीं रहती। जब वह उसकी डायरी को पढ़ती है और पढ़ने के बाद जब उसे एहसास होता है कि उसने क्या किया है और उसके बाद जब उसको प्रेरित करती है कि नहीं तुम इसको लिखो और अपने अंदर के लेखक को जीवित करो, तो वहां पर भी उस पुरुष के पीछे वह स्त्री दिखाई देती है जो उस पुरुष को आगे बढ़ाना चाहती है। विमर्शों के साथ यह बात मुझे मुख्य रूप से नजर आती रही है कि हम जब किसी विमर्श की बात करते हैं तो उसके केंद्र में जो वस्तु है उसके आसपास की सारी चीजों को या उसके विरुद्ध दिखाई देने वाली चीजों को बिल्कुल उसके दुश्मन की तरह हम सामने रखने लग जाते हैं।

0: जबकि ऐसा नहीं है। कोई भी विमर्श जो है वह सह अस्तित्व के साथ आगे बढ़ता है, जैसे हमारा दाम्पत्य जीवन जो है वह सह अस्तित्व के साथ बढ़ रहा है। किसी भी चीज को सफल या असफलता तक ले जाने के लिए एक साझा प्रयास की आवश्यकता है। इस उपन्यास में वह साझा प्रयास दिखता है, और वह इसलिए दिखता है कि सुरजीत इसको कोई मसालेदार कहानी या किसी ऐसे ढंग के उत्तर की तरह परोसना नहीं चाहते कि जहां पर पढ़ने के बाद व्यक्ति अचंभित हो और लगे कि नहीं उसको इसने ठुकरा दिया और अंत में इसने ऐसा कर दिया और ये बहुत बड़ा कोई एक चमत्कारिक परिवर्तन दिखाई देने लगे। संपूर्ण रूप से जीवन उसमें साथ साथ दिखाई देता है। पढ़ते हुए आप आज की कहानी या उसकी तरफ इसको मत देखिए, इसके विषय और चीजों को नया देखें, लेकिन इसको पढ़ते समय यह महसूस करें कि 70-80 के दशक की जो फिल्में धीरे धीरे बढ़ती थीं, जिसमें पारिवारिक और आपसी सद्भाव प्रेम दिखाई देता था, जो छोटे छोटे परिवर्तन होते थे और अंत में एक सुखद कथा की तरह कहानी समाप्त हो जाती थी, तो ये पूरा उपन्यास उसी रूप में दिखता है। और ये इसलिए दिख पाता है क्योंकि सुरजीत जो है ये अपनी कहानी को उन्हीं डायरी से बाहर निकलते हुए सिर्फ शब्दों का नयापन देते हैं, उसे कोई काल्पनिक चमक दमक प्रदान नहीं करते हैं।
1: अगर हम मान के चरित्र की बात करें तो उसे किस तरह देखते हैं डॉक्टर नृत्य आप? क्या वह परिस्थितियों का सामना करने वाले व्यक्ति हैं या अपनी पहचान को तलाशता हुआ एक आम इंसान?
2: शिल्पा, इस उपन्यास की ये बड़ी ताकत है जो प्रश्न आपने उठाया है। यद्यपि इससे पूर्व जो अभी चर्चा चल रही थी उसमें एक बात और भी कहने योग्य या मुझे ऐसा लगता है कि पाठकों तक पहुंचनी चाहिए, परंपरागत शिल्प का उपन्यास ये नहीं है। डायरी और उपन्यास के बीच की एक नई धरती विकास करता हुआ ये एक उपन्यास हमारे सामने आया है। अब रही बात इस उपन्यास के पात्र को और उसकी मानसिकता और उससे जो प्रभाव हमारे समाज पर पड़ रहा है, तो देखिए एक बात तो हमें बहुत स्पष्ट समझ लेनी चाहिए, प्रेम को केंद्र में रख के बात आरंभ हुई। उपन्यास जहां आरंभ होता है प्रेम से आरंभ होता है कि और ये प्रेम दो बेरोजगार युवाओं का ही और बहुत महत्वपूर्ण है। दो बेरोजगार आज के समय में प्रेम करें और उसके बाद उस प्रेम को गृहस्थ के रूप में परिवर्तित कर लें, ये अपने आप में बहुत मुश्किल बहुत बड़ी चीज है। लेकिन ऐसा किया, यद्यपि बाद में थोड़ा संकेत मिलता है कि कुछ कार्य पूर्व में कर रहे हैं, जो मान है वो कर रहा है, लेकिन वो ऐसी स्थिति भी नहीं है कि बहुत जल्दी आसानी से निर्णय ले लिया जाए। तो बहुत सोच समझ के ये दोनों युवा आगे बढ़ते हैं और एक बहुत बड़ा निर्णय लेते हैं, और इस निर्णय की जो चुनौतियां जो कि वो पूर्व में भास चुके, उन्हें आभास है कि इसकी चुनौतियां होंगी, और उन चुनौतियों पर बड़े गंभीरता के साथ बैठ के उन लोगों ने आपस में चर्चा की। और ये कितना महत्वपूर्ण बिंदु हो जाता है कि समाज किस दृष्टि से देखेगा, और दोनों के हृदय में समाज को बनाए रखने की चिंता बहुत ज्यादा है। दोनों आपस में जब आरंभ में बात करते हैं तो उन्हें लगता है, मान कहता है कि देखिए वो उच्च कुल से है और मैं मध्यवर्गीय परिवार से हूं, और वहां जो उच्च कुल की समस्याएं हैं वो मोनिका को बहुत घेरे हुए हैं, और वो कहता है कि उसकी बहन है, उसके माता पिता हैं, वो उस संस्कार से बहुत जुड़े हुए हैं, लेकिन हिम्मत की दाद देनी होगी मान के। उसे कष्ट भी होता है, आप पूरा उपन्यास देखो, उसे कष्ट भी होता है कि जब वो बाद में देखता है कि जिसे हम स्टोर रूम कहते हैं उसमें उसकी डायरी रखी है, और उस डायरी में और वहां एक बक्सा में बहुत सारा सामान रखा है, और उस बक्से में जिस समय वो अपनी पुरानी यादें खोजता है और वहां पर उसे एक चित्र मिलता है कि वो अपने पिता के साथ में है, तमाम उसके जीवन की जितनी भी संभावनाएं ना एकाएक साकार होती है, लेकिन फिर वो अपने आप को बहुत संभालता है और उस रूप में संभाल के और कहता है कि नहीं, मुझे अपने आप को बनाए रखना है। देखिए लगभग लगभग पूरा उपन्यास अकेले मान के चरित्र के इर्द गिर्द घूम रहा है। मोनिका की भूमिका है कुछ संवाद तक, और आप उसमें देखेंगे कि बहुत जगह अधूरापन नजर आता है इस दृष्टि में। सुरजीत को इस बार में ध्यान भी देना होगा, केशव और जिया यानी उसके पुत्र और पुत्री वो बच्चे भर के रह जाते हैं, लेकिन उनका कोई चरित्र, उनकी अटकेलियां, उनका रुदन, उनकी जिद वो कहीं सामने नहीं आ पाती है। जबकि आप हाउस हस्बैंड के रूप में अपनी भूमिका निभा रहे हैं, अगर वो स्कूल जा रहा है बच्चा तो बोले मम्मा मेरा लंच, जबकि लंच बना रहे हैं पिता। तो अब हाउस हस्बैंड की ये जो भूमिका है, और समाज में सिर्फ एक चरित्र इन्होंने बीच में दिखाया कि एक दत्ता जो है पड़ोसिन वो एक कमेंट करती हैं, या एक पड़ोसी आके कमेंट कर जाता है और वो कहता है कि आप हैं तो यह है, मोनिका सामने खड़ी और मोनिका को कहते हैं, उस दिन वो सामने होती है, बोले आप हैं तो ये है। और ये जो एक वाक्य होता है ना, मान के पूरे अस्तित्व को झंकार देता है। और आप देखेंगे कि नए शहर में जाके पहली बार मान अपना मुंह खोलते हैं और वो भी

0: हम खुलते हैं जबकि मोनिका सामने, और मोनिका उन्हें पूरा बचा दी है। लेकिन मान जिस तरीके से, जिस हिम्मत और जिस संघर्ष का साक्षी बनता है, ये आगे आने वाले समाज के लिए एक नजीर बन के होगा। और मैं ये मानता हूं, और मैं ये जितने भी हमारे श्रोता या समाज जो भी सुन रहा है, इस बात का विशेष संज्ञान लेना होगा। देखिए, लेखक बमुश्किल इस समय लगभग 35 साल की उम्र में है, लेकिन एक बालक जो इस तरीके की त्रासदी नुमा वातावरण में घिर जाए, ये आज एक मान है, कल 1, 2, 3, 4 में परिवर्तित हो सकते हैं। समाज को इनके लिए मार्ग खोजना होगा। इस मान को भी, जो कि कल हाउस हस्बैंड की भूमिका में आना है, आज अब उसे आप बचा नहीं पाएंगे, उसके लिए आपको व्यवस्था देनी होगी।
1: ये तो आपने हमें बताया कि मान की भूमिका के बारे में, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत देखा जाए तो कुछ संघर्ष, चाहे मेंटली लेवल पर भी हो, तो मोनिका के जीवन में भी था। तो डॉक्टर रजनी, आपसे जानना चाहेंगे कि मोनिका की चरित्र को आप किस तरह से देखती हैं?
2: जी शिल्पा जी, जैसे कि अपने समाज में भी क्या है कि जब कोई स्त्री प्रगति करती है, अपने पैरों पे खड़ी होती है, आगे बढ़ती है, तो समाज जो है उसे अप्रिशिएट करता है, उसे मोटिवेट करता है। लेकिन अगर कोई पुरुष घर संभाल रहा है, बच्चे संभाल रहा है, उनका ध्यान रख रहा है, तो ऐसा माना जाता है कि वो कुछ नहीं कर रहा, वो बेकार है। लेकिन अब इस उपन्यास में जो हम देख रहे हैं कि मोनिका जो है, वो भी जो मान अंदर महसूस कर रहे हैं, मोनिका भी कहीं ना कहीं, जैसे उनके कुलीग्स जो हैं, जब उनको ये कहते हैं कि आपके पति क्या करते हैं, तो मोनिका उनको बोलती है घर देखते हैं, तो उनके कुलीग जो है उनकी तरफ देखते हैं सवालिया नजरों से। वो आगे कहते कुछ नहीं है, लेकिन सवालिया नजरों से उनकी तरफ देखते हैं, क्योंकि हमारा जो समाज है इस चीज के लिए कि अगर वो घर देखते हैं, इसका मतलब वो कुछ नहीं कर रहे। तो मोनिका जब इसके बारे में घर आके भी बोलती है, मान हल्का सा मुस्कुरा देते हैं, और उस मुस्कान का जब जवाब मोनिका देखती है तो वो दे नहीं पाती, ना ही कुछ बोलती है वो, क्योंकि मान कुछ कहता ही नहीं आगे। अब अचानक उसके सामने डायरी आती है, क्योंकि ऑफिस से जल्दी आ गई, मीटिंग थी कोई, कैंसिल हो गई, अचानक से जल्दी आ गई। ऑफिस से आने के बाद जब उसने डायरी के पन्ने खोले, तो उसने वो बहुत सारी बातें पढ़ी जो उसने महसूस भी नहीं की थी। हम अपने बिजनेस, अपने कारोबार, अपने नौकरी में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि एक ही घर में, एक ही कमरे में हम साथी के बारे में अंदर तक की बात सोच भी नहीं सकते कि वो क्या महसूस कर रहा है। मोनिका को आगे बढ़ाने के लिए उसने अपना घर बार, नौकरी, शहर, सब कुछ, लगाव जो होता है अपनी घर की खिड़कियों से भी, पंखों से भी, धरती से, सब हर जगह से भी ना, तो वो सारा कुछ छोड़ के जब वो अपनी पत्नी के साथ उसकी नौकरी के लिए गए, उसकी खुशी में उसका साथ दिया, तो मोनिका इस चीज से खुश थी। लेकिन जब उसे मोनिका को भी लेटर मिलता है या उसको फोन पे सूचना मिलती है नौकरी की, तो उसके मन में भी सवाल था, उसके मन में भी शंका थी कि मान आगे से क्या रिस्पॉन्स करेंगे। लेकिन मान का जवाब हाँ में था और वो उसकी खुशी में खुश थे। तो एक स्त्री होने के नाते भी इसमें मोनिका को सौभाग्यवती माना जाता है कि सौभाग्य था उसका कि उसने एक ऐसे पति को पाया कि जिसने अपना सब कुछ त्याग के अपनी पत्नी का साथ दिया उसकी नौकरी के लिए। लेकिन अब समाज की विडंबना देखिए आगे, समाज जो है वो इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर रहा।
1: कुछ भाव ऐसे होते हैं जो कहे नहीं जाते, बस महसूस किए जाते हैं।
0: शिल्पा जी, मैं एक बात और जोड़ना चाहूंगा, रजनी जी ने बहुत अच्छा सा जो इसका विश्लेषण किया है। देखिए, मोनिका का चरित्र भले से संवाद में कम बोलता हो, लेकिन एक बात बहुत सिरे से है, मजबूती के साथ पक्ष प्रस्तुत करता है कि मोनिका अगर यहाँ मान को सपोर्ट न करे तो मान टूट जाता, खत्म हो जाता। मोनिका ने इतनी व्यस्तताओं के बाद कि वो रात को 11 बजे भी आ रही है, और जिस दिन उसने देखा कि मान बिल्कुल भीतर से देखती है ना कि टेबल पर वो रख के गया कि कॉफी साथ पियेंगे, और उस दिन जाके पूछती है उससे कि मान क्या बात है हम दोनों के बीच में, तो अगर ऐसा नहीं करती ना, मोनिका नहीं संभालती, तो आप देखते कि मान टूट जाता। इसलिए टूटने से बचता है, तो उसको धन्यवाद तो देना ही होगा आपको।
1: जी, एक इस किताब में प्रसंग भी है, जली हुई रोटी। तो राहुल जी, आपसे जानना चाहेंगे कि जली हुई रोटी सिर्फ एक प्रसंग है या गहरा संकेत?
3: देखिए, आप इसको एक पक्ष की तरफ मत देखिए, मैं इसको इस तरीके से देखता हूँ कि अभी जो मान महसूस कर रहा है ना, एक लंबे समय से स्त्रियां वो महसूस करती रही हैं बतौर हाउसवाइफ। तो हाउस हस्बैंड वाली जो पीड़ा है ना, वो हाउसवाइफ की पीड़ा से बहुत अलग नहीं है। सिर्फ अंतर इतना है कि स्त्रियों के लिए यह कार्य है, घर का कार्य, उसको कर्तव्य की संज्ञा देकर उसको, मतलब जो है, हम एक उच्च मानक की तरह देखने लग जाते। जाते हैं। लेकिन जब हम पुरुष की तरफ जाते हैं, जब कोई कहता है ना कि आपकी माँ क्या कर रही है, आपको पत्नी क्या कर रही है, जब उसको कहते हैं तो कहते हैं वो हाउसवाइफ है, तो उसको कभी इस रूप में हम नहीं देखते कि एक बेरोजगार स्त्री है। लेकिन जैसे ही कोई व्यक्ति जो है वो हाउस हस्बैंड की भूमिका में आता है तो वहां

0: पर उसके काम के प्रति या उसके कर्तव्य के भाव को समाप्त करके अंदर का एक भाव सामने आता है कि नहीं, वो व्यक्ति जो है वो बेरोजगार है, उसको कुछ काम नहीं मिला, या वो पत्नी के पैसे पर जीने वाला व्यक्ति है। इस तरह की स्थिति तक भी पहुंच जाती है बात, चाहे वो जलती हुई रोटियां हो या किचन के अन्य चीजें, दीवार हो, दीवार की सुराख हो, या जो भी है। देखिए, सुरजीत ने बहुत कोमल तरीके से इन चीजों को एक बिंब की तरह यूज किया है उस पूरे उपन्यास में। वो जब बोलते ही है ना, वो जली हुई रोटियां, तो लगता है जैसे कि सुरजीत के मन की पीड़ा जो है वो बोलने लगी है। और ये सिर्फ मन की पीड़ा नहीं है, मैं फिर कहूंगा कि लंबे समय तक जो स्त्रियां जो घर में काम करती रही हैं, उनकी पीड़ाओं को भी उन रोटियों ने बहुत ही अच्छे से अभिव्यक्त किया है, उन दीवार की सुराखों ने, उन वस्तुओं ने। तो सुरजीत ने सिर्फ लैंगिक परिवर्तन किया उसके अंदर, असल में उसके अंदर का जो पुरुष विमर्श है ना, वो अंदर के उस स्त्री विमर्श और उस दाम्पत्य विमर्श को भी जिंदा करता है, जो दोनों की तरफ सोचने के लिए आपको मजबूर करता है। वह अनकहे में इतनी बात कह रहा है जिसे पाठक जब देखेगा, जब उसको समझेगा, जब उसको महसूस करेगा और अपने जीवन से जोड़ेगा, तो कई नए प्रश्न और उन प्रश्नों के उत्तर प्राप्त होंगे। तो मुझे लगता है इस हिसाब से आपको आपका उत्तर मिल गया है।
1: जी हाँ, अगर हम साहित्यिक दृष्टि से बात करें तो क्या कोई बात ऐसी है जो सामने नहीं आनी चाहिए थी?
2: शिल्पा, देखिए, मुझे इस समय पंक्ति किन की है, किन शायर की है, मैं बड़े सम्मान के साथ उन्हें विनम्रता के साथ प्रस्तुत कर रहा हूँ। नहीं, हम में कोई अनबन नहीं है, बात इतनी है कि अब वह मन नहीं है, मैं अपने आप को सुलझा रहा हूँ, तुम्हें लेकर कोई उलझन नहीं है। तो यहाँ पर मान को जितनी उलझन है ना, वो इसी बात की है। और जितना कथ्य उन्होंने बुना है, उस कथ्य में जो अपने आप को कहीं खोता हुआ पाते हैं, कि आरंभ में बात कही गई शिवाजी जी के द्वारा कि साहित्य तो समाज का दर्पण है, और मान कोई नई चीज अलग बात नहीं कह रहे हैं, बल्कि इतनी सहजता से उस बात को हमारे तक पहुंचा रहे हैं कि समाज में ये भी है, और इस परिदृश्य को, इस दृश्य को हमें अब हृदयंगम करना है, हमें स्वीकार करना है। तो अगर आप साहित्यिक दृष्टि से देखेंगे तो मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि सुरजीत भी इस बातचीत को जरूर सुन रहे होंगे, जो अभी थोड़ा सा अनगढ़पन है कि एक आधे से ज्यादा हिस्सा बहुत गंभीरता के साथ और बहुत उलझनों को सुलझाने की कोशिश में जाता है, लेकिन लगता है कि बाद में, चाहे जली हुई रोटी की आपने बात कही, वो लगता है कि जैसे कुछ समेटने के अंदाज में आ गए, जबकि मुझे लगता है अभी इस उपन्यास को समेटने की आवश्यकता नहीं थी। जहां पर उन्होंने इस पूरे कथ्य को समेटने की कोशिश की है, और बड़ी जल्दी से डायरी भी प्रस्तुत हो गई, जबकि वो अंधेरी रात में, जबकि दोनों के दो बिस्तर भी अलग हो गए हैं, बावजूद इसके वो अंधेरी कोठरी में जाकर के लिख रहा है इतनी जल्दी डायरी को, मेरे ख्याल से क्योंकि मोनिका को भी अभी उसकी और कीमत समझने की आवश्यकता थी, तब दोनों समानता से, क्योंकि लेखक लिख चुका है कि बोले जो अहंकार सरकारी नौकरी प्राप्त करके किसी पुरुष में आता है, वो स्त्री में भी आता है। तो ये जो अहंकार का गलना है ना, जो कि साहित्य के नजरिए से बहुत जरूरी है, उसकी आवश्यकता थी। तो बहुत जल्दबाजी की आवश्यकता नहीं है, बहुत अच्छा लिखा है और एक समाज को दिशा देने वाला उपन्यास लिखा है। सुरजीत को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं।
1: तो ये थी बातचीत हाउस हस्बैंड के बहाने घर, रिश्तों और बदलती सामाजिक सोच पर। कहते हैं घर चलाने के लिए सिर्फ कमाई नहीं, समझ, संवेदना और साझेदारी भी चाहिए। शायद इसी वजह से हाउस हस्बैंड हमें सोचने का अवसर देता है कि घर संभालना किसी एक लिंग की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि रिश्तों को निभाने की जिम्मेदारी है। और एक और बात, रिश्तों में बड़ा वो नहीं जो ज्यादा कमाए, बड़ा वह है जो साथ निभाए। इसी खूबसूरत विचार के साथ मुझे दीजिए अनुमति, फिर मुलाकात होगी साहित्य की एक नई रचना और एक नई विचार यात्रा के साथ। नमस्कार।
3: पाठक को शिकायत लेखक से क्रम में अभी आप सुरजीत मान जलैया सिंह की कृति हाउस हस्बैंड पर ये चर्चा सुन रहे थे। प्रतिभागी विशेषज्ञ थे वरिष्ठ लेखक, समीक्षक और प्राध्यापक डॉक्टर नृत्य गोपाल शर्मा, वरिष्ठ लेखक और समीक्षक श्री राहुल सिवाय, वरिष्ठ लेखिका और प्राध्यापक डॉक्टर रजनी सिंह और श्रीमती शिल्पा गुप्ता। चर्चा का संचालन कर रही थी शिल्पा गुप्ता। और आइए अब सुनते हैं सप्ताह की प्रमुख साहित्यिक गतिविधियाँ। प्रस्तुत कर रहे हैं युवा पत्रकार श्री ज्ञानेंद्र शर्मा।
4: साहित्य जब कला से मिलता है और कला को काव्य की संवेदनशीलता का साथ मिलता है, तब सृजन का एक ऐसा संसार आकार लेता है जो लंबे समय तक स्मृतियों में बना रहता है। ऐसा ही अनूठा दृश्य 13 सितंबर 2026 को जशाला फाउंडेशन दिल्ली के तत्वावधान में आयोजित त्रिवेणी समारोह साहित्य, काव्य एवं कला का अद्भुत संगम देख

0: कारण वस्तु में भी असाधारण संभावनाएं खोज लेती है। समारोह की अध्यक्षता वरिष्ठ गीतकार डॉक्टर जयसिंह आर्य ने की, जबकि श्री जितेंद्र बच्चन मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। इस अवसर पर श्री ओम प्रकाश प्रजापति, डॉक्टर सुरेंद्र वर्मा, डॉक्टर ब्रिजपाल सिंह संत, श्री प्रीतम सिंह प्रीतम, श्री राजेंद्र वर्मा मंचासीन रहे। श्री रामचरण सिंह साथी, श्री निर्दोष कुमार शर्मा, श्री राजेश मंडार एवं श्री सोनू सागर सहित अनेक गणमान्य व्यक्तित्वों की विशेष उपस्थिति रही। समारोह में दिल्ली NCR सहित विभिन्न क्षेत्रों से आए सैकड़ों साहित्यकार, साहित्य प्रेमी और समाज सेवी सहभागी बने। हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में 14 सितंबर 2026 को दिल्ली संस्कृत अकादमी दिल्ली सरकार द्वारा सोमवार को अकादमी के सभागार में हिंदी के विकास में संस्कृत का योगदान परंपरा से आधुनिकता तक विषय पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ वैदिक मंगलाचरण एवं दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। संगोष्ठी में लगभग 100 विद्यार्थियों तथा 30 अतिथियों, साहित्यकारों एवं भाषा साहित्य से जुड़े विद्वानों ने भाग लिया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए भाषा विशेषज्ञ एवं शिक्षाविद श्री ऋषि कुमार शर्मा ने कहा कि संस्कृत और हिंदी भारतीय संस्कृति, चिंतन और ज्ञान परंपरा की दो महत्वपूर्ण भाषाएं हैं। हिंदी की शब्द संपदा साहित्यिक अभिव्यक्ति और वैचारिक परंपरा को समृद्ध बनाने में संस्कृत का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। दोनों भाषाओं के समन्वय से भारतीय भाषाओं को नई शक्ति और व्यापक अभिव्यक्ति मिल सकती है। शर्मा ने कहा कि आज डिजिटल युग में हिंदी तेजी से नए क्षेत्रों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा रही है। विज्ञान, तकनीक, पत्रकारिता, सोशल मीडिया और रोजगार के क्षेत्र में हिंदी का विस्तार हो रहा है। ऐसे समय में संस्कृत से प्राप्त वैज्ञानिक शब्दावली और हिंदी की सहज अभिव्यक्ति का समन्वय भाषा के विकास को अधिक प्रभावी बना सकता है। दिल्ली संस्कृत अकादमी के उप सचिव प्रशासन श्री सौरभ कुमार मिश्र ने दोनों विशेषज्ञों का अंग वस्त्र पहनाकर स्वागत करते हुए कहा कि संस्कृत केवल एक प्राचीन भाषा नहीं, बल्कि भारत की समृद्ध ज्ञान परंपरा, दर्शन, साहित्य और वैज्ञानिक चिंतन की संवाहक भाषा है। कमला नेहरू महाविद्यालय के संस्कृत विभाग के सहायक आचार्य डॉक्टर अनिल कुमार ने हिंदी के क्रमिक विकास पर प्रकाश डालते हुए संस्कृत की शब्द संपदा, व्याकरण और साहित्यिक परंपरा के योगदान को रेखांकित किया। इस अवसर पर संस्कृत विशेषज्ञ रेणु रतन मिश्रा, उपन्यासकार श्री सत्यपाल चावला तथा अध्येता शिव कुमार मिश्रा सहित अनेक साहित्यकार, शिक्षक और विद्वान उपस्थित रहे। सहायक परियोजना अधिकारी राजेश चंद्र वाजपेयी ने कार्यक्रम का संचालन किया तथा धन्यवाद ज्ञापन प्रस्तुत किया। हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में 15 सितंबर 2026 को हिंदी साहित्य परिषद एवं राजभाषा कार्यान्वयन समिति हंसराज महाविद्यालय दिल्ली विश्वविद्यालय के संयुक्त तत्वावधान में अभिनंदन अपनी भाषा का शीर्षक से विशेष कार्यक्रम का आयोजन महाविद्यालय के सभागार में हुआ। इस अवसर पर हिंदी भाषा एवं साहित्य के महत्व पर विचार विमर्श के साथ विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किए गए। समारोह में मुख्य अतिथि द्वारा विभिन्न गतिविधियों एवं प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले प्रतिभागियों को पुरस्कार एवं प्रमाण पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम ने विद्यार्थियों में हिंदी के प्रति सम्मान, आत्मीयता, गौरव की भावना को और मजबूत किया।
1: अभी आप सप्ताह की प्रमुख साहित्यिक गतिविधियां सुन रहे थे। प्रस्तुत कर रहे थे युवा पत्रकार श्री ज्ञानेंद्र शर्मा। इसी के साथ साहित्यिकी का ये अंक अब यहीं संपन्न होता है। प्रस्तुति सहयोग कीर्ति बैद, प्रस्तुतकर्ता श्रवण मीणा।
2: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, DRM 810 किलोहर्ट्स पर। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम हमारे अतिथि।
3: हमारे अतिथि कार्यक्रम में आज हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं जानी मानी कवित्री डॉक्टर उर्वशी अग्रवाल से। इनसे भेंट कर रही हैं काजल सूरी। नमस्कार श्रोताओं, हमारे अतिथि कार्यक्रम में एक बार फिर से हूँ मैं आपके साथ, आपकी दोस्त और होस्ट काजल। और आज हमारे अतिथि कार्यक्रम में हमारे स्टूडियो में है एक जानी मानी कवित्री और लेखिका डॉक्टर उर्वशी अग्रवाल। डॉक्टर उर्वशी, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत।
4: बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आपका।
3: वो कहते हैं ना, लफ्ज जब एहसास बन जाए और ख्वाब जब हकीकत का रूप लें तो सफर खूबसूरत हो जाता है। डॉक्टर उर्वशी, आप जानी मानी कवित्री हैं, लेखिका हैं और इसके साथ

0: बिजनेस में भी आपने बहुत नाम कमाया है, तो आपको जो सफर रहा है साहित्य के क्षेत्र में, आपके बिजनेस के क्षेत्र में, किस तरह से आपका सफर रहा, आपकी जो इस दोहरी शख्सियत की जो यात्रा है, इसके बारे में मैं चाहूंगी कि हमारे श्रोताओं को बताएं।
1: इससे पहले मैं दो पंक्तियां अगर आप मुझे परमिशन दें तो। हसीन चेहरे सलाम तुमको, सुना रही हूँ कलाम तुमको, मेरी तरफ भी हो तवज्जो, मेरी तरफ से प्रणाम तुम। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप बात कर रही थी बिजनेस की,
0: आपके सफर की,
1: मेरे सफर की। कम उम्र में बहुत सारे एक्सपीरियंसेस मैंने ले लिए हैं। बिजनेस का एक्सपीरियंस भी मेरे पास है 10 से 12 साल, 15 साल का एक्सपीरियंस, जिसमें मैंने सबसे पहले, मेरे ख्याल से, मैंने एक बुटीक से अपने जीवन की शुरुआत की थी, और उसके साथ साथ मैं एक्सपोर्ट में आई, और फिर उसके बाद साथ साथ एक्सपोर्ट्स के साथ साथ मैंने अपने आउटलेट्स तक खोले। और भारत की धरती पर नहीं, भारत की धरती पर मैंने शुरुआत जरूर की, लेकिन उस शुरुआत को, उस आरंभ को, उस प्रारंभ को जो अंजाम दिया, वो इंटरनेशनल धरती पर जाकर के दिया। और मैंने मलेशिया में बिजनेस किया था, लेकिन मेरी धरती ने मुझे वापस पुकारा और यू टर्न लेना पड़ा
0: जी।
1: तो किसी पारिवारिक परिस्थितियों की वजह से मुझे वापस आना पड़ा यहाँ पर। और उसके बाद बहुत सारी एनर्जी मेरे अंदर थी, शायद उस वक्त मेरी उम्र 35 या 36 बरस रही होगी। तो उसके बाद मैं वापस आई तो वो एनर्जी मेरे अंदर थी, मैंने कहा ना, मैं एक चकाचौंध में आ गई थी, यानी कि लाइट्स में आ गई थी। लेकिन मैंने क्योंकि अपने आप को हमेशा एक क्षमा या फिर चराग से अपनी तुलना की, एक दीपक से अपनी तुलना की है, तो उस चकाचौंध में काजल दीपक का कोई काम नहीं होता। अगर हम सूरज की रोशनी में उस दीपक को जला के रख देते हैं तो कौन ही उसको देखेगा। तो मैंने एक अंधेरे कोने में अपनी जगह बनाई और अपने साहित्य को जगमगाने का काम किया, और आज मैं आपके साथ आपके स्टूडियो में बैठी हुई हूँ।
0: क्या बात, बहुत खूबसूरत बात कही आपने,
1: बहुत शुक्रिया।
0: तो आपकी साहित्यिक यात्रा, इसके बारे में मैं चाहूंगी आप हमारे श्रोताओं को बताएं।
1: जी जी काजल, साहित्यिक यात्रा की अभी शुरुआत ही हुई है। मैं यही कहूंगी कि जब हम लिखना शुरू करते हैं या लिख लेते हैं और हम अपने आप को आंकने लग जाते हैं कि हमने 2, 4, 5, 6, 10 किताबें लिख ली हैं, लेकिन मेरे ख्याल से वो एक मीन्स प्रैक्टिस होती है। साहित्य की यात्रा तो अब शुरू हुई है, अब हम अपने अग्रज, अपने बड़ों को सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, और ईश्वर की कृपा से ये यात्रा बहुत आगे तक जाएगी। और इस यात्रा में जो मेरे माइलस्टोन्स रहे हैं, मैं शबरी हूँ राम की एवं व्यथा कहे पांचाली जैसी अनेक पुस्तकें मैं नहीं लिख पाई हूँ, बट हां जी, मैं गजल मेरा पैशन है, उस पर मैंने 5 किताबें कही हैं। बेसिक बनाम डिजिटल बचपन पर मैंने हमारे जमाने और हमारे मम्मी पापा के जमाने या फिर इनके हमारे दादी दादा के जमाने की बात करने की कोशिश की है, और उसको मैंने रिलेट किया है आजकल के बचपन के साथ। और इस पुस्तक का नाम मैंने रखा है काजल, बेसिक बनाम डिजिटल बचपन।
0: क्या बात,
1: तो कंप्लीट, बिकॉज हम आजकल डिजिटलाइज हो चुके हैं, हमारे जो बच्चे हैं आजकल की जो जनरेशन है, जेंजीज तो हैं ही, उनसे जो अब बच्चे आ रहे हैं वो फोन के साथ पैदा हो रहे हैं, राइट। तो साहित्य की यात्रा में बहुत सारे तजुर्बे मिले हैं।
0: अभी आपने कहा कि आपका गजल लिखना आपका पैशन रहा है, तो मैं जरूर चाहूंगी अपने हमारे श्रोताओं को आप कोई गजल जरूर सुनाए।
1: जो मेरी पहली गजल थी जो मुझे गजल की तरफ लेकर के गई थी, और ये गजल मुझे प्रिय है और इसको मैं अक्सर मंचों पर भी सुनाती हूँ और पसंद की जाती है, वो इस तरीके से है कि शबनम की एक बूंद दहकते अंगारों से क्या लड़ती।
0: क्या बात,
1: शबनम की एक बूंद दहकते अंगारों से क्या लड़ती, एक अकेला जुगनू थी मैं अंधियारों से क्या लड़ती।
0: क्या बात, बहुत खूबसूरत।
1: मैं थी नींव जड़ा एक पत्थर मीनारों से क्या लड़ती, मैं थी नींव जड़ा एक पत्थर मीनारों से क्या लड़ती, और मेरे समर्पण में तड़पन थी, किस किस से ये बात कहूं, एक अकेली मछली थी मैं मछुआरों से क्या लड़ती।
0: बहुत खूबसूरत,
1: समर्पण की इंतहा मैंने इस शेर के द्वारा कही, और वही हालात हमारे कई बार लड़कियों के लिए भी पैदा हो जाते हैं। और फिर तब मैं कहती हूँ कि काल कभी घेरे अनजाना, मुश्किल हो तेरा बचपाना, फिर अरियों का ही वध करने को बेटी तुम दुर्गा बन जाना।
0: बहुत खूबसूरत,
1: और तन्हा ही कर डाला खुद को मैंने मीन कहानी से, पल पल रंग बदलने वाले किरदारों से क्या लड़ती। अब मक्ता पेश करती हूँ कि जी में तो आया था उर्वी, अपना जीवन जी लूं मैं, लेकिन अपने आदर्शों और संस्कारों का क्या करती? जो कि जिनकी आज मुझे लगता है कि जरूरत नहीं होती है ना, या फिर उन आदर्शों और संस्कारों के साथ ही तो हम आगे चल रहे हैं, पहलुओं के साथ हम बात कर सकते हैं।
0: बहुत खूबसूरत, बहुत शुक्रिया, खूबसूरत बात कही आपने। आपने भी बात की, मैं शबरी हूँ राम की विधा कहे पंचाली, इस पर भी मैं जरूर आऊंगी। लेकिन वो कहते हैं ना, शब्दों में संवेदना और निर्णय में दृढ़ता, क्या एक सफल महिला के लिए व्यक्तित्व में इन दोनों का होना जरूरी है कि आपके शब्दों में संवेदना हो और आपके फैसलों में एक दृढ़ता हो? क्या
1: बिल्कुल कहेंगे? जब हमारे फैसले ही दृढ़ नहीं होंगे, जब हम मींस कहते हैं ना, जहां चाह वहां रहा, हमें तो सबसे पहले अपनी दृढ़ता को आगे लेके जाना होता है और तभी हम आगे कुछ कर सकते हैं। अगर किसी चीज का हम फैसला ही नहीं करेंगे तो हम उसको अंजाम कैसे देंगे?
0: बिल्कुल सही कह रही हैं। तो अब मैं आपकी जो विधा कहे पांचाली बहुत बड़ा कविता संग्रह है उस पे मैं आती हूँ और मैं कहती हूँ उसके बारे में आप जरूर बताएं, विधा कहे पांचाली के बारे में जरूर बताएं, और आपका जो अनुभव रहा है उसको लिखने में वो मैं चाहूंगी कि आप श्रोताओं से हमारे
1: जी जरूर अवश्य
0: शेयर करें।
1: तो अब आप पांचाली के बारे में जो पूछ रहे हैं, इसका एक बहुत बड़ा सफर रहा है। पांचाली को लिखने में मैंने 9 वर्ष लगाए, लेकिन सोचिए पांचाली ने तो जब तक जीवन पर्यंत वो जी थी, एक दुखों और कष्टों के साथ जी थी। उस वक्त ही शायद मैंने सोच लिया था कि मुझे इस करेक्टर को जानना है, इस परिचय को मुझे जानना है। तो जब मैंने ये देखा और मैं ये इस चीज के साथ बड़ी होने लगी, राइट, ये क्या है, उसके बाद धीरे धीरे धीरे आज इसको मैंने पढ़ा और एक कविता लिख डाली। जब मैंने वो कविता परम पूजनीय अपने ससुर जी को सुनाई तो उन्होंने कहा, उर्वशी ये कविता पर आपका काम हो सकता है। उन्होंने भरे मन से और बहुत मन भर करके मुझे आशीर्वाद दिया
0: और प्रोत्साहन भी दिया,
1: प्रोत्साहन दिया। और पता नहीं कब ये व्यथा कहे पांचाली की रचना शुरू हो गई। काजल, मैं यहाँ पर कहना चाहूंगी कि इस किताब को लिखने में मुझे 9 वर्ष का
0: समय लग गए, एक बहुत लंबा
1: अरसा, 7 से 8 साल में मैंने इसको लिखा होगा। और इसके केश बांधने में अंतिम जो इसका मीन साज सज्जा थी इस किताब की, उसमें मुझे लगता है कि मैंने 1.5 से 2 वर्ष लगाए और उसके साथ साथ काम करती रही। तो अपनी तरह की एक अनूठी कृति है ये। मैं इसलिए नहीं कह रही हूँ कि ये किताब मैंने लिखी है, लिखने वाले लेखक को अपनी कविता की हर पंक्ति और अपनी हर एक किताब प्रिय होती है, बच्चों के समान होती है। तो 9 वर्ष लगाए और जब मैंने इसको एज ए श्रोता भी पढ़ा, इस पर नाटक भी हो चुका है और बहुत पसंद किया गया, आज भी आगे चर्चा चल रही है इस पर नाटक करने की। और इसी तरीके से जब ये किताब पूरी हुई, दर्शकों के हाथ में आई, काजल मेरे 5 संस्करण इस किताब के आ चुके हैं और इसकी कई पंक्तियां मैं अगर आपको हो
0: जरूर,
1: सुना
0: जरूर,
1: देती हूं।
0: बिल्कुल।
1: तो इसमें मैंने जो बात ये जरूर कहना चाहती हूँ कि मैंने इसको आज की पांचाली के साथ जोड़ दिया, जो चीजें उस वक्त थी वो आज भी हैं, ठीक है ना। तो ये मैंने लिखा और इसको जो सबसे अच्छा काम मुझे इस किताब में लगा है काजल, वो ये लगा है कि मैंने एक अध्याय लिखा है द्रौपदी की ऊहापोह।
0: बिल्कुल बिल्कुल, मैंने पढ़ा है आपका ये, इसको मैं अगर ग्रंथ कहूँ तो
1: जी काव्यखंड को आप
0: बड़ा खूबसूरत,
1: क्योंकि यहाँ मैं ये कहना चाहती हूँ कि लोग महाभारत अपने घरों में नहीं रखते, महाभारत से बड़ी कोई सीख नहीं है।
0: बिल्कुल।
1: और मैंने, आप कहोगे कि मैंने एक मिनी महाभारत द्रौपदी के दृष्टिकोण से
0: आपने लिखी,
1: मैंने कोशिश की है
0: और बहुत खूबसूरत,
1: अगर दर्शक पढ़ेंगे तो मेरी कोशिश कामयाब होगी।
0: बहुत खूबसूरत लिखा
1: तो है। उहा पोह से मैं कुछ पंक्तियां सुनाना चाहूंगी।
0: जरूर।
1: ये द्रौपदी कह रही है, मैं नहीं कह रही हूँ। पीड़ा एक खरी है मन में, पीड़ा एक खरी है मन में, उहा पोह भरी है मन में, युद्ध हुआ था ये दुखदाई, क्या केवल मैं उत्तरदाई, कुंती कर्ण व 5 भाई, सब कौरव थे उत्तरदायी, उत्तरदायी सभी बड़े थे, भरी सभा में मौन खड़े थे, युद्ध का कारण बतलाऊंगी मैं, आगे तब बढ़ पाऊं।
0: क्या बात।
1: तो यहां से मैं शुरुआत करती हूं कि काश वचन स्वीकार न करती, काश वचन स्वीकार न करती, मैं भी रेखा, मैंने क्यों मानी थी कुंती की वो शर्त। इससे पहले मैं फिर से शुरुआत करती हूँ कि काश वचन स्वीकार न करती, आपको ले जाती हूँ कुंती की उस कुटिया में जब अर्जुन उसे ब्याह करके लेके गए थे। काश वचन स्वीकार न करती, मैं भी रेखा पार न करती, 5 पिया स्वीकारे क्यों थे, हुला शिवा का नेत्र न होता तो शायद कुरुक्षेत्र ना होता। मैं बीच बीच में सुना रही हूँ आपको।
0: आपने इसमें गीता का भी बहुत खूबसूरत लिखा है जब मैंने
1: जी मैं आपको सुनाती हूँ। मैंने कोशिश की है यहाँ पर युद्ध के पर्यायवाची शब्दों को अपने इस ऊहापोह के अध्याय में लेने
0: लेने का
1: ठीक है ना। तो अभी कारण मैं आपको बता चुकी हूँ, अर्जुन भी बता दिया है मैंने, कुंती भी बता दी है। अब मैं कहती हूँ कि सब, अब मैं ये कहती हूँ कि काश ना मुझको वर के लाइए कार्ड, सॉरी जो मैं अभी कह रही थी कि युद्ध के पर्यायवाची है, तो मैं यहाँ कहती हूँ कि काश ना मुझको वर के लाता, अर्जुन सारे दुख का दाता, सत्य यही जो समर न होता, कुरुक्षेत्र फिर अमर न होता।
0: क्या बात,
1: समर युद्ध का पर्याय,
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: काश कर्ण, अब एक कारण कर्ण भी था, काश कर्ण को वर लेती मैं, वाणी वश में कर लेती मैं, कर्ण अगर ना रोता शायद, तो संग्राम ना होता शायद। संग्राम
0: बिल्कुल,
1: दुशासन को माफ जो करती, लाल ना होती फिर ये धरती, दुशासन मति मंद ना होता, रिश्तों में फिर द्वंद ना होता। द्वंद, दुर्योधन से हुई लड़ाई, सचमुच कृष्णा अब पछताए, जो दुर्योधन क्रुद्ध न होता, तो शायद यह युद्ध न होता।
0: बिल्कुल,
1: जो यह नहीं लड़ाई होती, फिर भी तो पछताई होती। तो ये मैंने जो कारण देने की कोशिश की, मैंने हर उस पात्र को इसमें घेरा है जो द्रौपदी के चीरहरण में उस वक्त मौन था, या जो भी उसका कारण था। अभी आप गीता की बात कर रही थी, तो मैंने अंतिम पंक्तियां आपको ये भी सुनाना चाहूंगी इससे रिलेटेड। अगर पाप का वर्ण ना होता गीता, अच्छा ये मैं इससे पहले ये जरूर कहना चाहती हूँ काजल, यानी कि कहते हैं कि इतना 18 अक्षौहिणी सेनाओं का नुकसान हुआ, कितना खून खराबा हुआ, इससे फायदा क्या हुआ, भला क्या हुआ, किसका क्या भला हुआ, इससे क्या मिला? मैं बताती हूँ इससे क्या मिला।
0: बिल्कुल,
1: दुश्मन को यदि सजा ना मिलती, सही हमें फिर दिशा ना मिलती, दूर अंधेरा कैसे होता, नया सवेरा कैसे होता, कृष्ण अगर अवतार न धरते, अर्जुन भी संहार न करते, अगर पाप का वर्ण न होता, गीता का अवतरण न होता, कली ज्ञान की खिलती कैसे, अद्भुत गीता मिलती कैसे।
0: बहुत खूबसूरत पंक्तियां ये। अब मैं आपकी दूसरा, जो आपने जिस तरह से अपनी व्यथा कहे पांचाली लिखा, उस तरह से आपने कहा कि आपकी 16 किताबें आ चुकी हैं कविता की, और अभी आप रामायण पे भी काम कर रही हैं, तो आपकी एक और कृति मैं शबरी हूँ राम की, इस पर आते हैं, इसके बारे में मैं चाहूंगी आप हमारे श्रोताओं को बताएं। ये भी बहुत खूबसूरत किताब आपने लिखा है, बहुत ही खूबसूरत कविता।
1: ये जो शबरी है ना काजल, ये हर एक दिल में मौजूद है, हर एक जगह में, हर एक दिल में, सबके दिल में है। तो मैं शबरी हूँ राम की, चखती रहती बेर, तकती राहें आपकी, हुई कहाँ पर देर,
0: क्या बात,
1: कितने अचरज से भरा। इस दोहे ने मुझे बहुत पहचान दी है काजल, संत समागम, संतों में ये दोहा एक आकर्षण का केंद्र है, वहां पर कोट होता है ये दोहा, और वो दोहा इस प्रकार से है कि कितने अचरज से भरा शबरी का यह काम, दांतों से लिखती रही बेरों पर वो राम।
0: बहुत
1: कौन कहता है कि शबरी ने बेर झूठे किए थे। और इसका अंतिम दोहा भी मैं इस तरीके से सुनाना चाहूंगी कि आए हैं वो द्वार पर, चाहे देर सवेर, स्वीकारे हैं राम ने शबरी तेरे बेर।
0: बहुत खूबसूरत,
1: स्वीकारे हैं राम।
0: बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद, बहुत खूबसूरत। तो उर्वशी जी, इतना खूबसूरत आपने अपना लिखा हुआ सुनाया, और आपने कहा कि आपकी 16 किताबें प्रकाशित हो चुकी हैं, और जिस पे आप रामायण पे भी काम कर रही हैं।
1: बस अगर पांचाली ने 9 वर्ष लिए हैं तो ये भी टाइम वर्ष तो ये भी लेगा।
0: लेकिन तो आपकी निरंतर ये साहित्यिक यात्रा चलती रही, यही हमारी कामना है। तो आप हमारे स्टूडियोज में आई और इतनी खूबसूरत बातें की, इतनी खूबसूरत अपनी कविताएं हमको सुनाई, हमारे श्रोताओं को सुनाई, खासतौर पर व्यथा कहे पांचाली आपकी गजल और मैं शबरी हूँ राम की, बहुत खूबसूरत। तो डॉक्टर ऋषि अग्रवाल, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: बहुत शुक्रिया, बहुत आभार आपका, धन्यवाद आपका।
0: तो श्रोताओं, ये थी हमारी आज की अतिथि डॉक्टर उर्वशी अग्रवाल, और मैं आपके साथ आपकी दोस्त काजल, इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता काजल सूरी। हमारे अतिथि कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर उर्वशी अग्रवाल से भेंट वार्ता, इनसे भेंट कर रही थी काजल सूरी।

لتؤمنوا بالله ورسوله وتعلموا

يضر

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। राष्ट्रीय संकल्प समारोह आज देश भर में 1067 स्थानों पर आयोजित किया जा रहा है। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के अनुसार विकसित भारत के लिए 100 सप्ताह के नशा मुक्त युवा अभियान के अंतर्गत युवा एकजुट हो रहे हैं। समारोह में नशा मुक्ति शपथ, हस्ताक्षर अभियान, नुक्कड़ नाटक, नारा लेखन और चर्चाओं के जरिए अभियान का संदेश सीधे युवाओं तक पहुंचाया जा रहा है। सब्सिडी वाले रसोई गैस की बुकिंग के लिए 1 अक्टूबर से आधार से संबद्ध बायोमेट्रिक प्रमाणन जरूरी होगा। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा कि इसका उद्देश्य पात्र परिवारों को ही सब्सिडी वाला LPG सिलेंडर प्रदान करना है। एक रिपोर्ट।
1: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि इस प्रक्रिया का उद्देश्य किसी भी पात्र परिवार को LPG से वंचित करना नहीं है। जो ग्राहक पहले ही प्रमाणीकरण पूरा कर चुके हैं, उन्हें दोबारा यह कराने की जरूरत नहीं है। मंत्रालय ने कहा कि प्रत्येक कनेक्शन को आधार से सत्यापित उपभोक्ता से जोड़ने से सब्सिडी वाले घरेलू सिलेंडरों का व्यावसायिक और औद्योगिक इस्तेमाल के लिए होने वाले दुरुपयोग को रोकने में मदद मिलेगी। सुपर्णा सैकिया के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम नई दिल्ली में पर्यावरण और जलवायु गतिशीलता के भविष्य पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करेंगी। राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने इस 2 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन किया है। मुंबई के कोस्टल रोड पर आज सवेरे एक BMW कार के दुर्घटनाग्रस्त होने से 3 लोगों की मृत्यु हो गई और एक अन्य व्यक्ति घायल हो गया। कार मरीन ड्राइव से हाजी अली की ओर जा रही थी। घायल व्यक्ति को नायर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि सेमीकंडक्टर उद्योग को साइबर हमलों और अन्य बाधाओं के लिए तैयार रहना चाहिए।

0: उन्होंने कहा कि कुछ देश भारत को इस क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ने देना चाहते। एक मीडिया संस्थान से बातचीत में श्री वैष्णव ने कहा कि चिप डिजाइन और विनिर्माण में सक्षम देश के रूप में उभरने के कारण भारत को संभावित भू राजनीतिक जोखिमों को लेकर सतर्क रहना होगा। उन्होंने कहा कि कई कंपनियां और देश अब भारत को अपने लिए खतरा मान सकते हैं। निर्वाचन आयोग आज नई दिल्ली में सभी मतदान केंद्रों पर विशेष शिविर आयोजित कर रहा है। इस दौरान मतदाता सूची में सुधार के लिए दावे और आपत्ति दर्ज की जा सकेंगी। दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी अशोक कुमार ने विशेष गहन पुनरीक्षण के संबंध में कहा कि सुनवाई के दौरान गैर सूचीबद्ध दस्तावेज पर भी विचार किया जा सकता है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव में अध्यक्ष, सचिव और संयुक्त सचिव के पद जीत लिए हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह ने विश्वविद्यालय चुनाव में परिषद की सफलता पर बधाई दी है। श्री राजनाथ सिंह ने कहा, ये जीत राष्ट्र प्रथम नीति में युवाओं के अटूट विश्वास का प्रतीक है। श्री शाह ने कहा कि ये जीत छात्र कल्याण के लिए परिषद की प्रतिबद्धता दर्शाता है। भारत ने जापान के आयची नागोया में एशियाई खेलों में महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल टीम स्पर्धा का रजत पदक जीत लिया है। एला वेनिल वेलरिवन, सोनल मस्कर और विदर्शा विनोद की टीम ने देश को पहला पदक दिलाया। चीन ने विश्व रिकॉर्ड के साथ स्वर्ण पदक जीता, जापान को कांस्य पदक मिला। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने एशियाई खेलों में महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल टीम स्पर्धा में रजत पदक जीतने पर एला वेनिल वेलरिवन, सोनम मस्कर और विदर्शा के विनोद को बधाई दी। डॉक्टर मांडविया ने सोशल मीडिया पोस्ट में भारतीय दल के लिए भविष्य में गौरवशाली क्षणों की कामना की है। जापान एशियाई खेलों में महिला T20 क्रिकेट के दूसरे सेमीफाइनल में भारत ने बांग्लादेश को 196 रन का लक्ष्य दिया है। भारत ने 20 ओवर में 4 विकेट पर 195 रन बनाए। इससे पहले भारत ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया। क्वार्टर फाइनल में भारत ने जापान को 8 विकेट से हराया था। चीन के साथ क्वार्टर फाइनल में वर्षा के कारण रद्द होने से बेहतर रैंकिंग के कारण बांग्लादेश सेमीफाइनल में पहुंचा। भारतीय महिला हॉकी टीम ने एशियाई खेलों में पूल बी के पहले मुकाबले में उज्बेकिस्तान को 19-0 से रौंद दिया है। दीपिका सहरावत ने 8, इश्का चौधरी ने 3, जबकि लाल थन तुलांगे और नेहा ने 2 गोल दागे। भारत का अगला मुकाबला कल इंडोनेशिया से होगा। गृह मंत्री अमित शाह ने आज पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य की जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य ने अखिल विश्व गायत्री परिवार की स्थापना कर संस्कृति उत्थान का मार्ग प्रशस्त किया। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani. The news read by Abhishek Mukhopadhyay. President Draupadi Murmu will address valedictory session of the International Conference on the Future of Environment and Climate Dynamics in New Delhi this evening. The two-day conference has been organized by the National Green Tribunal, NGT. We have a report.
2: The Conference on the Future of Environment and Climate Dynamics provided a platform for the exchange of judicial approaches, scientific knowledge, environmental governance practices, and institutional experiences across jurisdictions. The conference witnessed the participation of environmental experts, judges of the Supreme Court of India and High Courts, district court judges, secretaries of various ministries, senior government officials, and other stakeholders. It also brought together eminent judges and judicial representatives from 17 countries. It facilitated dialogue on critical environmental and climate challenges, including gaps in policy formulation, implementation and enforcement, and explore ways to strengthen environmental governance and institutional cooperation. Aman Yadav, Akashvani News, Delhi.
1: Government has said that biometric Aadhaar authentication is mandatory for subsidized domestic LPG refills from the 1st of October this year. Domestic LPG consumers will need to have completed biometric Aadhaar authentication to book refills at the regulated retail selling price with applicable subsidy. Linking its connection to the Aadhaar authenticated consumer will help prevent diversion of subsidized domestic cylinders for commercial and industrial use. It will remove duplicate and ineligible connections and make subsidy delivery transparent and targeted. Minister of Petroleum and Natural Gas has said the process is not meant to deny LPG to any genuine household and every eligible consumer has several easy ways to complete it. In Mumbai, 2 people were killed and 4 others injured after an electric shock at a temporary drinking water stall near Ganesh Utsav Mandal in Kala Chowki early this morning.

0: Susie Bates' tally of 4,758 runs. And that is the end of this news bulletin.
1: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज और डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज पर प्रस्तुत है हमारी ग्रामीण बहनों का प्रिय कार्यक्रम गृहलक्ष्मी।

0: में फैमिली कोड की स्थापना की गई, वो भी दुर्गाबाई देशमुख की ही देन है। तो वो देश पर हम जान लुटाएंगे ऐसे लोगों के लिए, जैसे होता है कि इन्होंने अपनी जान को आगे दिया हम लोगों के लिए। आज हम आराम से बैठे हुए हैं, आबोहवा में अच्छे से जी रहे हैं, और साथ साथ ये भी बता दें कि एशियाई खेलों का शुभारंभ
1: हो चुका है, जो कि जापान के आइची नागोया में हुआ है, और इसमें भारत के 503 सदस्य और 234 महिला खिलाड़ी हिस्सा ले रही हैं।
0: बिल्कुल,

0: में फैमिली कोड की स्थापना की गई, वो भी दुर्गाबाई देशमुख की ही देन है। तो वो देश पर हम जान लुटाएंगे ऐसे लोगों के लिए, जैसे होता है कि इन्होंने अपनी जान को आगे दिया हम लोगों के लिए। आज हम आराम से बैठे हुए हैं, आबोहवा में अच्छे से जी रहे हैं, और साथ साथ ये भी बता दें कि एशियाई खेलों का शुभारंभ
1: हो चुका है, जो कि जापान के आइची नागोया में हुआ है, और इसमें भारत के 503 सदस्य और 234 महिला खिलाड़ी हिस्सा ले रही हैं।
0: बिल्कुल,

और हो सकता है आपके दिल ने भी जो चाहा वो पूरा हो गया है आज के कार्यक्रम एक ही फिल्म से, क्योंकि आज हम लाए हैं 1971 में आई एक ऐसी फिल्म जिसमें प्यार है, परिवार, दोस्ती, दुश्मनी, रहस्य और एक्शन। हो सकता है फिल्म का गाना सुनकर आपने फिल्म के नाम का अंदाजा भी लगा लिया हो। फिल्म का नाम है रखवाला। फिल्म में मुख्य भूमि

सुरेश के भविष्य की चिंता है। वो दीपक से सुरेश की रक्षा करने का वचन लेती है। दीपक अपनी माँ को वचन देता है कि वो हर परिस्थिति में, चाहे कैसा भी संकट आए, अपने भाई की रक्षा करेगा। लेकिन लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर है। परिवार से जुड़ा एक ऐसा रहस्य सामने आता है जो कई लोगों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। ये रहस्य गलत हाथों तक पहुंच जाता है।

रेडियो दोस्त तृप्ति जौहरी के साथ। उम्मीद करती हूँ कार्यक्रम सुनकर आपको आनंद आ रहा होगा और गीत आपकी ही पसंद के बज रहे होंगे। तो आप अपनी प्रतिक्रिया हमें जल्दी से भेजिए ipradiodelhi@gmail.com पर। तब तक हम कहानी को आगे बढ़ाते हैं, जो फिल्म की कहानी अब रहस्य और रोमांच को और भी बढ़ाती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दीपक के खिलाफ परिस्थितियां

0: मीडिया संस्था नाल गलबात करदे उन्हां कहा कि भारत नूं संभावी भूसियासी जोखमां बारे सुचेत रहण दी जरूरत है क्योंकि इह इक समर्थ चिप डिजाइन अते निर्माण करन वाले देश वजों उभर रहा है। बहुत सारियां कंपनियां अते देश इस नूं इक खतरे वजों देख सकदे ने।
1: We have to continuously be watchful of the
2: भारत चिप्स डिजाइन और निर्माण करने वाले देश के तौर पर उभर रहा है, इसलिए हमें संभावित भौगोलिक राजनीतिक जोखिमों पर लगातार नजर रखनी होगी। कई दूसरे स्थापित प्रति

0: हरजियन दो तरफा फिजाई मशकों के साथ दिफाई इश्तराक को मुस्तहकम बनाया है। मगरबी एशिया में कशीदगी फिर बढ़ गई है। हौसियों ने सऊदी अरब पर मिजाइल और ड्रोन हमले किए हैं। जापान में जारी एशियाई खेलों में भारतीय निशानेबाजों ने चांदी के दो तमगे जीते हैं। भारत बांग्लादेश को हराकर एशियाई खेलों के ख्वातीन क्रिकेट के फाइनल में पहुंच गया है। शिफाली वर्मा एशियाई खेलों में सेंचुरी बनाने वाली पहली बल्लेबाज बन गई हैं। और भारतीय मौसमियात महकमे ने अंडमान और निकोबार जजायर, साहिली आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और तेलंगाना में तेज बारिश होने की पेशगोई की है। अब खबरें तफसील से। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज शाम नई दिल्ली में माहौलियात और आबोहवा के मुहर्रिकात के मुस्तकबिल के बारे में बैन अल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस के इख्तितामी इजलास से खिताब करेंगी। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने इस दो रोज़ा कॉन्फ्रेंस का अहतमाम किया है। उम्मीद है कि इजलास के दौरान बिजली महकमे के मरकजी वजीर मनोहर लाल, सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस बीवी नागरत्ना और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के चेयरपर्सन जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव और भारत के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता भी मौजूद रहेंगे। मजीद तफसील हमारे नामा निगार से।
1: माहौलियात और आबोहवा के मुहर्रिकात के मुस्तकबिल से मुतालिक इस कॉन्फ्रेंस ने अदालती हिकमत अमली, साइंसी मालूमात, माहौलियात से मुतालिक हुक्मरानी के तौर तरीकों और इदारा जाती तजुर्बात के तबादले के लिए एक प्लेटफॉर्म फराहम किया है। इस कॉन्फ्रेंस में माहौलियात के माहिरीन भारत के सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट्स

भारतीय मौसमियात महकमे ने आज अंडमान और निकोबार जजायर, साहिली आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरलम, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल और तेलंगाना में तेज बारिश होने की पेशगोई की है। इधर मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा, मशरकी राजस्थान, गंगा की तराई वाले मगरबी बंगाल, झारखंड, कोंकण, गोवा, मध्य प्रदेश, मराठवाड़ा, तेलंगाना और विदर्भ में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ बारिश होने का इम्कान है। मौसमियात महकमे ने कौमी राजधानी

0: experience thunderstorms accompanied by lightning and gusty winds. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. President Draupadi Murmu to address valedictory session of the International Conference on the Future of Environment and Climate Dynamics in New Delhi this evening. Rashtriya Sankalp Samaroh been organized at various locations across the country to eradicate drug abuse among youth. Tensions escalate in West Asia's Houthis launch missile and drone attacks in Saudi Arabia. Indian shooters shine at Asian Games with 2 silver medals in Nagoya, Japan. India storms into the finals of Asian Games women's cricket after defeating Bangladesh in Nisin, Japan. Shefali Verma becomes first batter to score century. Smriti Mandhana becomes highest run scorer in the Women's T20 International. An IMD forecasts heavy rainfall of Andaman and Nicobar Islands, coastal Andhra Pradesh, Karnataka, Kerala, Tamil Nadu, Puducherry and Telangana today. And with that, we end the midday news.
1: दोनों वायु सेनाओं के बीच
2: नमस्कार आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम दिल्ली में पर्यावरण और जलवायु गतिशीलता का भविष्य पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करेंगी युवाओं में मादक पदार्थों का दुरुपयोग समाप्त करने के लिए देश भर में आज राष्ट्रीय संकल्प समारोह का आयोजन हौसी विद्रोहियों के सऊदी अरब पर मिसाइल और ड्रोन हमले के बाद पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ा जापान के नगोया में एशियाई खेलों में भारतीय निशानेबाजों ने 2 रजत पदक जीते भारत महिला क्रिकेट के फाइनल में शेफाली वर्मा शतक बनाने वाली पहली बल्लेबाज और स्मृति मानधना महिला T20 क्रिकेट में सर्वाधिक रन बनाने वाली खिलाड़ी बनी और अंडमान निकोबार द्वीप समूह तटीय आंध्र प्रदेश कर्नाटक केरलम तमिलनाडु पुदुचेरी और तेलंगाना में आज तेज वर्षा का अनुमान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम नई दिल्ली में पर्यावरण और जलवायु गतिशीलता का भविष्य विषय पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करेंगी राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने इस 2 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन किया है एक रिपोर्ट
3: पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन से जुड़े भविष्य के विषय पर आयोजित सम्मेलन ने अलग अलग देशों और क्षेत्रों में न्यायपालिका के काम करने के तरीकों वैज्ञानिक जानकारी पर्यावरण से जुड़े प्रशासनिक अनुभवों और संस्थागत कार्य प्रणाली को साझा करने का मंच प्रदान किया इस सम्मेलन में पर्यावरण विशेषज्ञों भारत के सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों जिला न्यायालयों के न्यायाधीशों विभिन्न मंत्रालयों के सचिवों वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों और अन्य संबंधित लोगों ने भाग लिया 17 देशों के प्रतिष्ठित न्यायाधीश और न्यायिक प्रतिनिधि भी सम्मेलन में शामिल हुए सम्मेलन में पर्यावरण जलवायु से जुड़ी महत्वपूर्ण चुनौतियों पर चर्चा की गई इनमें नीतियां बनाने उन्हें लागू करने और उनका पालन सुनिश्चित करने में आने वाली कमियों पर भी विचार किया गया साथ ही पर्यावरण संरक्षण को बेहतर बनाने और विभिन्न संस्थानों के बीच सहयोग मजबूत करने के तरीकों पर भी चर्चा की गई अमन यादव आकाशवाणी समाचार दिल्ली
2: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन मंगलवार को नई दिल्ली में 9वें भारत अंतर्राष्ट्रीय जल सप्ताह का उद्घाटन करेंगे 5 दिन के इस आयोजन का विषय है जलवायु अनुकूल जल प्रबंधन जल शक्ति मंत्रालय ने बताया कि इस अंतर्राष्ट्रीय आयोजन में नीदरलैंड्स और जर्मनी साझेदार देश के रूप में शामिल होंगे 14 राज्य इसमें भाग लेंगे जबकि 6 केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों को भी आमंत्रित किया गया है 22 से 25 सितंबर तक अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी का भी आयोजन किया जाएगा इसमें टिकाऊ और जलवायु अनुकूलन जल प्रबंधन से जुड़ी नवीन तकनीकों उत्पादों और समाधानों को प्रदर्शित किया जाएगा इस दौरान 22 से 24 सितंबर तक दूसरा अंतर्राष्ट्रीय वॉश सम्मेलन भी होगा युवाओं में मादक पदार्थों का दुरुपयोग समाप्त करने के लिए देशभर में आज राष्ट्रीय संकल्प समारोह का आयोजन किया जा रहा है युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के अनुसार 1067 स्थानों पर यह समारोह आयोजित किया जा रहा है विकसित भारत के लिए 100 सप्ताह के नशा मुक्त युवा अभियान के अंतर्गत देश भर के युवा शामिल हो रहे हैं समारोह में नशा मुक्ति शपथ हस्ताक्षर अभियान नुक्कड़ नाटक नारा लेखन और चर्चाओं के जरिए अभियान का संदेश सीधे युवाओं तक पहुंचाया जा रहा है नशा मुक्त पंजाब यात्रा के तीसरे चरण का शुभारंभ आज विधि और न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने फजिलका के सादिकी सीमावर्ती क्षेत्र से किया उन्होंने राज्य भाजपा अध्यक्ष केवल सिंह ढिल्लों और अन्य पार्टी नेताओं के साथ आसफ वाला युद्ध स्मारक पर 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि इस यात्रा को राजनीतिक नजरिए से नहीं देखा जाना चाहिए।

0: ये पंजाब की भावी पीढ़ी को बचाने का कार्यक्रम है। जैसे प्रधानमंत्री जी ने ऐसे कई कार्यक्रम हाथ में लिए, एक पेड़ माँ के नाम, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये समाज सुधार से जुड़े हुए कार्यक्रम है। पंजाब को हम विकसित पंजाब बनाना चाहते हैं, क्योंकि हमारा जो बड़ा उद्देश्य है भारत को विकसित भारत बनाना, उसमें सभी राज्यों में विकास तेजी से हो, ये भी हमारा एक उद्देश्य है।
1: श्री मेघवाल ने नशा प्रभावित परिवारों के सदस्यों से भी मुलाकात की और उनके दुख में भागीदार हुए। इससे पहले शुक्रवार को पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने पठानकोट के सीमावर्ती जिले से यात्रा का शुभारंभ किया था। यह यात्रा पंजाब की तीन प्रमुख चुनौतियों, बढ़ती नशीली दवाओं की समस्या, बिगड़ती कानून व्यवस्था और शासन के हर स्तर पर भ्रष्टाचार पर केंद्रित है। इसका उद्देश्य राज्य के सभी 117 विधानसभा क्षेत्रों को शामिल करना है, ताकि नशीली दवाओं के खिलाफ लड़ाई को एक जन आंदोलन में बदला जा सके। नशा मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत तेलंगाना में कई विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। सामाजिक और स्वयंसेवी संगठन इस अभियान में भाग ले रहे हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस पहल के अंतर्गत आज हैदराबाद में एक साइकिल रैली का आयोजन किया गया।
2: देशव्यापी अभियान के तहत आज हैदराबाद के नेकलेस रोड पर नशा मुक्त भारत साइकिल रैली आयोजित की गई। भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद डॉक्टर के लक्ष्मण ने इस रैली में हिस्सा लिया और नेकलेस रोड पर युवाओं और साइकिल चालकों के साथ साइकिल चलाई। युवाओं पर नशीले पदार्थों के गंभीर असर का उल्लेख करते हुए उन्होंने प्रतिभागियों को नशा न करने की शपथ दिलाई। इस अवसर पर सांसद के लक्ष्मण ने कहा कि स्वस्थ युवा ही एक मजबूत और विकसित भारत के निर्माण का आधार है। उन्होंने सभी से इस अभियान में शामिल होने की अपील की। हैदराबाद से गोपागोनी सप्तगिरी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मनोज।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जन सेवा से देश सेवा के मंत्र और निरंतर प्रतिबद्धता से परिभाषित सार्वजनिक सेवा के 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। सेवा और सुशासन के इसी दृष्टिकोण से प्रेरित होकर सरकार 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में निरंतर काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के माध्यम से ये समर्पण लोगों के जीवन को बदल रहा है। इस अवसर पर हम सेवा संकल्प अभियान की विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहे हैं। आज प्रस्तुत है बिहार के किसानों के लिए नीम कोटेड यूरिया के लाभ पर हमारी विशेष श्रृंखला।
3: बिहार में इम्पोर्टेड नीम कोटेड यूरिया की शुरुआत दिसंबर 2015 से की गई। कृषि विभाग के आंकड़ों के अनुसार इसके इस्तेमाल से राज्य में अरहर और सोयाबीन सहित दलहन फसलों की वृद्धि में 15% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है, जबकि अन्य फसलों में करीब 10% की वृद्धि हुई है। किसानों में जागरूकता बढ़ाने के लिए राज्य सरकार विभिन्न प्रदर्शन और विस्तार कार्यक्रमों के माध्यम से नीम कोटेड यूरिया को बढ़ावा दे रही है। पैक्स और अन्य खुदरा विक्रेताओं के माध्यम से इसकी उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है। और कृषि विज्ञान केंद्रों के वैज्ञानिक भी किसानों को इसके उपयोग और लाभों की जानकारी दे रहे हैं।
4: हम लोग राज्य सरकार के स्तर पर प्रत्येक डेमोन्स्ट्रेशन में जो भी हमारे किसानों के मध्य, यदि हम फील्ड में किसी उपज के प्रदर्शन करते हैं या केवीके के माध्यम से कोई काम कर रहे होते हैं, तो आम किसानों के बीच इसकी पहुंच अधिकाधिक सुलभ हो, उसमें हम नीम कोटेड यूरिया को प्रधानता देते हैं। हम लोगों ने यह तय किया है कि जितने भी हमारे डेमोन्स्ट्रेशन, चाहे वो खाद्य बीज की योजना राज्य सरकार के स्तर पर किसानों के बीच जाएगी, उसमें हम नीम कोटेड यूरिया को प्रधानता देते हैं। हमारे राज्य सरकार के जितने भी किसान हैं, उन तक इसकी सुलभता हो सके तो पैक्स एवं अन्य रिटेलर के माध्यम से एक निर्धारित मात्रा इसकी उपलब्ध रहती है।
3: कृषि विभाग के अनुसार किसानों को संतुलित उर्वरक उपयोग के तहत नीम कोटेड यूरिया के साथ अन्य उर्वरकों और जैविक खादों के इस्तेमाल के लिए भी प्रोत्साहित किया जा रहा है, ताकि उत्पादकता और किसानों की आय में वृद्धि हो सके। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से निधि श्री।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
5: आपको हर खबर से रखे अपडेट, expert@AIRNews हिंदी और पब्लिक पर @AIRNews अलर्ट्स को फॉलो करें।
1: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। सब्सिडी वाले रसोई गैस की बुकिंग के लिए 1 अक्टूबर से आधार से संबद्ध बायोमेट्रिक प्रमाणन जरूरी होगा। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा है कि इसका उद्देश्य पात्र परिवारों को ही सब्सिडी वाला एलपीजी सिलेंडर प्रदान करना है। एक रिपोर्ट।
6: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि इस प्रक्रिया का उद्देश्य किसी भी पात्र परिवार को एलपीजी से वंचित करना नहीं है। जो ग्राहक पहले ही प्रमाणीकरण पूरा कर चुके हैं, उन्हें दोबारा यह कराने की जरूरत नहीं है। मंत्रालय ने कहा कि प्रत्येक कनेक्शन को आधार से सत्यापित उपभोक्ता से जोड़ने से सब्सिडी वाले घरेलू सिलेंडरों का व्यावसायिक और औद्योगिक इस्तेमाल के लिए होने वाले दुरुपयोग को रोकने में मदद मिलेगी। सुपर्णा सैकिया के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: भारतीय वायुसेना जोधपुर वायुसेना केंद्र पर जापान वायु आत्मरक्षा बल के साथ द्विपक्षीय वायु अभ्यास वीर रक्षक 2026 का संचालन कर रही है। एक रिपोर्ट।
3: 14 दिवसीय अभ्यास मंगलवार को समाप्त होगा। ये अभ्यास उन्नत परिचालन मिशनों और दोनों वायु सेनाओं के बीच व्यापक पेशेवर समन्वय पर केंद्रित है। भारतीय वायुसेना स्वदेशी हल्के लड़ाकू विमान तेजस, ASU-30 MKI और रफाल सहित विभिन्न प्रकार के अग्रिम पंक्ति के लड़ाकू विमानों के साथ भाग ले रही है। जापान AF-2A लड़ाकू विमान के साथ अभ्यास में हिस्सा ले रहा है। अभ्यास वीर रक्षक 2026 सामरिक दक्षता और एरोस्पेस चालन तालमेल को बढ़ाकर दोनों देशों के बीच मजबूत रणनीतिक साझेदारी को दर्शाता है। समाचार कक्ष से मैं पूजा।
1: ईरान ने कहा है कि होर्मुज जलडमरू मध्य तब तक बंद रहेगा जब तक उसकी शर्तें पूरी नहीं हो जाती और अमरीका अपनी प्रतिबद्धताओं को लागू नहीं करता। ईरान की समाचार एजेंसी के अनुसार ईरानी संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बागेर गलिबाफ ने कहा कि ईरान अपने दुश्मनों के खिलाफ सैन्य बल का इस्तेमाल करता रहेगा।
7: ईरानी अधिकारियों ने एक बार फिर कहा है कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को तभी खोला जाएगा जब अमेरिका उनकी शर्तें पूरी करेगा। इनमें लड़ाई खत्म करना और ईरानी शिपिंग पर लगे प्रतिबंधों में बदलाव शामिल है। होर्मुज में जहाजों की आवाजाही अभी भी काफी सीमित है। हालांकि अमेरिका का कहना है कि पिछले दो महीनों में उसने 2000 से ज्यादा कमर्शियल जहाजों को वहां से गुजरने में मदद। वहीं हूदी हमलों के बीच अमेरिका ने वेस्ट एशिया के लिए ट्रैवल अलर्ट जारी किया है और कहा है कि हालात तेजी से बिगड़ सकते हैं। दुबई से आकाशवाणी समाचार के लिए मनीष।
1: बांग्लादेश के ढाका में आज कई बम धमाके हुए। कल भी स्थानीय पुलिस थाने के बाहर भी इसी तरह के विस्फोट हुए थे। इस घटना में एक रिक्शा चालक घायल हो गया। ढाका में कल शाम अलग अलग घटनाओं में 3 बसों में आग लगा दी गई। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
8: आपको हर खबर से रखे अपडेट expert@AIRNewsHindi और पब्लिक पर @AIRNewsAlerts को फॉलो करें।
1: ये आकाशवाणी है। जापान के नागोया में एशियाई खेलों में आज भारतीय खिलाड़ियों ने विभिन्न खेल स्पर्धाओं में शानदार प्रदर्शन किया। इन खेलों के बारे में और अधिक जानकारी दे रही हैं जागृति शर्मा।
9: जापान एशियाई खेलों में भारत की एला वेनेल वलारिवन ने 10 मीटर एयर राइफल व्यक्तिगत स्पर्धा का रजत पदक अपने नाम किया। उन्होंने टीम के रजत पदक के बाद अपना व्यक्तिगत रजत पदक जीता है। 2025 विश्व चैंपियनशिप की कांस्य पदक विजेता वलारिवन ने फाइनल में 252.4 अंक हासिल किए। जापान की हिनाता ताइची ने रिकॉर्ड 253 अंकों के साथ स्वर्ण पदक अपने नाम किया। इससे पहले भारत की एला वेनेल, सोनम मस्कर और विदर्शा विनोद की टीम ने देश को महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल टीम स्पर्धा का पहला रजत पदक दिलाया। चीन ने विश्व रिकॉर्ड के साथ स्वर्ण पदक जीता। जापान को कांस्य पदक मिला। इस बीच सुचिका तारियाल ने इतिहास रच दिया है। वे एशियाई खेलों में महिलाओं के पारंपरिक 60 किलोग्राम वर्ग के सेमीफाइनल में पहुंचकर मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स में कांस्य पदक जीतने वाली देश की पहली खिलाड़ी बन गई हैं। इस जीत के साथ सुचिका सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं और मार्शल आर्ट्स में भारत का पहला पदक सुनिश्चित कर दिया है। भारत एशियाई खेलों के महिला T20 क्रिकेट मैच के फाइनल में पहुंचा। आज दूसरे सेमीफाइनल में भारत ने बांग्लादेश को 114 रन से हराया। भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 4 विकेट पर 195 रन बनाए। भारत के 196 रन के जवाब में बांग्लादेश की पूरी टीम 16वें ओवर में 81 रन पर ही सिमट गई। शेफाली वर्मा ने सफेद गेंद का अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय शतक लगाकर इतिहास रचा। शेफाली एशियाई खेलों में शतक बनाने वाली पहली बल्लेबाज भी बन गई हैं। वहीं सलामी बल्लेबाज स्मृति मानधना महिला T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली खिलाड़ी बन गई हैं। उन्होंने न्यूजीलैंड की दिग्गज खिलाड़ी सूजी बेट्स के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है। फाइनल मैच मंगलवार को भारत और श्रीलंका के बीच खेला जाएगा। भारतीय महिला हॉकी टीम ने पूल बी के पहले मुकाबले में उज्बेकिस्तान को 19-0 से रौंदकर शानदार शुरुआत की। दीपिका सहरावत ने 8, इशिका चौधरी ने 3, जबकि लाल थंत लुआंगी और नेहा ने 2-2 गोल दागे। भारत का अगला मुकाबला कल इंडोनेशिया से होगा।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल टीम को बधाई दी है। मौसम विभाग ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह, तटीय आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरलम, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकाल और तेलंगाना में आज तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। मध्य महाराष्ट्र, उड़ीसा, पूर्वी राजस्थान, पश्चिम बंगाल के गंगे क्षेत्र, झारखंड

0: कोंकण, गोवा, मध्य प्रदेश, मराठवाड़ा, तेलंगाना और विदर्भ में भी बारिश होने की संभावना है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम नई दिल्ली में पर्यावरण और जलवायु गतिशीलता का भविष्य विषय पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करेंगी। युवाओं में मादक पदार्थों का दुरुपयोग समाप्त करने के लिए देश भर में आज राष्ट्रीय संकल्प समारोह का आयोजन। हौजी विद्रोहियों के सऊदी अरब पर मिसाइल और ड्रोन हमले के बाद पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ा। जापान के नागोया में एशियाई खेलों में भारतीय निशानेबाजों ने 2 रजत पदक जीते। महिला क्रिकेट के फाइनल में भारत पहुंचा शेफाली वर्मा, शतक बनाने वाली पहली बल्लेबाज, और स्मृति मानधना महिला T20 क्रिकेट में सर्वाधिक रन बनाने वाली खिलाड़ी बनी। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह, तटीय आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरलम, तमिलनाडु, पुदुचेरी और तेलंगाना में आज तेज वर्षा का अनुमान। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आप हैं आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल के साथ। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज, DRM 810 किलोहर्ट्ज पर। हमारे स्टूडियो की घड़ी में समय हो चुका है 2:30। जी हाँ, आपको रहता है बेसब्री से इंतजार इस समय का। आज है रविवार और रविवार आप बिल्कुल फ्री होकर बैठे हैं आज अपने इस कार्यक्रम को सुनने, क्योंकि बहुत बड़ी शख्सियत का आज जन्मदिन भी है। और खैर, वो तो हम बात करेंगे ही, लेकिन ये मैं आपको बता दूं कि आज आपके एक ही कलाकार कार्यक्रम को लेकर आपके साथ हूं मैं, आपकी दोस्त कुसुमलता। स्वीकार कीजिए मेरा प्यार भरा नमस्कार। और इस कार्यक्रम में अगर आप शिरकत करना चाहें, अपना कोई भी ऐसा वाक्य जो आपको याद आ जाए, या कोई पसंदीदा गीत, या फिर कोई बात करनी हो, तो आप भेज सकते हैं ipradiodelhi@gmail.com पर अपनी डिजिटल चिट्ठी। जी हाँ, डिजिटल चिट्ठी इसलिए क्योंकि आजकल सब कुछ डिजिटल हो चुका है, और इस ईमेल के जरिए भेजने वाले संदेश को हम कहते हैं डिजिटल चिट्ठी। तो स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। लेकिन स्वागत करते करते हम एक छोटा सा एक मधुर जो सुर है वो बांध लेते हैं अपने साथ, क्योंकि कार्यक्रम में बहुत सारे सुर बंधने वाले हैं, और क्योंकि ये तो आप अपने आप जान ही जाएंगे। खैर, कार्यक्रम की शुरुआत करती हूँ मैं, क्योंकि आज का सफर जो है थोड़ा सा अलग है। आज हम बात करेंगे उस फिल्मकार की जिसने फिल्मों में सिर्फ अपनी कहानियां नहीं कही, बल्कि जीवन के अंदर चल रही जो भी इंसान के अंदर कहानियां होती हैं उनको पर्दे पर उतारने की कोशिश की। वो कहानी जिसमें प्यार है, टूटना है, रिश्तों की उलझन है, अकेलापन है, सपने हैं, और सबसे बड़ी बात जिंदगी की सच्चाई है। जी हाँ, आज का जो एक ही कलाकार का हमारा विषय है, एक ऐसी शख्सियत महेश भट्ट, जिनके बारे में आप बहुत कुछ जानते होंगे, जिनकी फिल्मों के जरिए आपने जाना होगा कि उन्होंने अपनी फिल्मों में हर एक उस जिंदगी की सच्चाई को छूने की कोशिश की जो इंसान के भीतर चलती है। ये एक ऐसा नाम है जिसने हिंदी सिनेमा में अलग अलग तरह की कहानियों को अपनी खास नजर से देखा, कभी अर्थ के जरिए रिश्तों के भीतर की बेचैनी सामने रखी, तो कभी सारांश में उम्र, अकेलेपन, जिंदगी के अर्थ को छुआ, और फिर आशिकी जैसी फिल्म के जरिए प्रेम और संगीत को एक ऐसी लोकप्रिय पहचान दी जिसे आज भी याद किया जाता है। तो आज के अगले 30 मिनट हम सिर्फ महेश भट्ट की फिल्में नहीं गिनेंगे, हम जानने की कोशिश करेंगे आखिर वो कौन सा नजरिया था जिसने महेश भट्ट को महेश भट्ट बनाया। कौन है महेश भट्ट दोस्तों? महेश भट्ट का नाम हिंदी सिनेमा के उन फिल्मकारों में लिया जाता है जिन्होंने निर्देशन के साथ साथ लेखन और निर्माण के क्षेत्र में भी काम किया। बात करेंगे, लेकिन सुनते हैं पहले ये गीत।

तो बात कर रहे हैं आज हम महेश भट्ट की। आज इनका जन्मदिन भी है, हम सभी की तरफ से उनको जन्मदिन की विशेष शुभकामनाएं। और साथ में हम बताना चाहेंगे कि 20 सितंबर 1948 को बॉम्बे में जन्मे महेश भट्ट ने फिल्म दुनिया में अपनी फिल्मी दुनिया में अपनी शुरुआत 1970 के दशक में की थी। उनकी पहली निर्देशित फिल्म मंजिले और भी हैं 1974 में आई, लेकिन हर फिल्मकार की तरह उनके लिए भी सफ़र एक फिल्म से शुरू होकर पहचान तक नहीं पहुंचता। उसके पीछे होते हैं कई प्रयोग, कई असफलताएं,

कई सवाल और सबसे ज़रूरी अपनी आवाज़ खोजने की कोशिश। महेश भट्ट की फिल्मों में एक चीज़ बार बार दिखाई देती है, इंसान की कमजोरी को छिपाया नहीं जाता। जी हाँ, उनके किरदार हमेशा परफेक्ट नहीं होते, गलतियाँ करते हैं, टूटते हैं, कभी अपने फैसलों से जूझते हैं और कभी अपनी परिस्थितियों से। यही वजह है कि उनकी फिल्मों के किरदारों में दर्शक अक्सर खुद को तलाशता हुआ दिखाई देता है। और अब जरा माहौल को थोड़ा सा फिल्म संगीत के जरिए जोड़ देते हैं।

दोस्तों, संगीत के बिना महेश भट्ट की सिनेमाई दुनिया की चर्चा अधूरी लगती है। और अब बात उसी फिल्म की जिसने प्रेम और संगीत को एक नई लोकप्रिय पहचान दी, आशिकी।

गीत भी सुनते रहिए और बातें भी. जी हाँ, क्योंकि समय जो होता है ना बहुत ही थोड़ा होता है हमारे कार्यक्रम का और बातें बहुत ज्यादा. तो हम चाहते हैं कि गागर में सागर वाली बात कर दें, यानी कि कम समय में बहुत सारी बातें कर ले. तो बात कर रहे हैं आज हम एक ही कलाकार कार्यक्रम में महेश भट्ट की. अर्थ के जरिए उन्होंने रिश्तों को देखने का नया नजरिया बनाया. साल था 1982, फिल्म आई अर्थ. और यह सिर्फ एक प्रेम कहानी नहीं थी, ये रिश्तों के भीतर मौजूद सवालों की कहानी थी. शादी क्या है, प्यार क्या है?

विश्वास क्या है? और अगर किसी रिश्ते में दरार आ जाए तो क्या जिंदगी वहीं खत्म हो जाती है? अर्थ ने इन सवालों को बहुत ही सीधे तरीके से सामने रखा। फिल्म में शबाना आजमी, स्मिता पाटिल और कुलभूषण खरबंदा जैसे कलाकार थे। फिल्म का केंद्र था एक वैवाहिक रिश्ता जिसमें प्रेम, विश्वास और विवाह के बाद संबंध की जटिलता सामने आती है। महेश भट्ट के अपने जीवन के अनुभवों का प्रभाव भी इस फिल्म से जोड़ा जाता रहा है। लेकिन दोस्तों, किसी फिल्म की असली ताकत सिर्फ ये नहीं होती कि उसकी कहानी किससे प्रेरित है। उसकी असली जो ताकत होती है ना, वो होती है कहानी दर्शक के भीतर कौन सा सवाल छोड़ जाती है। जी हाँ, और अर्थ भी यही करती है। वो पूछती है कि अगर कोई रिश्ता टूट जाए तो क्या इंसान भी टूट जाता है, या वो खुद को दोबारा बना सकता है, जोड़ सकता है? और शायद यही वजह है कि अर्थ को आज भी एक सिर्फ पुरानी फिल्म कहकर नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। तो लीजिए, सुनते हैं अर्थ फिल्म का ये गीत।

फिर आई इनकी अगली फिल्म सारांश, जिंदगी का अर्थ। जब ये फिल्म बनी तो महेश भट्ट के करियर की सबसे महत्वपूर्ण फिल्मों में इनको गिना जाता है। नाम तो हमने आपको बताया ही। 1984 में आई ये फिल्म एक बुजुर्ग दंपति की कहानी के माध्यम से दुख, अकेलेपन, जिंदगी के अर्थ को सामने लाती है। फिल्म में अनुपम खेर ने एक बेहद ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। दिलचस्प बात यह है कि उस समय अनुपम खेर अपने करियर की शुरुआत में थे, लेकिन इस फिल्म से उन्होंने एक अभिनेता के रूप में गंभीर पहचान बनाई। सारांश को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी पहचान मिली और भारत की आधिकारिक ऑस्कर प्रविष्टि बनी। दोस्तों सोचिए, एक माता पिता, उनका इकलौता बेटा उनसे दूर चला जाता है। घर वही है, कमरे वही हैं, यादें वही हैं, लेकिन घर में मौजूद एक इंसान की कमी पूरी जिंदगी को बदल देती है। यही है सारांश की संवेदना, और शायद इसी वजह से ये फिल्म हमें एक बहुत बड़ा सवाल देती है। अब जिंदगी हमसे हमारी सबसे प्यारी चीज छीन लेती है तो हम आगे कैसे बढ़ते हैं? महेश भट्ट के सिनेमा में ऐसे सवाल बार बार लौटते हैं और यही उनकी खासियत है। दोस्तों महेश भट्ट का सिनेमा सिर्फ गंभीर और संवेदनशील सवालों फिल्मों तक ही सीमित नहीं रहा, उन्होंने मुख्य धारा के लोकप्रिय सिनेमा में भी अपनी जगह बनाई। 1986 में आई नाम ने उनके करियर को एक बहुत ही महत्वपूर्ण मोड़ दिया। इसके बाद महेश भट्ट ने ऐसा सिनेमा बनाया जिसमें भावनाएं भी थी, कहानी भी थी और दर्शकों से जुड़ने की लोकप्रिय क्षमता भी, यानी एक तरफ गंभीर विषय, दूसरी तरफ आम दर्शक से सीधा संवाद। यही संतुलन महेश भट्ट के करियर की एक महत्वपूर्ण पहचान बन गया। और अब 1990 की फिल्म आशिकी। महेश भट्ट के निर्देशन और राहुल रॉय और अनु अग्रवाल की मुख्य भूमिकाओं वाली इस फिल्म ने प्रेम कहानी और संगीत को केंद्र में रखा। लेकिन आशिकी की सबसे बड़ी याद क्या है? जी हाँ, उसका संगीत। आज भी 1990 के दशक के रोमांटिक संगीत की बात होती है तो आशिकी का नाम जरूर आता है। आशिकी से दिल है कि मानता नहीं तक एक ऐसी फिल्म जिसने प्रेम कहानी को संगीत के साथ साथ बहुत मजबूती से जोड़ा, और महेश भट्ट ने कई अलग अलग तरह की कहानियों पर काम किया। 1991 में आई दिल है कि मानता नहीं, आमिर खान और पूजा भट्ट की जोड़ी, एक रोड ट्रिप की कहानी। जी हाँ, प्रेम का हल्का फुल्का अंदाज। यहाँ महेश भट्ट ने एक दूसरा रूप दिखाया जहाँ अर्थ और सारांश की गंभीरता थी, वहीं दिल है कि मानता नहीं से रोमांस और मनोरंजन का रंग दिखाई देने लगा। उसी दौर में आई सड़क, जो बहुत चर्चित हुई और चर्चित फिल्मों में भी शामिल हुई। 1980 से 1990 के दशक में महेश भट्ट लगातार अलग अलग शैली में काम करते नजर आए। कभी सामाजिक और कभी भावनात्मक कहानी, कभी प्रेम, कभी अपराध, कभी संघर्ष और कभी संगीत से भरी कहानी। यही विविधता उनके फिल्मी सफर को खास बनाती है।

ईद भी सुनते रहिए और अपना नाम भी, क्योंकि बहुत सारे हमारे श्रोताओं के संदेश आ चुके हैं। तो जो बिल्कुल 2:30 पर हमें संदेश आया पाहंदा पलारी छत्तीसगढ़ से, नीतीश कुमार, तनुजा देवांगन, इशात लखन, सावित्रीबाई, इनका हमें संदेश मिला, मसरूर हसन जी का, दिग्दर्शन गौर जी का, अमर रमेश कुमार जी का, फारूक अली, ताज मोहम्मद, दिग्दर्शन गौर, बाबू शिवा, आर कुमार, हरजिंदर शिंदे और हिरमानी वर्मा, धर्मेंद्र छिपा जी का, रोहित वशिष्ठ, धर्मेंद्र छिपा, अनिल मोहन जी, संजय धिंगिया जी, राधेश्याम देवांगन, राजकुमार डूडी, रोशन देवांगन जी कहते हैं हम भी कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं, कार्यक्रम शानदार चल रहा है, प्रस्तुति लाजवाब रही, क्या बात है। सुदर्शन मुखी जी ने भी संदेश भेजा हमें शांति नगर सोनीपत से, और पीएस नावकर जी ने भी हमें संदेश भेजा। आप सभी का धन्यवाद, आपने कार्यक्रम में शिरकत की।

क्योंकि समय अब सिर्फ रह गया है 5 मिनट का और बात करनी है बहुत सारी। तो चलिए हम बता दें कि महेश भट्ट एक ऐसे कहानीकार के रूप में हम इन्हें समझने की कोशिश कर सकते हैं जिसने रिश्तों की दरारों को भी कहानी के जरिए ढाला, अकेलेपन को पर्दे पर उतारा, प्रेम को संगीत से जोड़ा, जो निजी निजी अनुभवों को लाखों दर्शकों की भावनाओं से जोड़ सकते हैं, अर्थ से सारांश तक, नाम से आशिकी तक, दिल है कि मानता नहीं से सड़क तक और जख्म तक, उनका सफर एक हमें एक बात जरूर याद दिलाता है। सिनेमा सिर्फ पर्दे पर दिखाई देने वाली तस्वीर नहीं है, सिनेमा वो एहसास है जो फिल्म खत्म होने के बाद भी हमारे भीतर चलता रहता है। इसी एहसास के साथ मैं कुसुमलता आपसे विदा लेती हूँ। सुनते रहिए अपना पसंदीदा रेडियो इंद्रप्रस्थ, जी हाँ इंद्रप्रस्थ चैनल, और याद रखिए कहानियाँ खत्म नहीं होती, वो बस एक दिल से निकलकर दूसरे दिल तक पहुंचती हैं। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम एक ही कलाकार। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, डीआरएम 810 किलोहर्ट्स पर। और अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे, जी हाँ, कार्यक्रम ब्रज माधुरी। 3 बजने को है, लीजिए सुनते हैं कार्यक्रम ब्रज माधुरी।

0: ब्रजमाधुरी कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को वंदना जोहरी को
1: और वंदना को
0: प्रेम भरो अभिवंदन।
1: सखी देखो, कल बरसाने में श्री राधा के जन्म को उत्सव मनाया गयो। लाली को जन्म सवेरे तड़के ही कराया गयो और पूरे मंदिर में बधाई गायन भये।
0: हाँ, राधा अष्टमी ते ही समाज बैठे और 8 दिवस की झांझ की बधाई गायन हुए और 8 दिवस तक नित्य नवीन श्रृंगार धारण करायो जाएगो।
1: सखी, अष्टयाम सेवा को नियम अष्ट छाप के कवि रसिक कवियन द्वारा दियो गयो, पर अष्टयाम सेवा को ही नियम क्यों दियो गयो, जी बात जानवे की है?
0: हाँ बहना, जे है सके है कि राधा जी की प्रमुख सखी 8 ही और हर सखी अपनी कला में निपुण हती और सेवा के काजे तत्पर और आतुर हो रहती और याको मतलब अष्टांग योग की भावना ते है सके है।
1: और सखी, 8 दिन तलक जो बधाई गाए जामे बाकू सुन के बड़ो आनंद आवे, बड़े मनोहारी पद बधाई के गाए जामे।
0: हाँ, बधाई में झांझ मंजीरा ते आनंद और दोनों है जाए, तो एक बधाई गीत तो हम हूँ सुनवाए दे अपने श्रोतान को।
1: हाँ हाँ सखी, चौना सुनवाओ ना।
0: तो लियो सुनो, मदन मोहन ब्रजवासी के स्वर में।

0: बड़ी मनोहारी बधाई आपने सुनवाई सखी। सखी,
1: हाँ
0: राधाष्टमी ते पहले ललिता जी को जन्म हुए और तभी ते बूढ़ी लीला उत्सव हु तो आरंभ है जाए।
1: हाँ उत्सवन की जे श्रृंखला नित्य प्रति होए बहना आज मोर कुटी पे मयूर नृत्य लीला और श्रीजी मंदिर पे ढांडन लीला को आयोजन है रहो है और कल विलास गढ़ पे जोगी लीला को आयोजन होएगो।
0: फिर सखी चोटी बंदन लीला साकरी खोर पे और मान मंदिर पे मान लीला और श्याम सगाई होएगी। ऊंचा गांव में सखी गिरी पर्वत पे व्यावला लीला होएगी।
1: हाँ मटकी फोड़ लीला सांकरी खोर में होएगी चीर हरण लीला कदम खंडी में महारास मतलब काऊ न काऊ पर्वत पे खोर पे वन उपवन घनी कुंजन में रास लीला को आयोजन हो तो ही रहे है।
0: तभी तो ब्रज के वन उपवन कुंजवन खोर इनको धार्मिक महत्व अधिक है।
1: हाँ इन्हीं वन उपवनन में पर्वतन में और उनकी घने कुंजन में श्री कृष्ण तरिया तरिया के खेल खेलते होंगे और गाय चराते होंगे बहना वही जगह गांव बस गए और इन वनन के नाम से जाने गए जैसे काम वन वृंदावन महावन।
0: तो सखी चौना

0: इन्हें वन उपवन पे एक वार्ता सुनवाए थे अपने श्रोतान को,
1: हाँ
0: जाको विषय है ब्रज क्षेत्र के प्रसिद्ध वन और उपवन, और वार्ताकार हैं डॉक्टर हरि सिंह पाल।
2: भैयाओ बहनाओ, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। आज हम चर्चा करेंगे ब्रज के वन उपवन के बारे में। और हम सब जाने ही हैं कि ब्रज प्राचीन काल से ही अपने वन उपवन के लिए प्रसिद्ध रहो है, जाके बारे में ग्रंथन में कहे गयो है, पूर्व हास्य वनम नीय पश्चिम श्योपहारिकम दक्षिण जहनु संज्ञाकम भूमनाख्या तथोत्तरे। पूर्व में हास्यवन यानी कहें तो बरहद जो अलीगढ़ जनपद को है वो क्षेत्र, और पश्चिम में उपहार वन गुड़गांव की सोन नदी के पार तक को क्षेत्र, और दक्षिण में जहन वन यानी आगरा जनपद को बटेश्वर क्षेत्र, और उत्तर में भुवन वन यानी मथुरा की जो यमुना पार वाले क्षेत्र है शेरगढ़ भूषण वन। ये वाक्य बारे में वर्णन करे हैं या के बारे में कहो भी गौ है, इत बरहद उत सोनहद उत सूर सैन को गांव, इत बरहद उत सोनहद उत सूर सैन को गांव ब्रज 84 कोस में मथुरा मंडल माह। जो ब्रज जो है वो 84 कोस में है और मथुरा मंडल जो है जाके केंद्र में है। अगर समग्रता के रूप में देखें तो ब्रज में 133 वन थे प्राचीन काल में, जिनमें थे यमुना पार की ओर कहें यानी कहें कि यमुना की बाई ओर जो थे वो 42 है, और यमुना के दाहिनी ओर यानी शहर की तरफ 91 वन है। मुख्य वन हमारे 12 कहे जामे हैं, जिनको नाम है महावन, काम्य वन, कोकिला वन, ताल वन, कुमुद वन, भांडीर वन, छत्र वन, खदिर वन, लोह वन, भद्र वन, बहुला वन और बिलु वन। इनके संग 12 उपवन माने जामे हैं, जिनमें ब्रह्म वन, अप्सरा वन, बिहुवल वन, कदम वन, स्वर्ण वन, सुरभि वन, प्रेम वन, मयूर वन, मानगीति वन, शेष साइग्री वन, नारद वन, परमानंद वन, और याई के संग 12 जो है प्रतिवनु होते, जिनमें नाम है रनका, वार्ता, करहला, काम्य, अंजन, काम, कृष्ण, शिपड़क, नंद प्रेक्षण, इंद्र, शिक्षा, चंद्रावती और लोहवन। इनके अलावा 12 अभिमनु कहे जामे हैं। इन 12 अभिमन में आमे हैं मथुरा, राधाकुंड, नंदगांव, गतिस्थान, ललिताग्राम, ब्रसभानपुर, गोकुल, बलदेव, गोवर्धन, जावन, वृंदावन और संकेत। ये नाम भले ही ऐसे लगे कि काऊ क्षेत्र के या काऊ शहर के नाम है, ये वस्तुतः पहले वन के बीच में बने हुए निवास स्थान है। और या के अलावा 5 सभ्यवन माने जामे हैं, 12 तपोवन कहे जामे हैं, 12 मोक्ष वन कहे जामे हैं, और 12 काम वन है, 12 अर्थ वन है, 12 धर्म वन है और 12 सिद्ध वन है। यह तरीकाते ये 133 कुल वन उपवन ब्रज के भय। हम सब जाने हैं कि जितने वन हैं ब्रज के उनको कोई न कोई अधिष्ठाता है, कोई न कोई पूजनीय व्यक्तित्व है। जैसे हम महावन की बात करें तो महावन में पूजा होवे है दाऊ जी महाराज की, कामवन में गोपीनाथ की, कोकिला वन में नटवन नागर की, ताल वन में दामोदर भगवान की, कुमुद वन में केशव भगवान की, भांडीर वन में श्रीधर भगवान की, छत्र वन में हरि भगवान की, खदिर वन में नारायण भगवान की, भद्र वन में हयग्रीव भगवान की, बहला वन में पद्मनाभ भगवान की, बेल वन में जनार्दन भगवान की, परमानंद वन में जय बद्रीश्वर की पूजा जहाँ पे होबे है, काम वन में कहें कि जो प्रतिवन कहलावे है या में परमेश्वर को नाम है, नंदगांव जो अभिवन है वहाँ में गोकुलचंद जी की पूजा है, करहला प्रतिवन है या में मुरलीधर की पूजा है, हास्यवन जो पूर्वी सीमा पे है लीला कमल लोचन का वहाँ पूजा है, उपहार वन जो दक्षिण सीमा पे है लोकेश्वर की पूजा है, और जहन वन जो दक्षिणी सीमा पे है वहाँ लंकाधी कुल ध्वंसी की पूजा है, और भुवन वन उत्तरी सीमा पे है वहाँ श्री सतशिला की पूजा है। यह तरीके से वन के अधिष्ठाता हु हैं जिनके नाम पे ये वन अपना प्रचार प्रसार पामे हैं। हम सब जाने हैं कि जितने भी वृक्ष हैं ब्रज में हो या ब्रज से बाहर कहीं हों, वो काऊ नामधारी हों, वो सब गुणकारी हैं, लाभकारी हैं, हितकारी हैं और परोपकारी हैं।

है वृक्ष, तो वृक्ष के उपयोग को देख के ही ब्रजवासी ने अपने अपने क्षेत्र में वृक्षण की स्थापना करी, वृक्षण को रोपण करो हो, और वहाँ के संग ही वृक्ष के साथ में ही ब्रज में वन यात्रा हो शुरू भई। वन यात्रा माने कि आप वन की आप यात्रा करें हैं, जो हमारे विभिन्न वन हैं, जैसे हमने कही कि 12 वन हैं, तो 12 वन हैं, 12 ही उपवन हैं, 12 ही प्रतिवन हैं, 12 ही अभिमन हैं, इन सब की परिक्रमा वन यात्रा के रूप में हुए है। सबसे पहले श्री नारायण भट्ट जी के समय में या को प्रसार प्रसार भयो, जाए गोस्वामी विट्ठल लेस जी और बल्लवाचार्य जी और चैतन्य महाप्रभु ने या की शुरुआत करी वन यात्रा की। पहले अगर हम वन यात्रा की बात करें तो पंचतीर्थ परिक्रमा जे श्रावण मास की पंचमी तिथि को होवे है, जहाँ में मधुवन आदि की जो है 5 दिनन की परिक्रमा होवे है। और दूसरी है रामदल परिक्रमा, जो भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की दशमी को वृंदावन से शुरू हुआ है और ये 15-16 दिन तक चले, या लठामार यात्रा हो क्या हो जाए। एक परिक्रमा है बड़ी परिक्रमा, जाए बल्लभ संप्रदाय के गोस्वामी है, उनके द्वारा ये होवे है, ये भाद्रपद शुक्ल एकादशी से शुरू है के मथुरा से शुरू होते है और 40 दिन की ये यात्रा है, यानी ये बड़ी परिक्रमा भाई। और एक है परिक्रमा, परिक्रमा माने प्रदक्षिण, यानी एक स्थान विशेष की, जैसे मथुरा की परिक्रमा करनो, गोवर्धन की परिक्रमा करनो, वृंदावन की करनो। वृंदावन की परिक्रमा प्राय जो है एकादशी को, पूर्णमासी को और पुरुषोत्तम मास जो होवे है, मल मास जो होवे है, वहां में विशेष रूप से परिक्रमा इनकी करी जाए। मथुरा की विशेष परिक्रमा होवे है वैशाख पूर्णिमा को वन विहार होवे है, देवसैनी एकादशी को होवे है, अषाढ़ शुक्ल एकादशी को, देवसैनी एकादशी को परिक्रमा विशेष होवे है, अक्षय नवमी यानी कार्तिक शुक्ला नवमी को जो होवेगी, जो जाको कबू छह न हो वाकी परिक्रमा मथुरा की करी जावे है। देवोत्थान एकादशी यानी जाए हम प्रबोधिनी एकादशी कहें, जो कार्तिक शुक्ला एकादशी को होवे है, और व्यास पूनो जाए हम मुड़िया पूनो कहें, ये गोवर्धन की परिक्रमा होवे है। परिक्रमा के कई तरीके हैं, या में एक तरीका बहुत ज्यादा प्रचलित है ब्रज में, वो है दंडोती परिक्रमा। दंडोती परिक्रमा को माने साष्टांग परिक्रमा, आदमी लेट के और वो परिक्रमा लगावे है, और वो अपने एक कंकड़ लेबे है या कुछ और निशान लगावे को, अपना कोई चीज रखे है वहां से फिर दोबारा से शुरू करे, ऐसे ही फिर आगे बढ़ते जाए। वो दंडवत परिक्रमा हमारे गोवर्धन पर्वत की विशेष रूप से होवे है। एक होवे अंतरग्रही परिक्रमा, जैसे विश्राम घाट की वामन द्वादशी भाद्रपद शुक्ल को होवे है, मथुरा की जन्मभूमि की, मथुरा देवी की, सतगढ़ा की और द्वारकाधीश मंदिर और गताश्रम की, ये अंतरग्रही परिक्रमा कहला है, यानी कि इनकी अपनी अलग परिक्रमा होवे है। दूसरी जब बात करें कि ब्रज के जो वन हैं, उपवन हैं या अभिमन है, प्रतिमन है, वहां में कौन कौन से वृक्ष खासतौर से मिले ब्रज क्षेत्र में, तो सबसे पहले तो कदम है। कदम तो ब्रज की पहचान है, अनेक हमारे ऋषि मुनि ने, कवि ने कदम की बड़ी बड़ी प्रशंसा में पद रचना करी है। कदम को कृष्ण प्रियऊ कहो जाए, ललना प्रियऊ कहो जाए, सुरभि कहो जाए, गंध कहो जाए, तूल कहो जाए, नीप कहो जाए, मदरा कहो जाए, सुभाष मद कहो जाए और हर प्रिय भी कहो जाए, ये कदम के नाम हैं जो अनेक अनेक रूप से होमे हैं। कदम खंडी खासतौर से ब्रज में बहुत मशहूर रही, और उपवन में जहाँ जहाँ कदम खंडी हैं, खासतौर से सुरहरा गांव में, जतिपुरा गांव में, जल विहार में और नंद गांव में। आपको जान के ये आश्चर्य लगेगा कि 1 जुलाई 1977 को कदम पे डाक टिकट भारत सरकार ने जारी करो हो, और भारत सरकार कदम की महत्ता को जानी ही और उनने जो है 1 जुलाई 1977 को डाक टिकट निकालो हो। दूसरा वृक्ष यहाँ को खास जो लोकप्रिय है, ज्यादा प्रचलित है, जो वो है करील। करील को हम वंशा कुरु कहें, निष्पत्रकु कहें, तीक्ष्ण कटकु कहें, ये एक तरह से कहें कि ये करील जो है वो ब्रज भूमि को पर्याय है। करील एक झाड़ी जैसा होवे, जमे कांटे से चुभे हैं और वहां पे पत्ता ना हो, बगैर पत्ता के जो हुए। और तीसरा प्रमुख वृक्ष है ब्रज को, वो है बट वृक्ष। बट यानी बरगद, चाहे हम श्याम बटू कहें, चाहे अक्षय बटू कहें, चाहे बंशी बटू कहें या विशाल बटू कहें। और ये जो बट है, ये खासतौर से पिपरौली, रासौली, संकेत, परासौली और भंडीर वन में ज्यादा मिले है। और चौथा है पीपल, या अस्वस्थ कहो जाए, जाए बोधि वृक्ष, बुद्ध भगवान ने वहां ज्ञान प्राप्त करो हो, वह बोधि वृक्ष कहें, वासुदेव कहें, पारस पीपल हु कहो जाए। ये पीपल की जो पूजा हमारे गांव गांव में होवे है, घर घर में होवे, खासतौर से
महिलाएं अपनी मनो

0: मानते और जो उनकी मनोती पूरी हो जाए तो वहां के ऊपर जो सूत की धागे लपेटे हैं और लपेट के अपनी इच्छा पूर्ति करे हैं। अगलो वृक्ष है तमाल। तमाल को हम नील तालु कहें, कल्प तालु कहें, नील ध्वजु कहें, ये भी तमाल जो है यहाँ को ब्रज को प्रमुख वृक्ष है। और पांचवो है छोंकर। छोंकर यानी शमी वृक्ष, ये तो बड़ी पूजा के काम में आवे, या के बगैर तो कोई शादी ब्याह पूरा न हो, या केश हत्रिव्यू कहें। और छोंकर को वृक्ष को बल्लभ संप्रदाय में बहुत बड़ा महत्व है। बल्लभ के जितने गोसाई ये उनने यही के नीचे अपनी उपासना करी, पूजा करी, अपनी पदन की रचना करी। एक और वृक्ष है जो खास तौर से यहाँ ज्यादा लोकप्रिय प्रतिष्ठित है, वह के हम पलाश। पलाश यानी ढाक, केसु कहें, चोला कहें, किस्म की कहें, यानी कि जब होली आवे तो होली पे जो हमें यहाँ में जब लाल लाल रंग के फूल आमे हैं, वो जो महके हुए हैं, तो वहाँ रंग बनाया जाए, मतलब देसी रंग जाए का हो जाए कि बगैर केमिकल का रंग जो बने वो पलाश को बने हैं। और जाए हम अग्निरथ कहें, अग्निरथ माने मतलब लाल लाल फूल को है, तो ऐसा लगे जैसे अग्नि के गोला मतलब सामने हमारे टंगे हुए, एकांत प्रिय है। और दूसरों को ये जो है बसंत बाटे वारो वृक्ष है, जय हम कहे हैं पलाश। और यहाँ जामुन भी बहुत हैं, जय जम्बू फल के में हैं, यहाँ सैमर भी बहुत हैं, जय सामली कहे हैं, सैमल कहे हैं, धूप चही कहे हैं। और अशोक के वृक्ष भी बहुत मिले। अशोक माने शोक रहित, जाके नीचे आए के काउ तरह को कौवे शोक न रहे है, वह हम अशोक वृक्ष कहे। यही तरीके से यहाँ आम बहुत हैं, आम के बागन के बागन मिले हैं ब्रज में, बेल के भी बहुत बाग मिले हैं, बांसू यहाँ बहुत पैदा करो जाए उपजाए जावे है, नीम और आमलेऊ यहाँ की खास जो है वृक्ष है। यहाँ दूसरी वृक्षण की जब उपयोगिता की बात करें तो यहाँ में जो है बंजर भूमि को उपजाऊ करे वाले हैं कौन कौन से वृक्ष, वो है करील और बबूल। स्वच्छ वायु के लिए, स्वास्थ्य के लिए हम अगर वृक्ष को इस्तेमाल करें हैं तो वो है पीपल और नीम। और भूमि की कटाव को रोकने वाले वृक्ष हैं ढाक, जामुन और बेर। घनी छाया के लिए हैं बरगद, पीपल, अशोक, आम, नीम, इमली और फल। जाए खाव में जावे हैं, हम सब जाने हैं कि हम आम खामे, जामुन खामे, बेर खामे, शहतूत खामे, अमरूद खामे हैं। और औषधि के लिए तो सभी वृक्ष सब काम में आमे, खास तौर से आमला है, बेल है, अशोक है। इमारती लकड़ी, इमारती लकड़ी को माने जाते जो है हम अपने फर्नीचर बनावे हैं, किवाड़ बने हैं, हमारे पलंग बने हैं, हमारी कुर्सी मेज बने हैं, इनके लिए लकड़ी होवे हमारे यहाँ शीशम की, सागौन की, नीम की और आम की। और जब गैस को चलन ना हो तो, जब जो है मिट्टी के तेल को चलन ना हो, जब ईंधन के रूप में यानी आग जलाए हुए के लिए पकाए हुए के लिए हम ढाक की लकड़ी, इमली, बबूल, आम, इनके वृक्ष जो है हमारे या के काम में आवे हैं। पूजा के लिए जैसे मैंने बताया कि पीपल है, बट है, समी यानी छोंकर है, आमला है, केला है, तुलसी है, बद्री है, कपूर है और हरप्रिया है, ये पूजा काम में। और श्रृंगार के रूप में आप जानो ही हो मेहंदी लाल रंग लावे है, महिलाएं बहुत इस्तेमाल करें जाए, हरिद्रा है, मजीठ है, गुंचा घुंगड़ी है। और अन्य वृक्षण में जैसे गुलमोहर बहुत मिले हैं। या तरीका से हम कह सकें कि ब्रज के वन उपवन की महिमा अपरम्पार महिमा है, और यह जितनों कम कहा जाए वो कमी का हो जाएगा। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।
1: होहि ब्रज वृंदावन मोहि में बसत सदा, जमुना तरंग श्याम रंग अवलीन की, चहुं ओर सुंदर सघन वन देखियत, कुंजन में सुनियत गुंजन अलीन की। बहना ब्रज के वन उपवन श्री कृष्ण की दिव्य लीलान के साक्षी रहे हैं। और वनन के वन वृंदावन में तो हर मास में आनंद रस बरसे है।
2: हाँ सखी, वृंदावन तो आनंद रस की खान है और श्री कृष्ण को अति प्यारो है। कहे हैं कि श्री कृष्ण के भक्त वृंदावन को अपने हिये में धारण करे हैं। और श्री कृष्ण वृंदावन ते कहूँ नाए जा मैं, निधिवन में बिनकी दिव्य लीला नित्य प्रति होवे, ऐसो ही मानो जाए।
1: हाँ बहना, ब्रज में जितने वन उपवन है सभी काउ न काउ लीला ते जुड़े भये हैं। कहमे है कि श्री राधा रानी ने बरसाना में अपने हाथन ते गहवर वन को रोपो हो और सींचो हो, और या गहवर वन को श्री राधे को हृदय स्वरूप बतायो गयो है।
2: याई वन में सखी श्री राधा जी ने कृष्ण को खेल में बुलायो और कहा कहा कियो, आओ सुने या लोकगीत में वासुदेव नागर के स्वर में।

0: बड़ा ही मन भावन प्यारो सो लोकगीत बहन आपने सुनवायो।
1: अब यही के संगई हमारा आज का ब्रजमादरी कार्यक्रम यही सम्पन्न हो गए है। मोकू यानी के वंदना को
0: और मोकू यानी वंदना जोड़ी को जाइबे की अनुमति देओ।
1: राधे राधे। कार्यक्रम प्रस्तुत करता
0: विवेक कुमार तोमर।
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम ब्रज माधुरी। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। हमारे स्टूडियो की घड़ी में 3:30 हो चुके हैं और इस समय होता है हमारे नन्हे मुन्ने बच्चों के कार्यक्रम रेडियो किड्स का। लीजिए सुनते हैं।

0: नमस्कार दोस्तों, आकाशवाणी दिल्ली की प्रस्तुति रेडियो किड्स में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आज के इस कार्यक्रम में मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त सुहानी,
1: और मैं यश।
0: तो हम आशा करते हैं कि आज का कार्यक्रम आपको खूब रोचक लगेगा और ज्ञान वर्धक लगेगा। तो दोस्तों, आज मैं आपको एक मजे की बात बताऊं, आज हमारे स्टूडियो में हमारे कुछ ऐसे दोस्त जुड़ चुके हैं जो यूनाइटेड किंगडम से स्पेशली हमसे मिलने आए हैं। तो चलिए, स्टूडियो में उपस्थित हमारे साथी अब हमें अपना परिचय देंगे, और मैं तो बहुत उत्सुक हूँ उनके बारे में जानने में, उनकी रुचियाँ जानने में, और भारत में अनुभव कैसा रहा उसके बारे में जानने में। क्यों यश?
1: बिल्कुल सुहानी, मैं भी जानने के लिए बेहद उत्सुक हूँ।
0: बिल्कुल, तो चलिए हम शुरू करते हैं आप सभी के नाम से।
2: नमस्ते, मेरा नाम सिमरन खत्री है, मैं लंदन से हूँ और मैं महाविद्यालय में पढ़ती हूँ।
3: नमस्ते, मेरा नाम हेमान्या कमठान है, मैं यूके में मैनचेस्टर शहर से हूँ।
4: नमस्ते, मेरा नाम तविशा है।
5: नमस्ते, मेरा नाम इरा है, मैं 10वीं कक्षा में पढ़ती हूँ।
6: नमस्ते, मेरा नाम पार्थ वशिष्ठ है, मैं 10वीं कक्षा में पढ़ता हूँ और मैं लीड्स में रहता हूँ जो उत्तर इंग्लैंड में है।
7: नमस्ते, मेरा नाम अक्षय चितावल है और मैं लिवरपूल से हूँ।
8: नमस्ते, मेरा नाम स्वस्तिक है और मैं ग्लासगो स्कॉटलैंड में रहता हूँ।
0: हम क्यों ना इनसे पूछे कि आखिर हमारे श्रोताओं के लिए और हमारे लिए ये क्या तैयार करके लाए हैं। तो चलिए एक एक करके पूछते हैं, शुरू करते हैं हम सिमरन से। तो सिमरन, आज आप हमारे श्रोताओं को क्या सुनाएंगी?
2: जैसा कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि मेरी मनपसंद कविता मैथिली शरण गुप्त जी की नर हो ना निराश करो मन को, तो आज मैं आपको उन्हीं की कुछ पंक्तियाँ सुनाना चाहती हूँ।
0: मैं तो बहुत उत्सुक हूँ, तो चलिए शुरू करते हैं।
2: नर हो ना निराश करो मन को, कुछ काम करो, कुछ काम करो, जग में रहकर निज नाम करो, ये है जन्म हुआ कि अर्थ हो, समझो जिसमें ये व्यर्थ ना हो, कुछ तो उपयुक्त करो तन को, नर हो ना निराश करो मन को, संभलो कि संयोग ना जाए चला, कब व्यर्थ हुआ सदुपयाय भला, समझो जग को ना निरा सपना, पथ आप प्रशस्त करो अपना, अखिलेश्वर है अवलंबन को, नर हो ना निराश करो मन को। धन्यवाद।
0: बहुत ही खूबसूरत सिमरन, लेकिन एक प्रश्न मेरा आपसे अभी भी है कि आपके जो दोस्त यूके में रहते हैं, अगर उनको भी हिंदी सीखनी हो तो आपकी उनके लिए पहली सलाह क्या होगी?
2: पहली सलाह होगी कि यूके हिंदी समिति से क्लासेस लेना शुरू कर दो। हमारी जो अध्यापिका हैं और अध्यापक भी हैं, सारे इतनी अच्छी तरीके से हिंदी सिखाते हैं, इतने अच्छे भाव के साथ सिखाते हैं, इतने मन से सिखाते हैं कि किसी का भी मन कर जाए हिंदी सीखने का।
0: तो मुझे तो ये उम्मीद है कि यह संदेश यूके में बैठे उन बच्चों का जो हिंदी सीखना चाहते हैं उन तक जरूर गया होगा। तो चलिए अब सिमरन से आगे बढ़ते हैं हम हेमान्या पर। हेमान्या, तो आज आप हमारे श्रोताओं के लिए क्या लाई हैं?
3: हाँ जी, तो इसके संबंधित मैं भी एक कविता सुनानी चाहूंगी ब्रेग्जिट के बारे में, जिसका बहुत बड़ा प्रभाव ब्रिटेन पर पड़ा था। ये पद्मेश गुप्त जी की कविता है और इसका शीर्षक है 24 जून 2016 ब्रेग्जिट, जिसकी मैं कुछ पंक्तियां सुनाना चाहूंगी।
0: तो चलिए, देरी किस बात की?
3: जी, चिड़ियों की चहक में उत्साह कुछ कम था, सूरज की रोशनी में प्रकाश

0: कुछ नम था। आज सुबह जब मैं सोकर उठा तो मेरे यूरोप के नक्शे पर कुछ जख्म था। तुम्हें उड़ना मना है अब उस पार, कतरे जा रहे थे मेरे गोरैया के पर। मेरे एक्वेरियम के बाएं कोने में सहमी थी देश विदेश की मछलियां उनका डर। आज सुबह जब मैं सोकर उठा ऐसा लग रहा था जैसे मेरी अंग्रेजी माँ मुझे गोद में लेकर छोड़ रही है मेरे फ्रांसीसी पिता का घर। ये माँ जिसने कभी सिखाया ही नहीं कि पड़ोसी के संग रहने में है कोई बुराई। बचपन से मैं खेलता आया रंग बिरंगी तितलियों से, अब देखना पड़ेगा कौन सी अपनी है और कौन पराई।
1: बहुत अच्छा। अब मैं अक्षज से उनकी कविता सुनना चाहूंगा कि वो क्या तैयार करके आए हैं।
2: मेरा कविता है कोई अर्थ नहीं, जिसका लेखक है रामधारी सिंह दिनकर। नित जीवन के संघर्षों से जब टूट चुका हो अंतर मन, फिर सुख का मिले समंदर का रह जाता कोई अर्थ नहीं। जब फसल सुखकर जल के बिन तिनका तिनका बन गिर जाए, फिर होने वालों वर्षा का रह जाता कोई अर्थ नहीं। संबंध कोई भी हो यदि दुख में ना साथ दे, फिर सुख में उन संबंधों का रह जाता कोई अर्थ नहीं।
1: बहुत अच्छे अक्षज।
3: तो अक्षज, आपने हमें एक बहुत ही प्रेरणादायी कविता सुनाई है ना, लेकिन मेरा प्रश्न एक और आपसे है। जब आप जीवन में थोड़ा डीमोटिवेटेड फील करते हो, एग्जाम के दौरान आपको डर लगता है, या जिंदगी में कोई ऐसी परिस्थिति आ जाती है जिसमें आप सोचते हैं कि अब नहीं होगा, तो आप अपने आप को मोटिवेट करने के लिए क्या सुनते हैं, क्या करते हैं, आप किसको याद करते हैं?
2: मेरा पापा से बात करता हूँ और मुझको बहुत अच्छा सलाह देता है कि मैं क्या करूँ और कैसे करूँ।
1: बहुत अच्छे अक्षज, बहुत ही अच्छा उत्तर दिया आपने। और आप जैसे आपने अभी रामधारी सिंह दिनकर जी की कविता पढ़ी, तो इस तरह की कविता आप अपने दोस्तों को जो आपके साथ यूके में रहते हैं, आप उन्हें सुनाते हैं या आप उनसे पूछते हैं कि आपको इस तरह की कविताएं सुन के कैसा लगता है?
2: उसको अच्छा लगता है, लेकिन उसको नहीं पता कि उसका सच मीनिंग क्या है, तो मैं बताता हूँ कि ये मोटिवेशनल कविता है।
1: बहुत अच्छे।

da dum da dum da da dum da.

0: मैं स्वास्तिक से जानना चाहूंगा, आपने किस कवि की प्रस्तुति तैयार करी है?
1: मेरा कविता का नाम है हो गए है पेड़ पर्वत सी, ये दुष्यंत कुमार ने लिखा।
2: तो चलिए देरी किस बात की।
1: हो गए है पेड़ पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। आज यह दीवार पर्दों की तरह तरह हिलने लगी, शर्त लेकिन थी कि यह बुनियाद हिलने चाहिए। हर सड़क पर, हर गली में, हर नगर, हर गांव में हाथ लहाते हुए हर लाश चलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करने मेरा मकसद नहीं, मेरा कोशिश है कि यह सूरत बदलनी चाहिए। धन्यवाद।
0: बेहद ही सुंदर कविता। अब हम आगे बढ़ते हैं और पाठ सुनाएंगे हमें अगली अपनी प्रस्तुति, किस कवि की उन्होंने कविता तैयार करी है।
2: मैं आपको शिखा वार्ष्णेय जी की कविता सुनाना चाहूंगा, जिसका नाम है शब्द, शब्दों के बारे में और उसके महत्व बताती है। कुछ कहते हैं शब्दों के पांव होते हैं, वह चलकर पहुंच सकते हैं कहीं भी, दिल तक, दिमाग तक, जंग के मैदान तक। कुछ ने कहा शब्दों के दांत होते हैं, काटते हैं, दे सकते हैं घाव, पहुंचा सकते हैं पीड़ा। मेरे ख्याल से तो शब्द रखते हैं सिर्फ अपना रूढ़ अर्थ, कब, कहां, कैसे, कहे, लिखे, सुने गए। ये कहने सुनने वाले की नियत पर है निर्भर। कोई भी शब्द अच्छा या बुरा नहीं होता, भली बुरी तो नियत होती है। धन्यवाद।
3: क्या बात है पार्थ, सच बताऊं तो मैंने ये कविता पहली बार सुनी है और मुझे ये इतनी अच्छी लगी ना कि मैं तुम्हें क्या ही बताऊं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम आरुषि की ओर। तो हेलो आरुषि, आज आप हमारे दोस्तों के लिए क्या प्रस्तुत करने जा रही हैं?
4: आज मैं भारत की प्रसिद्ध कवित्री जो आप सबको मालूम है सुभद्रा कुमारी चौहान जी की लोकप्रिय कविता वीरों का कैसा हो पसंद की कुछ पंक्तियां सुनाने जा रही
3: हूं। बहुत खूब, तो चलिए शुरू करते हैं।
4: आ रही हिमालय से पुकार है उद्धति गर्जता बार बार, प्राची पश्चिम भूनप अपार, सब पूछ रहे हैं दिग दिगंत, वीरों का कैसा हो पसंद। फूली सरसों ने दिया रंग, मधु लेकर आ पहुंचा अनंग, वधु वसुध पुलकित अंग अंग, है वीर देश में किंतु कंत, वीरों का कैसा हो पसंद। धन्यवाद।

0: आरुषि, मैं आपसे एक प्रश्न पूछूं। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में आपको लगता है कि कोई ऐसे क्रांतिकारी रहे जो आपको बहुत ज्यादा प्रेरित करते हो, या उनके जीवन के बारे में जानकर आप मोटिवेटेड हो जाते हो?
1: कल हम नेताजी का चश्मा का वो स्टैचू देखा था, और हम नेताजी का चश्मा का जो कहानी था हम हिंदी क्लास में पढ़ते थे, तो फिर जब वो असली में हमने देखा था कि उसका स्टैचू, तो फिर हमें बहुत अच्छा लगा।
0: अरे वाह, अच्छा अभी आपने नेताजी के चश्मे की जो कहानी है उसका उल्लेख किया, लेकिन क्या आप हमें पूरा नाम बता सकती हैं कि आखिर उन महान व्यक्ति का नाम क्या है?
1: नेताजी सुभाष चंद्र बोस।
0: बिल्कुल सही, जोरदार तालियां हो जाए। अब हम बढ़ते हैं आर्या की तरफ। आर्या, आज आप हमारे लिए क्या प्रस्तुति लेके आई हैं?
2: आज मैं आपको एक कविता सुनाना चाहती हूँ।
0: तो उस कविता का शीर्षक क्या है?
2: मेरी कविता का नाम है पुष्प की अभिलाषा, जिसके लेखक है माखनलाल चतुर्वेदी।
0: अरे वाह, तो चलिए शुरू करते हैं।
2: चाह नहीं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊं, चाह नहीं सम्राटों के शव पर हे हरि डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ो भाग्य पर इतलाओ, मुझे तोड़ लेना वनमाले उस पथ में देना तुम फैंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने, जिस पथ जावे वीर अनेक। जय हिंद।
3: क्या बात है आर्या, माखनलाल जी की ये कविता बेहद ही अच्छी थी।
0: तो चलिए दोस्तों, आप सभी के साथ वार्तालाप करके हमें बहुत अच्छा लगा। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि हमारी आपसे मुलाकात फिर होगी, लेकिन उससे पहले एक और जस्ट छोटा सा प्रश्न, आप हमारे भारतीय दोस्तों को क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे?
4: कोई भी भाषा पकड़ो, हिंदी हो, हिंदी तो आपको पता होगा, अंग्रेजी या फ्रेंच स्पेनिश जो भी पकड़ते हो आप, उससे अच्छे से सीखो, क्योंकि भाषा सिर्फ भाषा नहीं है, वो दिल को जोड़ता है।
3: बिल्कुल बिल्कुल, इस उत्तर ने बिल्कुल हमारे दिल को भी जोड़ा।

0: इतनी रचनात्मक चीजें हमें जानने को मिली, सुनने को मिला, नए नए तरीके से हिंदी को जाना।
1: बिल्कुल दोस्तों, तो हम आशा करते हैं कि हमारा कार्यक्रम जैसे यश को पसंद आया, आपको भी आज का कार्यक्रम बेहद रोचक, ज्ञानवर्धक और मनोरंजक लगा होगा। तो इसी उम्मीद के साथ कि अगले सप्ताह आप हमारे साथ फिर जुड़ेंगे रेडियो किड्स पर, मुझे यानी सुहानी को
0: और मुझे यश को
1: दीजिए इजाजत।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम रेडियो किड्स। आप हैं आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल के साथ। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, डीआरएम 810 किलो हर्ट्स पर।

हम आपको बताना चाहेंगे कि 5:10 पर सुनिएगा लोक संगीत का कार्यक्रम लोक रंजनी। और 5:30 पर सुनिएगा दैनिक कार्यक्रम खेल खिलाड़ी, प्रस्तुतकर्ता हेमंत कुमार और अतुल गुप्ता होंगे। 6:30 पर सुनना ना भूलिएगा कार्यक्रम ग्राम संसार, पत्रोत्तर पर आधारित लोक संगीत का फरमाइशी कार्यक्रम। चर्चा होगी विश्व सफाई दिवस, अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय कजेल दिवस, योजना भारतमाला परियोजना और लोकगीत। 7:05 पर सुनिएगा कार्यक्रम कृषि जगत, चर्चा FPO द्वारा किसानों को लाभ, कृषि पत्रोत्तर कार्यक्रम लोक संगीत के साथ। योजना होगी वर्षा आधारित क्षेत्र विकास योजना। और आप जानेंगे अगले दिन के कृषि कार्यक्रम और मौसम के बारे में। गजल और कवाली का कार्यक्रम सुनना ना भूलेगा 7:35 पर। 8:30 पर सुनिएगा कार्यक्रम कवि गोष्ठी, प्रतिभागी कवि होंगे डॉक्टर सलोनी चावला, वरिष्ठ कवयित्री श्री ऋषि कुमार मौर्य, युवा कवि डॉक्टर दीपशिखा श्रीवास्तव दीप, वरिष्ठ कवयित्री श्री हिमांशु शुक्ला, युवा कवि संचालन। और फिल्म संगीत का आनंद लेंगे आप 8:30 पर।

听说帮跟请收听我们那唱的古吉拉的帮的对不起拉斯坦帮的民间歌曲。

0: जी हाँ, नमस्कार। आज के इस खेल खिलाड़ी कार्यक्रम में मैं हूं हेमंत और मेरे साथ है मेरे सहयोगी अतुल गुप्ता। हम दोनों लेकर चलेंगे आपको खेलों के उस खूबसूरत सफर पर जहां हर एक मोमेंट होता है बेहद खास। और आज के इस खेल खिलाड़ी कार्यक्रम में हम बात करेंगे एशियन गेम्स 2026 की, साथ ही बात होगी
1: हेमंत ISSF जूनियर वर्ल्ड कप शॉटगन जो कि इटली में चल रहा है, उसके अलावा 46th फिडे चेस ओलंपियाड, इस पर भी रिपोर्ट देंगे और करंट स्टैंडिंग क्या है उस पर भी अपने श्रोताओं को बताएंगे। आज रविवार है तो संडे ऑन साइकिल का आज का जो अंक है उस पर भी जानकारी दी जाएगी और साथ में होगा सुब्रतो कप और बचे हुए समय में कुछ अन्य खेल खबरें।
0: तो करते हैं अब कार्यक्रम की शुरुआत एशियन गेम्स 2026 से।
2: एशियन गेम्स 2026 आईची नगोया।
0: जब हमारे खिलाड़ी मैदान पर तिरंगे की शान के लिए उतरते हैं तो करोड़ों भारतीयों का दिल एक साथ धड़कता है। एशियन गेम्स में भारत का ये सफर सिर्फ पदकों की दौड़ नहीं बल्कि हमारे एथलीटों के पसीने, जज्बे और कभी न हार मानने वाली जिद की कहानी है। खेल के मैदान से सीधे आ रही इस लाइव अपडेट और विशेष रिपोर्ट में हम आपके लिए लेकर आए हैं हर उस जीत का जश्न और पल पल का रोमांच जो हर एक देशवासी के दिल को गर्व से भर देगा। आइए पूरे दिल से अपनी टीम का हौसला बढ़ाएं और भारत की इस ऐतिहासिक यात्रा के हर पल से सीधे जुड़े रहें। जापान के आईची नगोया में चल रहे 20वें एशियाई खेलों में आज भारत के लिए दिन की शुरुआत पदकों की सौगात के साथ हुई। निशानेबाजी में भारत ने 2 रजत पदक अपने नाम किए जबकि मिश्रित मार्शल आर्ट में सुचिका तारियाल ने देश के लिए एक और पदक सुनिश्चित कर दिया है। महिला और पुरुष हॉकी टीमों ने शानदार जीत दर्ज की। महिला क्रिकेट टीम फाइनल में पहुंच गई और टेबल टेनिस में भी भारतीय खिलाड़ियों ने विजयी शुरुआत की। वहीं तैराकी में ऋषभ दास ने पुरुषों की 100 मीटर बैकस्ट्रोक के फाइनल में जगह बनाई और दूसरी ओर टेक बॉल में भारत पदक में मामूली अंतर से चूक गया। सबसे पहले बात निशानेबाजी की। महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल में भारत ने दिन की शुरुआत रजत पदक से की। इला विनिल बलारीवन, सोनम मस्कर और विदारसा विनोद की भारतीय टीम ने कुल 1898 अंक हासिल किए और दूसरा स्थान हासिल किया। चीन ने 1904.2 अंक के वर्ल्ड रिकॉर्ड के साथ स्वर्ण पदक अपने नाम किया जबकि मेजबान जापान को कांस्य पदक मिला। भारतीय टीम के इस प्रदर्शन के साथ ही भारत का एशियाई खेलों में पहला पदक सुनिश्चित हुआ। इसके बाद व्यक्तिगत 10 मीटर एयर राइफल में भी इला विनिल बलारीवन ने शानदार प्रदर्शन करते हुए रजत पदक अपने नाम किया। फाइनल में इला विनिल ने 252.4 अंक हासिल किए। जापान की हिनाता ताइची ने 293 अंक के साथ स्वर्ण पदक जीता जबकि दक्षिण कोरिया की बान हो जिन को कांस्य पदक मिला। भारत की सोनम मस्कर 6वें स्थान पर रही। इस तरह इला विनिल बलारीवन ने एक ही दिन में भारत के लिए 2 रजत पदक जीतने में योगदान दिया, पहला टीम स्पर्धा में और दूसरा व्यक्तिगत स्पर्धा में।
1: बात करें मार्शल आर्ट की, मिश्रित मार्शल आर्ट में भी भारत के लिए बड़ी उपलब्धि सामने आई है। महिलाओं की पारंपरिक 60 किलोग्राम वर्ग में सुचिका तारियाल ने मंगोलिया की अलंता चिमेग बैगलामा को 2-0 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई। सेमीफाइनल में पहुंचने के साथ ही सुचिका ने भारत के लिए कम से कम कांस्य पदक सुनिश्चित कर दिया है। एशियाई खेलों में मिश्रित मार्शल आर्ट पहली बार पदक स्पर्धा के रूप में शामिल है और इस खेल में भारत का यह पहला सुनिश्चित एशियाई खेल पदक है। सुचिका तारियाल अब सोमवार को सेमीफाइनल में उतरेंगी और उनकी नजर पदक के रंग बदलने को होगी। हॉकी से भी खेल प्रेमियों के लिए अच्छी खबर है जहां पे महिला हॉकी में भारत ने शानदार 19-0 की जीत के साथ एशियाई खेलों में शुरुआत की है। भारतीय महिला हॉकी टीम ने अपने अभियान की शुरुआत बेहद प्रभावशाली अंदाज में की। महिला भारत ने पूल बी के मुकाबले में उज्बेकिस्तान को 19-0 से पराजित किया। भारत की ओर से दीपिका सहरावत ने अकेले 8 गोल किए। यह एशियाई खेलों के महिला हॉकी इतिहास में एक मैच में किसी खिलाड़ी द्वारा किए गए सर्वाधिक गोल का रिकॉर्ड है। भारत की ओर से इशिका ने 3 गोल किए जबकि नेहा और ललनथल लुआंगी ने 2-2 गोल किए। लाल रेम सियामी, बलजीत, साक्षी राणा और नवनीत कौर ने भी 1-1 गोल किया। 19-0 की यह जीत एशियाई खेलों में भारत की तीसरी सबसे बड़ी जीत रही। इससे पहले भारत ने 1982 में हांगकांग के विरुद्ध 22-0 और 2018 में कजाकिस्तान के विरुद्ध 21-0 से जीत दर्ज की थी। भारतीय महिला टीम की इस जीत में आक्रमण के साथ साथ रक्षा पंक्ति का प्रदर्शन भी उल्लेखनीय रहा और उज्बेकिस्तान को पूरे मुकाबले में 1 भी गोल करने का अवसर नहीं मिला।
0: महिला हॉकी के बाद भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने भी अपने अभियान की शुरुआत जीत के साथ की। पूल ए के मुकाबले में भारत ने इंडोनेशिया को 13-1 से हराया। भारत की जीत के नायक रहे दिलप्रीत सिंह जिन्होंने 4 गोल किए। शिलानंद लाकड़ा और सुखजीत सिंह ने 2-2 गोल किए। इसके अलावा अभिषेक, राजेंद्र सिंह, मनदीप सिंह, कप्तान हरमनप्रीत सिंह और जुगराज सिंह ने भी भारत की जीत में गोल किए। एशियाई खेलों में पिछले संस्करण में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय हॉकी टीम ने इस जीत के साथ अपने खिताब की रक्षा के अभियान की मजबूत शुरुआत की है। अब बात करते हैं क्रिकेट की। क्रिकेट से भी भारत के लिए एक शानदार खबर आई। महिला T20 क्रिकेट के सेमीफाइनल में भारत ने बांग्लादेश को 114 रनों से हराकर फाइनल में प्रवेश किया और कम से कम रजत पदक सुनिश्चित कर लिया है। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने 20 ओवर में 4 विकेट पर 195 रन बनाए। भारत की पारी की सबसे बड़ी विशेषता रही शेफाली वर्मा का शानदार शतक। शेफाली ने केवल 49 गेंदों में नाबाद 100 रन बनाए। उनकी पारी में 9 छक्के और 3 चौके शामिल रहे। शेफाली ने स्मृति मंधाना के साथ पहले विकेट के लिए 72 रन जोड़े। मंधाना ने 19 गेंदों में 37 रन बनाए। इसके बाद कप्तान हरमनप्रीत कौर

0: 33 गेंदों में 40 रनों की उपयोगी पारी खेली और शेफाली के साथ 94 रनों की साझेदारी की। 195 रनों के लक्ष्य के जवाब में बांग्लादेश की पूरी टीम 15 ओवर 4 गेंद में 81 रन बनाकर आउट हो गई। भारत की ओर से नंदनी शर्मा और दीप्ति शर्मा ने 3-3 विकेट लिए। भारत ने 114 रन से मुकाबला जीतकर फाइनल में जगह बनाई, जहां उसका सामना अब श्रीलंका से होगा।
1: बात कर लेते हैं टेबल टेनिस की, जहां भारतीय महिला टीम ने ग्रुप एफ के अपने शुरुआती मुकाबले में इंडोनेशिया को 3-0 से हराया। पहले मुकाबले में श्रीजा अकुला ने नी महारानी को 3-1 से पराजित किया। इसके बाद दिया चिताले ने अल्मायरा एन को 3-0 से हराकर भारत की बढ़त मजबूत की। तीसरे मुकाबले में यशस्विनी घोरपड़े ने सितारा रश्मि को 3-0 से हराकर भारत को 3-0 की जीत दिलाई। दिन के दूसरे मुकाबले में सिंगापुर को 3-2 से हराकर शानदार जीत दर्ज की टीम ने। निर्णायक मुकाबले में यशस्विनी घोरपड़े ने शानदार धैर्य का परिचय देते हुए लॉय मिंग को 5 गेम के कड़े मुकाबले में 5-11, 11-8, 12-10, 4-11 और 11-9 से हराया और भारत को 3-2 की रोमांचक जीत दिलाई। यशस्वी ने इस मुकाबले में अपने दोनों मैच जीते। वहीं श्रीजा अकुला ने अपना दूसरा मुकाबला जीतकर भारत की उम्मीदें कायम रखी। भारतीय पुरुष टीम ने भी इंडोनेशिया के खिलाफ अपने ग्रुप मुकाबले में 3-0 से जीत दर्ज की। जी साथियान, मानव ठक्कर और मनुष शाह ने भारत को मुकाबला जिताने में अहम भूमिका निभाई। जी साथियान ने निगारा मोहम्मद को 11-8, 11-7 और 11-9 से हराया, जबकि मानव ठक्कर ने जुनेन्द्र मोहम्मद को 11-7, 8-11, 11-6, 6-11 और 11-9 से एक कड़े मुकाबले में 3-2 से हराया। वहीं मनुष शाह ने तीसरे मुकाबले में अफान प्रतामा को 11-9, 11-9 और 12-10 से हराकर भारत की जीत पक्की की। बात करें तैराकी की, 100 मीटर बैक स्ट्रोक स्पर्धा में भारत के ऋषभ दास फाइनल में हार गए हैं। उन्हें छठा स्थान हासिल किया और जो मेडल की जो उम्मीद थी वो यहीं पर रह गई है। इससे पहले पुरुषों की 100 मीटर बैक स्ट्रोक हीट में ऋषभ दास ने 54.85 सेकंड का समय निकाला और कुल मिलाकर 5वें स्थान पर रहते हुए फाइनल में जगह बनाई। उनके साथी तैराक उत्कर्ष पाटिल 56.19 सेकंड के समय के साथ 12वें स्थान पर रहे और फाइनल में जगह नहीं बना सके। वहीं पुरुषों की 100 मीटर फ्री स्टाइल में भारत के बेनेडिक्टन बेनिस्टेन 50.25 सेकंड के समय के साथ 12वें स्थान पर और आकाशमणि 50.85 सेकंड के साथ 23वें स्थान पर रहे। दोनों फाइनल में जगह नहीं बना सके।
0: अब बात करते हैं टेक बॉल की, जहां भारत को पदकों की उम्मीद थी। टेक बॉल में भारत पदक के बेहद करीब पहुंचकर चूक गया। महिला एकल के कांस्य पदक के मुकाबले में क्विंसी डिसूजा को जापान की वर्ल्ड नंबर 7 युइना साकामोटो ने 2-0 से हराया। दोनों गेम बेहद करीबी रहे और दोनों का फैसला 12-11 से हुआ। इसके बाद मिश्रित युगल में क्विंसी डिसूजा मोहम्मद अनस बेग की भारतीय जोड़ी का सामना वियतनाम के हो योंग मिना तान ग्युएन और त्रिना जियांगी से हुआ। भारतीय जोड़ी को 9-12, 6-12 से हार का सामना करना पड़ा। इस तरह टेक बॉल में भारत दोनों कांस्य पदक मुकाबलों में चौथे स्थान पर रहा। हालांकि एशियाई खेलों में पहली बार शामिल हुए इस खेल में क्विंसी डिसूजा का सेमीफाइनल में पहुंचना भारतीय टेक बॉल के लिए महत्वपूर्ण प्रदर्शन रहा। अब बात करते हैं बैडमिंटन की। एशियाई खेलों में भारतीय महिला बैडमिंटन टीम ने शानदार आगाज करते हुए कजाकिस्तान को 3-0 से हराकर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबले में दो बार की ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु ने कैमिना सुमागुलोवा को 21-7, 21-9 से हराकर भारत को बढ़त दिलाई। सिंधु ने यह मुकाबला केवल 24 मिनट में जीता। इसके बाद उन्नति हुडा ने एलिसा कुलेशोवा को 21-7, 21-10 से हराया। वहीं तन्वी शर्मा ने डायना नामे नोवा को 21-5, 21-10 से मात देकर भारत को 3-0 की जीत दिलाई। भारतीय टीम ने तीनों एकल मुकाबले जीतकर बिना कोई गेम गंवाए क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई है। अब उसका सामना मेजबान जापान से होगा। जापान की टीम में विश्व की तीसरे नंबर की खिलाड़ी और 3 बार की विश्व चैंपियन अकाने यामागुची तथा 7वें नंबर की टोमाका मायाजाकी शामिल है। जापान को हराने पर भारतीय महिला टीम एशियाई खेलों में पदक पक्का कर लेगी। इस स्पर्धा में भारत ने अब तक 2014 इंचियोन एशियाई खेलों में कांस्य पदक जीता है। उधर भारतीय पुरुष बैडमिंटन टीम सोमवार को बांग्लादेश के खिलाफ अपने अभियान की शुरुआत करेगी।
1: और हेमंत, बात कर लेते हैं वुशु की, तो जहां पे पुरुष चांगक्वान फाइनल में भारत के सूरज सिंह मायंगलाम्बम पदक हासिल नहीं कर सके। सूरज ने 21 खिलाड़ियों के फाइनल में 11वां स्थान हासिल किया। दिन की शुरुआत में उनसे पदक की उम्मीद थी, लेकिन फाइनल में वे पोडियम तक नहीं पहुंच सके। कुल मिलाकर दिन के परिणामों की बात करें तो निशानेबाजी में महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल टीम स्पर्धा में भारत को रजत पदक मिला। वहीं महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल व्यक्तिगत स्पर्धा में एलावेनिल वलावरिन का रजत पदक भी पक्का हुआ और मिश्रित मार्शल आर्ट में सुचिका तारियाल ने कम से कम एक कांस्य पदक सुनिश्चित कर दिया है। और खेलों के इस महाकुंभ से आकाशवाणी की टीम लगातार आपको जो ताजा जानकारी देती रहेगी और भी क्या आज की दिन की गतिविधियां रही उनसे भी आपको समय समय पर अवगत कराते रहेंगे।
2: एशियन गेम्स 2026 आईची नगोया।

0: जी हाँ हेमंत, आकाशवाणी पर हम एशियन गेम्स 2026 के लाइव अपडेट्स टाइम टू टाइम अपने श्रोताओं को देते रहेंगे। उन्हीं इवेंट्स में बात करें, लाइव अपडेट्स में बात करें तो वुशु से खबर है, जहां पे 75 किलोग्राम भार वर्ग में विक्रांत बालियान को ईरानियन प्लेयर से 2 के मुकाबले 0 से हार का सामना करना पड़ा है। वहीं पर महिला वर्ग की बात करें तो 52 किलोग्राम भार वर्ग में राउंड ऑफ 8 के अपने मुकाबले में अपर्णा को भी ईरान के प्लेयर से हार का सामना करना पड़ा है। टेबल टेनिस की बात करें तो जहां ग्रुप स्टेज में मेंस टीम की बात करें तो इंडिया और भारत और ईरान का जो मुकाबला था उसमें भी भारतीय टीम को 0-3 से हार का सामना करना पड़ा है। तो कुल मिलाकर भारत के लिए बात करें तो आज मिश्रित दिन था। और अगर क्या करंट स्टैंडिंग है वो भी बता देते हैं अपने श्रोताओं को।
1: बिल्कुल अतुल, और अब करंट स्टैंडिंग की बात करें, पॉइंट टेबल की बात करें तो चाइना सबसे ऊपर है, 11 स्वर्ण पदक और 6 रजत और 3 कांस्य पदक के साथ टोटल 20 पदक उनकी झोली में आए। अब तक जापान की बात करें तो जापान ने 6 गोल्ड, 6 सिल्वर और 7 कांस्य पदक के साथ 19वें नंबर पर बने, 19 पदक टोटल उनके खाते में गए। वहीं कोरिया की बात करें तो 3 स्वर्ण, 3 रजत और 7 कांस्य पदक के साथ टोटल 13 पदक उनकी झोली में है। कजाकिस्तान टोटल 5 पदकों के साथ 4वें नंबर पर, थाईलैंड अब 5वें नंबर पर 3 पदकों के साथ, म्यांमार की बात करें तो 3 पदकों के साथ 6वें नंबर पे, कुवैत की बात करें तो कुवैत है 2 पदकों के साथ 8वें नंबर पे, चाइनीज ताइपी की बात करें तो 3 पदकों के साथ 9वें नंबर पर, और चाइना जो है वो दो हांगकांग चाइना की हम बात करें तो 2 रजत पदक और 1 कांस्य पदक के साथ टोटल अभी वो इस समय 3 पदकों के साथ 10 पे बने हुए हैं। वहीं इंडिया की बात करें तो इंडिया ने 2 रजत पदक अपनी झोली में डाले आज तक, आज के जो निशानेबाजी में आए थे, और उसके साथ वो 10 में बने हुए हैं।
0: जी हाँ हेमंत, ये तो बात हुई आज के दिन के खेलों की, और कल भी नजरें रहेंगी पदक पे भी, और कल बहुत सारी गतिविधियां होने वाली हैं एशियन गेम्स में। तो बात करें प्रमुखता तो बैडमिंटन में, कल भारतीय मेंस टीम फर्स्ट राउंड में सामने होगी बांग्लादेश की टीम के साथ। वहीं बॉक्सिंग में भी कल 70 किलोग्राम भार वर्ग के शुरुआती मैच खेले जाएंगे, जिसमें सुमित का मुकाबला थाईलैंड के सिंसरी से होगा। अगर मिक्स मार्शल आर्ट की बात करें, जो हमने अभी अपनी रिपोर्ट में भी बताया था, वहां पे विमेन्स ट्रेडिशनल 60 किलोग्राम भार वर्ग में सेमीफाइनल का मुकाबला, जिसमें सुचिका तारियाल कल कांस्य पदक के लिए खेलेंगी, उनके सामने सिंगापुर की हुई हुनतियो होंगी। कबड्डी में कल मुकाबले होने वाले हैं, जहां पे मेंस टीम की बात करें तो ग्रुप ए में भारत और जापान का मुकाबला होगा, वहीं पे विमेंस टीम ग्रुप ए में भी भारत और बांग्लादेश की टीमें आमने सामने होंगी। टेबल टेनिस में भी कल मुकाबले खेले जाएंगे, जहां पे महिला वर्ग की बात करें तो ग्रुप एफ में भारत और पाकिस्तान का मुकाबला होगा। आज बहुत अच्छी शुरुआत की है भारतीय टीम ने, जहां इंडोनेशिया और सिंगापुर को हराकर कल का मैच जीतने के बाद अगले दौर में प्रवेश करेगी टीम। और पुरुष वर्ग में बात करें तो आज इंडोनेशिया से तो हम जीते, लेकिन ईरान से हार का सामना करना पड़ा। वहीं पर कल भारत की टीम पाकिस्तान से खेलेगी। स्विमिंग में भी कल हीट मुकाबले खेले जाएंगे, जहां पे मेंस वर्ग में 50 मीटर बैक स्ट्रोक होगा, वहां पे 50 मीटर फ्री स्टाइल की भी हीट स्पर्धाएं होंगी। मेंस 100 मीटर बैक स्ट्रोक के भी कल इवेंट्स देखने को मिलेंगे, और साथ में मेंस 4x200 मीटर फ्री स्टाइल रिले के भी कल इवेंट्स होंगे। हॉकी में कल पूल बी में भारतीय महिला टीम खेलेगी इंडोनेशिया से, और वहीं से पकटकरों में भी इंडिया और जापान का मुकाबला होने वाला है मेंस टीम रेगू में ग्रुप बी के अंतर्गत। तो ये तो हुई कुल मिलाकर कल जहां पे भारतीय खिलाड़ियों पर नजरें रहेंगी हेमंत, और एशियन गेम्स से हम लगातार

0: अभियान की बात करें, स्वास्थ्य और रक्तदान शिविरों का आयोजन किया जा रहा है और नशा मुक्त युवा अभियान युवाओं को नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करने के लिए खेल रैलियां और अनेक आयोजन किए जा रहे हैं। साथ ही पर्यावरण संरक्षण और निर्माण यात्राओं का आयोजन किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत सेवा ज्योति कलश यात्रा निकाली जाएगी और पर्यावरण और जल संरक्षण श्रमदान के तहत बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण किया जाएगा।
1: बिल्कुल, तो हमारी सरकार का लक्ष्य है कि सुशासन यानी आपके लिए ही अच्छा शासन हो, उसमें हमारे नागरिकों की भी सहभागिता हो, इसलिए आप भी सेवा से संकल्प का जो अभियान है इससे जुड़ सकते हैं। और सुनील भाई, अब हम एक और परियोजना के बारे में बात कर लेते हैं जो कि है भारत माला परियोजना। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, ये परियोजना देश में राष्ट्रीय राजमार्ग यानी कि जो नेशनल हाईवेज हैं और सड़क नेटवर्क के विकास और सुधार से संबंधित है। आप सबको ही मालूम है कि हमारे देश में जो ट्रांसपोर्ट का सिस्टम है यानी जो परिवहन के साधन है उसमें रोड ट्रांसपोर्ट प्रमुख भूमिका निभाता है, तो उनका आधुनिकीकरण करना और पूरा देश का हर एक गांव, दूर दराज का गांव भी मुख्य मार्ग से जुड़े, हाईवे से जुड़े, उसके लिए प्रयास करना, इसके लिए भारतमाला परियोजना की शुरुआत की गई है। और ये देश में लॉजिस्टिक दक्षता को बढ़ाती है, आर्थिक गलियारों यानी इकोनॉमिक कॉरिडोर्स को भी मजबूत करती है और इसके साथ ही आवागमन की सुविधा को भी बेहतर करती है। ये इसके प्रमुख उद्देश्य हैं और

0: अरे भाई देखिए, इसके प्रथम चरण की अगर बात करें, इसमें 34,800 किलोमीटर लंबी राजमार्ग सड़कों का निर्माण लक्ष्य रखा गया है। सरकार की रिपोर्ट के अनुसार भाई 26,400 किलोमीटर से अधिक की परियोजनाओं को मंजूरी मिल चुकी है। और साथ ही भाई देखिए, जो जो गति शक्ति योजना है, अब इस योजना को जो पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के साथ एकीकृत कर दिया गया है, ताकि बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का निर्माण और तेजी से हो सके।
1: बिल्कुल। और आपको ये भी बता दें कि इस यानी योजना भारतमाला परियोजना जो है, इसकी शुरुआत 2017 में हुई थी। और इसमें सबसे बड़ी बात यह थी कि हमारे देश में ट्रैफिक की प्रॉब्लम बहुत बड़ी एक समस्या है। तो देश के 550 से अधिक जिला मुख्यालयों को कम से कम 4 लेन राजमार्गों से जोड़ना भी एक उद्देश्य है, ताकि ट्रैफिक को शिफ्ट किया जा सके। तो ये तो सुनील भाई हमने अपने श्रोताओं को जानकारी दी भारतमाला परियोजना के बारे में, अब उनका मनोरंजन कराते हैं।
0: अब मनोरंजन की बात आपने की, तो देखिए आज के जो हमारे अगले कलाकार हैं वो हैं रविंदर सिंह और जयवीर सिंह, और उनको सुनने के लिए भाई देखिए काफ़ी फरमाइश मिली है। ये पहली फरमाइश हमें मिली है ग्राम पंचायत बठेना पाटन जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से बलकरण वर्मा, अंजलि ज्योति वर्मा और उनके समस्त परिवार की तरफ से। साथ ही हमें फरमाइश मिली है चंडीगढ़ से सतीश अनेजा और बिमला अनेजा की।
1: इसके अलावा ग्राम संसार हमारे इस कार्यक्रम में रागनी सुनना चाहते हैं, और ये जो है कबीर रेडियो श्रोता संघ डोंडी लोहरा बालोद छत्तीसगढ़ से देवशंकर तामुरिया, जय देव तामुरिया और तुषार देव तामुरिया हैं। इसके अलावा गांव कलाना तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान से विक्रम सचिन सतीश योगेश और युथव है।
0: साथ ही हमें फरमाइश मिले ऊपरकोट मोहल्ला चौखंडी बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी और उनके समस्त परिवार की तरफ से। साथ ही फरमाइश मिली है छत्तीसगढ़ हसदा नंबर 2 से कमलेश शाहू जितेंद्र शाहू और उनके समस्त परिवार की तरफ से।
1: इसके अलावा महिपाल नीरू उत्कर्ष और दिव्यांश गांव बड़दू चैना जिला भिवानी हरियाणा से भी इन्होंने मैसेज भेजा है। और इसके अलावा गांधीनगर गुजरात से सुरेश राठौर मंजुला विशाल और निशा का भी संदेश हमें मिला है।
0: और ये फरमाइश हमें मिली है कनेरा मोहल्ला पटियाला से मुकेश बत्ता नीलम बत्ता और कर्ण बत्ता और उनके समस्त परिवार की तरफ से।
1: इसके अलावा एक और है मैसेज मेरे पास आया है नूर महल महसोल से सीतामढ़ी बिहार से मुश्रित जहानाज तलहत फरहत रिफत मुजहत साजिया नाजिया और पठान टोली कलेर से निकहत प्रवीण सदफ आरजू और सादिया तस्नीम का।
0: तो चलिए आप सभी की पसंद पर सुनते हैं रविंदर सिंह और जयवीर सिंह से रागनी किस्सा रहेगा महाभारत का। और ये उस मौके की रागनी है जब युद्ध नीति के दौरान अर्जुन द्विविधा में है, युद्ध की स्थिति को लेकर कृष्ण उन्हें समझाते हैं और समय व धर्म का महत्व समझाते हैं। तो आइए सुनते हैं ये रागनी।

0: रणेश भाई, ये तो भाइयों ने अपनी पसंद पर रागनी सुनी रविंद्र सिंह और जयवीर सिंह से, और किस्सा था महाभारत का। और भाई आज के जो हमारे अगले कलाकार हैं वो हैं योगेश कुमार, और योगेश कुमार को सुनने के लिए जो पहली फरमाइश मिली है वो मिली है चौधरी वास से राजू अग्रवाल के सब प्रियंशी की।
1: इसके अलावा मेरे पास भी कुछ संदेश आए हैं, इन्हीं कलाकार को सुनना चाहते हैं। भिलाई छत्तीसगढ़ से मुकेश शर्मा, गौरव शर्मा, गरिमा शर्मा, और इसके अलावा जो है नीतीश कुमार देवांगन, दुर्गा प्रसाद देवांगन, पराग टेलर, पूना राम देवांगन, कृष्णा देवांगन का भी मैसेज आया है, और इन्होंने संदेश ये भेजा है पलारी छत्तीसगढ़ से। इसके साथ ही गांव चौधरीवास हरियाणा से मांगेराम, रितु सिंह, हिमानी, शुभम और यश कुमार, और
0: साथ ही हमें फरमाइश मेरी है धनौरी तेलीवाला से निसार सलमानी, नौशाद सलमानी, बेबी आलिया और आयान बाबू की।
1: पटेल नगर मलोट से डॉक्टर रमेश कुमार, गीता रानी, गगनदीप, आरजू और गुड्डू का। इसके अलावा ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाब साबिर राही, मेराज जहां, ये संदेश इन्होंने भेजा है आज़ाद नगर लक्सर हरिद्वार उत्तराखंड से, और गुलाम रोड हर गोविंद नगर नवा शहर पंजाब से संदेश आया है हमारे पास। सुरेंद्र सिंह संधू, अनीता संधू, रोहित संधू, रीति संधू, शिखा संधू, प्रतीश और मैक्स का, और बिलासपुर हिमाचल प्रदेश से संदेश आया है सुरेश ग्रोवर, बेबी ग्रोवर, गौरव शारिया, महेश, सोनल जोवा का।
0: और योगेश कुमार को ही सुनना चाहते हैं डोगरगांव छत्तीसगढ़ से राष्ट्रपाल राधिका और उनका समस्त परिवार। साथ ही हमें फरमाइश मिली है नरगौड़ा छत्तीसगढ़ से महाराज कीर्तनपुरी गोस्वामी और उनके समस्त परिवार की तरफ से। इसी क्रम में जो अगली फरमाइश हमें मिली है चंडीगढ़ से सतीश अनेजा और बिमला अनेजा की, और गाँव लोहगढ़ जिला बागपत से जगमोहन सिंह प्रजापति, उनकी प्यारी पोती भुवनेश्वरी देवी की और उनके समस्त परिवार की तरफ से। साथ ही हमें फरमाइश मिली है गाँव खोखरवाली श्री गंगानगर से विनोद बारसा और उनके समस्त परिवार की तरफ से। तो आइए आप सभी की पसंद पर सुनते हैं योगेश कुमार से ये रागनी, और किस्सा रहेगा सत्यवान सावित्री का।

0: सावत्री घने दुख उठावेगी।
1: गणेश भाई, ये तो भाइयों ने अपनी पसंद पर रागनी सुनी योगेश कुमार से, और किस्सा था सत्यवान सावित्री का। और योगेश कुमार की गाइस रागनी के साथ ही आज के कार्यक्रम का समय यहीं समाप्त होता है। कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता तुषार पाराशर और संयोजक शिवनंदन लाल। ग्राम संसार कार्यक्रम सुनने वाले सभी बहन भाइयों को राम राम, राम।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम ग्राम संसार, ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, डीआरएम 810 किलोहर्ट्स पर। श्रोताओं कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि हाल के दिनों में आई कई प्राकृतिक आपदाओं से स्पष्ट है कि जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने के लिए ठोस प्रयास जरूरी हैं। नई दिल्ली में पर्यावरण और जलवायु गतिशीलता के भविष्य विषय पर आयोजित सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि वैश्विक वैज्ञानिक समुदाय जलवायु जोखिम को लेकर गंभीर चेतावनी दे रहा है।
2: हाल के समय में हुई अनेक प्राकृतिक आपदाओं ने यह स्पष्ट किया है कि क्लाइमेट इम्पैक्ट्स को कम करने के लिए सशक्त क्लाइमेट एक्शन करना आवश्यक है। विश्व का वैज्ञानिक समुदाय चेतावनी दे रहे हैं कि क्लाइमेट रिस्क बहुत गंभीर हो चुका है। इनकी यथासंभव रोकथाम और सामना करने के लिए स्थानीय, क्षेत्रीय और वैश्विक सभी स्तर पर स्टेक होल्डर्स के बीच सक्रिय सहयोग की सुदृढ़ आवश्यकता है।
1: राष्ट्रपति ने कहा कि जलवायु परिवर्तन से जैव विविधता में कमी, जल संकट और भूमि क्षरण जैसी समस्याएं बढ़ रही हैं। राष्ट्रपति ने पर्यावरण संबंधी कानूनी मामलों में राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की भूमिका की भी सराहना की। उन्होंने कहा कि न्यायाधिकरण ने बड़ी संख्या में मामलों का तेजी से निपटारा किया है और नदियों, वायु गुणवत्ता तथा कचरा प्रबंधन से जुड़े मामलों में प्रभावी अनुपालन व्यवस्था विकसित की है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन मंगलवार को नई दिल्ली में 9वें भारत अंतर्राष्ट्रीय जल सप्ताह का उद्घाटन करेंगे। 5 दिन के इस आयोजन का विषय है जलवायु अनुकूल जल प्रबंधन। जल शक्ति मंत्रालय ने बताया कि इस अंतर्राष्ट्रीय आयोजन में नीदरलैंड और जर्मनी साझेदार देश के रूप में शामिल होंगे। विकसित भारत के लिए 100 सप्ताह के नशा मुक्त युवा अभियान के अंतर्गत आज देश भर में युवा भाग ले रहे हैं। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के अनुसार 1067 स्थानों पर यह समारोह आयोजित किया जा रहा है। विकसित भारत के लिए 100 सप्ताह के नशा मुक्त युवा अभियान में नशा मुक्ति शपथ, हस्ताक्षर अभियान, नुक्कड़ नाटक, नारा लेखन और चर्चाओं के जरिए अभियान का संदेश सीधे युवाओं तक पहुंचाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में पुलिस मुठभेड़ में 30 लाख रुपए का इनामी नक्सली कमांडर ब्रिजेश गंझू मारा गया है। ये मुठभेड़ उत्तर प्रदेश आतंकवाद निरोधक दस्ते के साथ हुई। ब्रिजेश गंझू को गोपाल सिंह भोक्ता के नाम से भी जाना जाता था। वो प्रतिबंधित नक्सली संगठन तृतीय प्रस्तुति समिति टीपीसी का शीर्ष कमांडर था। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने आज मेरठ में भारतीय वायुसेना की सूर्य किरण एरोबेटिक टीम के एयर शो का अवलोकन किया। टीम ने कल पहली बार उड़ान भरी और अपने शानदार प्रदर्शन से दर्शकों को मंत्रमुग्ध किया। रक्षा मंत्रालय के अनुसार 2 दिनों के दौरान 1 लाख से अधिक लोगों ने इस प्रदर्शन को देखा। इनमें विद्यार्थी, राष्ट्रीय कैडेट कोर के कैडेट और राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयंसेवक भी शामिल थे। श्री सेठ ने सूर्य किरण टीम के साहस और समर्पण की सराहना की। मत्स्य पालन विभाग कल कोलकाता में मत्स्य पालन विकास पर एक समीक्षा बैठक आयोजित करेगा। बैठक की सह अध्यक्षता मत्स्य पालन मंत्री राजीव रंजन सिंह और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी करेंगे। यूक्रेन ने रूस पर बड़ा ड्रोन हमला करते हुए मॉस्को में एक तेल शोधन संयंत्र और रिहायशी इमारत को नुकसान पहुंचाया है। यूक्रेन ने बीती रात रूस पर 1000 से अधिक ड्रोन दागे, जिनमें से सैकड़ों का रुख सीधे राजधानी मॉस्को की तरफ था। मॉस्को के मेयर सरगेई सोबियानिन ने इसे राजधानी पर अब तक का सबसे बड़ा ड्रोन हमला बताया। मेयर सोबियानिन के अनुसार पूरे मॉस्को क्षेत्र में हुए इन हमलों में 2 लोगों की मौत हुई और 20 घायल हैं। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर अमेरिका के न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र में भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व करेंगे। डॉ जयशंकर 26 सितंबर को महासभा के उच्च स्तरीय सत्र को संबोधित करेंगे। जापान एशियाई खेलों में भारत की एला वेनिल वला रिवन महिलाओं की व्यक्तिगत 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा का रजत पदक अपने नाम किया। इससे पहले भारत ने महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल टीम स्पर्धा का रजत पदक जीता। अन्य खेलों में भारतीय महिला और पुरुष हॉकी टीम ने आज अपने अपने मुकाबलों में जीत दर्ज की। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
0: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। श्रोताओं लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम कृषि जगत।

0: कृषि जगत कार्यक्रम सुनने वाले सभी किसान बहन भाइयों को
1: राम
0: राम। रणेश भाई देखिए, आज पत्रोत्तर कृषि पत्रोत्तर लोक संगीत के साथ कार्यक्रम है, तो खत भी भाइयों का कार्यक्रम में शामिल करेंगे। आपके हाथ में खत दिखाई दे रहा है।
1: बिल्कुल सुनील भाई, देखिए ऐसा है कि हमारा ये जो कार्यक्रम है ना, और इसका बेसब्री से इंतजार करते हैं हमारे किसान भाई बहन, क्योंकि उनकी पसंद के लोक गीत हम सुनवाते हैं और साथ ही बहुत सारी जानकारी भी देते हैं।
0: और भी मिली है जो पिछले कार्यक्रम,
1: तो उनकी फरमाइशों पर आधारित हम तो सुनवाएंगे ही, लेकिन क्यों ना सुनील भाई पहले एक जानकारी दे देते हैं अपने किसान भाई बहनों को कि आज जो है हम कौन सी योजना के बारे में जानकारी दे रहे हैं।
0: आज देखिए पहले बात कर लेते हैं किसान उत्पादक संगठन की, जो किसानों का एक ऐसा समूह है जो बाजरा, गेहूं या अन्य फसलों के उत्पादन और बाजार में बिक्री से जुड़े काम करता है, ताकि किसानों की उनकी उपज के सही दाम मिल सके। इसके देखिए जो सामूहिक संगठन है, छोटे और सीमांत किसानों को एक पंजीकृत समूह होता है, साथ ही है आमतौर पर कंपनी अधिनियम के तहत पंजीकृत किया जाता है और किसानों की सौदेबाजी की क्षमता और आय को बढ़ाता है।
1: बिल्कुल, ये प्रमुख लाभ हैं। और कुछ और अगर लाभ की अगर हम बात कर लें तो इसके तहत जो बीज होते हैं, उर्वरक और कीटनाशक, इनकी थोक खरीद में कम खर्चा आता है, और जो आधुनिक कृषि उपकरण हैं, मशीनरी हैं, इनकी सामूहिक उपलब्धता भी होती है, और बेहतर बाजार तक पहुँचना भी एक प्रमुख बिंदु है। इससे क्या होता है कि जो बिचौलियों की भूमिका है वो लगभग खत्म होती है, तो इसका सीधा लाभ हमारे किसान भाइयों को मिलता है।
0: और थे के साथ ही बैंकों से जो कार्यशील पूंजी है और कृषि लोन में आसानी से सरकारी योजनाओं और सब्सिडी का सीधा लाभ भी उन्हें मिलता है। साथ ही आधुनिक खेती और उन्नत तकनीकों की जानकारी और मिट्टी की जाँच और फसल प्रबंधन की सलाह भी इसके तहत मिलती है।
1: बिल्कुल,
0: तो काफी अच्छा ये संगठन है भाई, इससे किसान भाइयों को भी लाभ है और जो संगठन बनाने वाले हैं उनको भी लाभ है। तो आज के जो हमारे पहले कलाकार हैं वो दिनेश गिरी, और खत आपके हाथ में दिखाई दे रहे हैं।
1: बिल्कुल सुनील भाई, पहला ये जो संदेश हमारे पास आया है, ग्राम नागर कोहरा, जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से बबलू साहू, जामुन देवी, प्रेम पूजा, दुष्यंत प्रांजल, समीक्षा और बेबी आराध्या का। और साथ ही में एक और संदेश आया है फातिमा कॉलोनी श्री राम पूर्व महाराष्ट्र से, एंड नासिर शेख, नासिर साजिद और शाहिद का। इसके अलावा
0: साथ ही हमें फरमाइश मिली है गांव खोखरा वाली से, श्री गंगानगर से विनोद वारसा और उनके समस्त परिवार की तरफ से।
1: इसके अलावा एक और संदेश आया है नरसाना भिवानी से, जगदीश चांडलिया, राजवीर, सतीश चांडलिया, ऋतिक और केला देवी जी का। और साथ ही गांव उगला, जिला अंबाला, हरियाणा से राजेंद्र कुमार, मलकीत कौर, आरती रानी, राघव, हरमन और परिवार के सभी सदस्य। इसके साथ ही हनुमानगढ़ टाउन राजस्थान से रज्जाक मोहम्मद, समीम बेगम, इमरान खान, इरफान खान का भी मैसेज आया है। और साथ ही दादरी गेट भिवानी से कृष्ण मेहरा, कोमल मेहरा, किरण मेहरा और कपिल मेहरा के साथ साथ कुणाल मेहरा जी का भी संदेश आया है।
0: साथ ही हमें फरमाइश मिले गांव नथाना पंजाब से हरजिंदर सिंह छिंदा, जसवीर जस्सी और उनके समस्त परिवार की तरफ से। और ये फरमाइश हमें मिली है सिद्धेश्वर नगर से, इसको भेजने वाले हैं पंजाब रामटेक, यशोधरा और उनका समस्त परिवार। साथ ही हमें फरमाइश मिले बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशनलाल, कौशल्या और उनके समस्त परिवार की तरफ से।
1: इसके अलावा गांव गोविंदगढ़ मांझीवाला, श्री करणपुर राजस्थान से राजू टुटेजा, खुशदिल, उर्मिला, गुड्डू, मनु, शिव, करणपुरी, इस्माइल टुटेजा का। और साथ ही भोला कॉलोनी घरोड़ा, जिला करनाल, हरियाणा से विजेंद्र कुमार जयजान, कांता रानी, गुंजन, साहिल वाणी जयराम। और भी एक संदेश आया है कस्बा बराड़ा, जिला अंबाला से रवि कुमार, राहुल, रणजीत कौर का।
0: तो आइए आप सभी की पसंद पर सुनते हैं दिनेश गिरी से ये उपदेश।

0: दिनेश भाई, ये तो भाइयों ने अपनी पसंद पर उपदेश सुना दिनेश गिरी से, और आपके हाथ में खत दिखाई दे रहा है।
1: बिल्कुल। और साथ ही खत लेने से पहले क्यों ना हम एक सवाल ले लें।
0: बिल्कुल।
1: तो ये एक विनोद कुमार का सवाल आया है, ग्राम माजरा जिला झज्जर हरियाणा से। और इन्होंने लिखा है कि वे सर्दी के समय गेंदे के फूल का उत्पादन लेना चाहते हैं, और क्योंकि सर्दी आने में भी 2-3 महीने बाकी हैं, तो क्या ये सही समय है, उपयुक्त समय है गेंदे के फूल का बुवाई करने के लिए? और अगर ये समय उचित नहीं है तो फिर कौन सा समय उचित है? और इसके साथ ही किस तरह की जमीन हो, मिट्टी हो, भूमि हो, उसका चयन कैसे करें? और साथ ही इसके लिए उन्नत किस्में कौन सी हैं बीज की, और इसके अलावा और किन किन बातों का ध्यान रखें ताकि वे गेंदे के फूल का अच्छा उत्पादन पा सकें?
0: विनोद भाई, देखिए, आप गेंदे के फूल का उत्पादन लेना चाहते हैं सर्दियों में, और अगर सही बात की बात करें तो, अगर सही समय की बात करें तो, देखिए, सितंबर का दूसरा सप्ताह इसके लिए सबसे उचित माना जाता है। लेकिन अभी भी देर नहीं हुई है भाई, आप बिजाई कर सकते हैं, लेकिन इसमें देरी बिल्कुल ना करें, अब जल्दी से आप इसकी बिजाई कर दें। और जहाँ तक भूमि चयन की बात होती है कि गेंदे की खेती वैसे तो सभी प्रकार की भूमि में की जा सकती है, लेकिन दोमट मिट्टी इसके लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है। साथ ही भाई, देखिए, एक बात का आपने ध्यान रखना है कि भाई खेत में जल निकासी का उचित प्रबंध होना चाहिए, और आपका खेत अगर तैयार है तो भाई इसमें देरी ना करें। उन्नत प्रजातियों के

0: और भाई उपचारित ना हो तो उसे उपचारित अवश्य कर लें। देखिए, नर्सरी में गेंदे के बीज की बुआई के बाद पौधा 1 माह में रोपण के लिए तैयार हो जाता है, तो सही समय पर आप रोपाई करें। और भाई, अफ्रीकन गेंदे की अगर बात करें तो 40 से 40 सेंटीमीटर तथा फ्रेंच गेंदा 30 से 30 सेंटीमीटर पौधे से पौधे की दूरी जो उचित मानी जाती है, और गहराई की बात करें तो 4 से 5 सेंटीमीटर सबसे उचित मानी जाती है। भाई, खरपतवार नियंत्रण का आपने ध्यान रखना, साथ ही सिंचाई आदि का ध्यान रखकर समय पर आप रोपाई करें। और भाई, रोपाई से 60 से 70 दिन के अंदर फूल आना शुरू हो जाता है, और ये 90 से 100 दिन तक लगातार चलता है। इस तरह से छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे, समय पर बिजाई करेंगे, तो आप ले पाएंगे गेंदा फसल से भरपूर उत्पादन।
1: बिल्कुल, तो हमें उम्मीद है सुनील भाई कि आपने ये जो महत्वपूर्ण जानकारी दी है, तो ये जानकारी का लाभ न सिर्फ हमारे विनोद कुमार जो श्रोता हैं उनको मिलेगा, बल्कि हमारे अन्य जो किसान हैं जो कि गेंदे का फूल का उत्पादन करना चाहते हैं उनको भी आपके द्वारा दी गई इस जानकारी को लाभ मिलेगा। और अब हम आगे बढ़ते हैं और ब्रजेश हैं उनके जो है हमारे कलाकार हैं, और इनके लिए जो रिक्वेस्ट आई है वो मैं आपके पास देख रहा हूँ, कुछ
0: बिल्कुल
1: फरमाइश आई है।
0: बिल्कुल, फरमाइश आई है, काफ़ी फरमाइश आई है। ये पहली फरमाइश आई है जिला मुरादाबाद ग्राम दुल्हापुर से, और इसको भेजने वाले मुकेश कश्यप, सीता कश्यप और उनका समस्त परिवार।
1: इसके अलावा जनकपुरी सहारनपुर से जॉन डिकेस्ट्रो, रोजी डिकेस्ट्रो, पर्ल और विलिस का भी मैसेज आया है, और साथ ही जो है जिला अंबाला और कस्बा है बराड़ा, यहाँ से संदेश आया है रवि कुमार का, राहुल का, रणजीत कौर का।
0: साथ ही हमें फरमाइश मिली है भाई, ये फरमाइश मिली है कॉलोनी मुरादनगर गाजियाबाद से, उसको भेजने वाले हैं करमवीर सिंह और उनका समस्त परिवार।
1: इसके अलावा भोला कॉलोनी घरौंडा जिला करनाल हरियाणा से विजेंद्र कुमार जयजान, कांता रानी, गुंजन, साहिल और वाणी जयजान का भी संदेश आया है।
0: ब्रजेश से ही उपदेश सुनना चाहते हैं, सूरतगढ़ राजस्थान से भूपेंद्र मिशन, प्रभजोत मिशन और बेबी जानवी का।
1: इसके अलावा दादरी गेट भिवानी से भी कृष्ण, कोमल, किरण, कपिल और कुणाल का मैसेज आया है।
0: और ये फरमाइश हमें मिली है साले भाटा छत्तीसगढ़ से, इसको भेजने वाले हैं जीतू, केवल, किरण और उनका समस्त परिवार। साथ ही फरमाइश मिली है खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलक राज अरोड़ा की।
1: इसके अलावा और भी संदेश हमारे पास आ रहे हैं, जीटीबी मार्केट अहमदगढ़ मांडी पंजाब से मोहम्मद अनवर अंसारी, रवीना, आफिया और हिना, शकीला, राजिया, इन सब का संदेश भी हमें मिल चुका है।
0: साथ ही हमें फरमाइश मिली है गांव फरासी जिला हिसार से राजकुमार डूडी, प्रमोद कुमार डूडी और पुष्पेंद्र कुमार डूडी की।
1: और एक संदेश आया है दुर्गा कॉलोनी हांसी से राजू मिगलानी, बबीता मिगलानी, सुभाष योगी और डब्बू काव।
0: ये फरमाइश हमें मिली है रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा और करुण वर्मा की। साथ ही हमें फरमाइश मिली है खैल बाजार पानीपत से नरेश मल्होत्रा, नीटू लक्ष्य मल्होत्रा और उनके समस्त परिवार की तरफ से।
1: ओल्ड लिसनर ग्रुप ऑफ इंडिया रामगढ़ कैंट से ये संदेश आया है, महेंद्र मोदी ठाकुर साहब, कुलदीप सिंह हीरा, भारत भूषण श्रीवास्तव। और इसके अलावा एक और संदेश आया है कालानौर से नरेंद्र, किरण, नितिन और मयंक शर्मा का।
0: ये फरमाइश हमें मिली है भाई MLB रोड ग्वालियर से सुरेश खुराना, पप्पी किरण खुराना और उनके समस्त परिवार की तरफ से। साथ ही हमें फरमाइश मिली है ग्राम रजौनी जिला महोब बुलंदखंड उत्तर प्रदेश से उदय भानपाल, जयंतपाल, दीक्षा पाल और उनके समस्त परिवार की तरफ से।
1: इसके अलावा दादा बाबू रोड गिरिडीह झारखंड से भी एक संदेश आया है, मोहम्मद यासीन अनजान, साइमा नवाज, हसन नवाज, बाबू अहद, मिफरी, बेबी चाहत और सादिया का। और इसके साथ ही जलालाबाद वेस्ट से सुरेश, पूनम, विशाल, प्रिया, दिशानी और निमित आहूजा का भी संदेश मिल चुका है।
0: इसी क्रम में जो अगली फरमाइश मिली आदर्श नगर मालोट पंजाब से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगा शर्मा और उनके समस्त परिवार की तरफ से। साथ ही हमें फरमाइश मिली है भटिंडा रोड मंडी से, उसको भेजने वाले हैं राजेंद्र नारंग, अंजू नारंग और उनका समस्त परिवार।
1: सादुल शहर राजस्थान से राम कुमार रेवाड़, चंद्रकला रेवाड़ और पदमपुर जिला श्रीगंगानगर राजस्थान से मेहर अरोड़ा, ममता, कीर्ति और भूमिका का भी संदेश मिला है।
0: साथ ही हमें फरमाइश मिली है गांव चोलदा बागपत उत्तर प्रदेश से संजय डिंगिया, नमन डिंगिया और उनके समस्त परिवार की तरफ से। वडिंग खेड़ा पंजाब से मिंटू टॉमस, पिंकी लवली और आरती अरोड़ा की। साथ ही हमें फरमाइश मिली है कुमार हेड़ा, सैयद मसरूर, साइना हसन और उनके समस्त परिवार की तरफ से।
1: अनारकली बाजार जगराऊं पंजाब से सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका मल्होत्रा और गवैया मल्होत्रा और जयपाल यादव का भी संदेश मिल चुका है।
0: तो आइए आप सभी की

0: रनेश भाई, ये तो भाइयों ने अपनी पसंद पर बृजेश से उपदेश सुना। और देखिए, सरकार द्वारा किसानों की मदद के लिए अनेक योजनाएं और उपयोजनाएं चलाई जाती रही हैं। ऐसी एक जो उपयोजना वर्षा आधारित क्षेत्र विकास भारत सरकार के राष्ट्रीय कृषि मिशन के तहत चलाई जा रही है, जो एक उपयोजना है। और इस उपयोजना का जो मुख्य रूप से जो वर्षा पर निर्भर जो कृषि क्षेत्रों में टिकाऊ और समय कृषि को बढ़ावा देती हैं।
1: बिल्कुल सुनील भाई, और बात करें अगर वर्षा आधारित क्षेत्र विकास योजना के बारे में जो कि अभी आप जानकारी दे रहे थे, तो अगर इस योजना के प्रमुख उद्देश्यों के बारे में बात करें तो आप सबको जैसे कि पता ही है कि कई बार ऐसा होता है कि किसी इलाके में बहुत ज़्यादा बाढ़ आ जाती है, तो कभी सूखा हो जाता है, कभी बहुत ज़्यादा जो है प्राकृतिक आपदाएँ आ जाती हैं। इससे क्या है कि फसल में नुकसान होता है, तो उस नुकसान से बचाने के लिए भी ये योजना जो है लाभदायक है। इसके अलावा मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखने के लिए और वर्षा जल के बेहतर प्रबंधन के लिए भी ये योजना काफी अच्छी है, और इससे है क्या कि किसानों की आजीविका में सुधार होता है और वो आर्थिक रूप से समृद्ध होते हैं।
0: बिल्कुल। साथ ही देखिए, एकीकृत कृषि प्रणाली की अगर बात करें तो किसानों को खेती के साथ साथ बागवानी, पशुपालन, मछली पालन और वानिकी जैसी गतिविधियों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, ताकि आमदनी के स्रोत बढ़ाए जा
1: और
0: सके।
1: इसके अलावा अगर प्रमुख गतिविधियों की बात करें तो जल संरक्षण की

0: शिक्षा में भी बहुत अच्छा काम होता है, क्योंकि जो तालाब होते हैं और जल संचयन क्षेत्र होते हैं वहाँ पर इसका जो है लाभ मिलता है। इसके अलावा मृदा स्वास्थ्य, जिसमें कि जैविक खाद है, हरी खाद है, और मृदा परीक्षण यानी मिट्टी की जाँच को भी बढ़ावा मिलता है, और साथ ही फसल में विविधता आती है, जैसे कि दलहन, तिलहन और मोटा अनाज यानी मिलेट्स जैसी कम पानी की आवश्यकता वाली जलवायु अनुकूल फसलों को भी समर्थन मिलता है।
1: और देखिए, पात्रता की बात करते हैं, सभी किसान पात्र, देश के सभी छोटे सीमांत और बड़े किसान इस योजना का लाभ ले सकते हैं। और आवश्यक जो दस्तावेज की बात एक बार भाइयों को बता दें, तो देखिए, आधार कार्ड जो आपका बैंक खाते से लिंक हो, भूमि के दस्तावेज जिसमें खसरा खतौनी और लीज एग्रीमेंट वगैरह आता है, और साथ ही बैंक की पासबुक जिससे कि सब्सिडी आपके सीधे खाते में आ सके, इस तरह के आपको जो आवश्यक दस्तावेज करने हैं ताकि आप इस योजना का पूरा लाभ उठा सकें।
0: और अब सुनील भाई, अगले जो हमारे कलाकार हैं वो हैं ओम वीर आर्या, और इनको सुनने के लिए जो संदेश हमारे पास आए हैं, तो अगर हम बात करें, पहला जो ये संदेश आया है शीशपाल अकेला का, और ये संदेश इन्होंने लिखा है जटवाड़ा गाजियाबाद से। और इसके अलावा ज्ञानेंद्र सरधाना जी का जो है भी मैसेज आया है, और गांव मुरादगढ़ जिला करनाल हरियाणा से रमेश कुमार, पिंकी, वंश और भूवेश का भी संदेश हमें मिल चुका है।
1: साथ ही हमें फरमाइश मिली है जैन मंदिर वाली गली कुरावली से, और इसको भेजने वाले राशिद हुसैन अंसारी और उनका समस्त परिवार। इसी क्रम में जो अगली फरमाइश मिली है वो मिली है भाई हमें हितेंद्र दास की असम से, और साथ ही हमें फरमाइश मिली एकता कॉलोनी रोहतक से सीताराम कांगड़ा, बबीता बोट, निखिल कांगड़ा और तन्वी बोट की।
0: इसके अलावा पुराना तालाब डुमराओं से ये संदेश आया है वली उल्लाह अंसारी, बेगम शबनम राज और असमा अंसारी का, और दूसरा संदेश है जेल रोड बक्सर से राज एसडी अंसारी, फातिमा राज और असलम राज का, और इसके अलावा बाबा कुटीर रायगढ़ से संदेश आया है शिव कुमार चौहान, संक्रांति चौहान, रितेश कुमार राजेश्वरी, उत्कर्ष चौहान का, और अनारकली से जो अनारकली बाजार है जगराओं पंजाब से सुनील का, उनका भी संदेश आया है और वो भी ओमवीर आर्या को सुनना चाहते हैं।
1: साथ ही हमें फरमाइश मिली है भाई बन्ने बुजुर्ग प्लेरा टिकमगढ़ से, बजेंद्र विश्वकर्मा, तारा देवी और उनके समस्त परिवार की तरफ से, ममना जिला हमीमपुर से फरमाइश मिली है रामशरण विश्वकर्मा, साहिल विश्वकर्मा और उनके समस्त परिवार की तरफ से।
0: इसके अलावा एक और संदेश आया है ग्राम ममना जिला हमीरपुर, हमीरपुर बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से, रामशरण विश्वकर्मा, साहिल विश्वकर्मा, मंजू, रंजना, वंदना, प्रियम और दिव्यांशी विश्वकर्मा का।
1: तो आइए आप सभी की पसंद पर सुनते हैं ओम वीर आर्या से ये उपदेश।

0: गणेश भाई, ये तो भाइयों ने अपनी पसंद पर उपदेश सुना ओम वीर आर्या से। और अब देखें, मौसम की बात करें तो उत्तर पश्चिमी भारत में 17 से 25 सितंबर तक मानसून की विदाई हो जाती है, और उत्तरी मध्य भारत की बात करें तो 25 से 30 सितंबर तक मुख्य रूप से मानसून चला जाता है। आने वाले समय में धूप खिली रहने की आशंका और बारिश की संभावना कम नजर आ रही है। देखिए, अधिकतम तापमान की बात करें तो 34 से 36 डिग्री सेल्सियस रहने की उम्मीद है, और न्यूनतम तापमान की बात करें तो 26 से 24 रहने की उम्मीद जताई जा रही है। अब कल के कार्यक्रमों के बारे में भाइयों को बता दें, कल 5:10 पर कार्यक्रम लोक रंजनी का आनंद ले सकेंगे, और साथ ही भाई देखिए 6:30 पर कार्यक्रम ग्राम संसार में अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस के बारे में चर्चा करेंगे, साथ ही ग्रामीण युवाओं के लिए कृषि ड्रोन सेवा उद्यम के बारे में जानकारी देंगे, और 7:05 पर कार्यक्रम कृषि जगत में जलवायु स्मार्ट कृषि के बारे में, बदलती जलवायु के अनुरूप खेती को कैसे बनाएं सक्षम, और साथ ही भाई जो कल जो बाजार भाव के बारे में भी चुनिंदा मंडल की जानकारी देंगे।
1: और इसके अलावा देखिए श्रोताओं, हमें आपके सुझावों का लगातार इंतजार रहता है, क्योंकि उससे हम हमारे कार्यक्रमों को एक गति मिलती है और गति से ही प्रगति होती है। तो आप हमें इसके लिए संदेश भेज सकते हैं, हमें हमारा पता जो हमारे नियमित श्रोता हैं उनको तो मालूम ही है, जिनको नहीं मालूम उनके लिए हम बता देते हैं, कृषि एवं गृह एकांश, कमरा नंबर 610, नव प्रसारण भवन, आकाशवाणी, नई दिल्ली 110001।
0: और इसी के साथ ही हमारे आज के कार्यक्रम का समय यही समाप्त होता है। कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता तुषार पाराशर और संयोजक शिव नंदन लाल, कृषि जगत कार्यक्रम सुनने वाले सभी किसान बहन भाइयों को राम।

श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम कृषि जगत। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, DRM 810 किलो हर्ट्स पर। और लीजिए प्रस्तुत है गजल और कव्वाली का कार्यक्रम।

0: संभल नहीं।
1: श्रोताओ, आज का गजल और कव्वाली से सजा कार्यक्रम अब संपन्न होता है। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
2: दी, ये देख कैसे।
3: हैप्पी बर्थडे भाई।
2: दीका,
4: हाँ मेरा फेवरेट कलर
3: हमेशा शॉपिंग।
4: आई नो माँ, बट खर्चा करने की भी यही उम्र है, राइट?
5: सेविंग करने की भी यही उम्र है।
6: आई नो पा, सेव करो, सही जगह निवेश करो, रकम पर ब्याज मिलेगा, जिसे फिर से निवेश करने पर ब्याज मिलता रहेगा।
4: आई नो ना।
6: आरबीआई कहता है,
7: करो सही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट।
8: नमस्कार, आकाशवाणी दिल्ली से प्रादेशिक समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में पर्यावरण और जलवायु गतिशीलता के भविष्य पर आयोजित सम्मेलन को संबोधित किया। कहा, जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने के लिए ठोस प्रयास जरूरी। दिल्ली के चांदनी चौक स्थित ऐतिहासिक टाउन हॉल के विकास के लिए दिल्ली पर्यटन और परिवहन विकास निगम ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। दिल्ली मेट्रो की सहायक कंपनी दिल्ली मेट्रो इंटरनेशनल लिमिटेड बर्लिन में इनो ट्रांस 2026 में भाग लेगी। वैश्विक मंच पर सेवा विस्तार की दिशा में बड़ा कदम। दिल्ली के उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधू ने कैंसर देखभाल में नवाचार और किफायती उपचार विषय पर सेमिनार को संबोधित किया। और दिल्ली नगर निगम ने स्वच्छता ही सेवा पहल के अंतर्गत राजधानी में स्वच्छता पौधारोपण और जन जागरूकता अभियान चलाया। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि हाल के दिनों में आई कई प्राकृतिक आपदाओं से स्पष्ट है कि जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने के लिए ठोस प्रयास जरूरी हैं। नई दिल्ली में पर्यावरण और जलवायु गतिशीलता के भविष्य पर आयोजित सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करते हुए राष्ट्र

0: राष्ट्रपति ने कहा कि वैश्विक वैज्ञानिक समुदाय जलवायु जोखिम को लेकर गंभीर चेतावनी दे रहा है।
1: हाल के समय में हुई अनेक प्राकृतिक आपदाओं ने यह स्पष्ट किया है कि क्लाइमेट इम्पैक्ट्स को कम करने के लिए सशक्त क्लाइमेट एक्शन करना आवश्यक है। विश्व का वैज्ञानिक समुदाय चेतावनी दे रहे हैं कि क्लाइमेट रिस्क बहुत गंभीर हो चुका है। इनकी यथासंभव रोकथाम और सामना करने के लिए स्थानीय, क्षेत्रीय और वैश्विक सभी स्तर पर स्टेक होल्डर्स के बीच सक्रिय सहयोग की सुदृढ़ आवश्यकता है।
0: उन्होंने स्थानीय, क्षेत्रीय और वैश्विक स्तर पर सभी पक्षों के बीच सक्रिय सहयोग मजबूत करने की आवश्यकता पर बल दिया। राष्ट्रपति ने कहा कि जलवायु परिवर्तन से जैव विविधता में कमी, जल संकट और भूमि क्षरण जैसी समस्याएं बढ़ रही हैं। उन्होंने कहा कि जल संकट वाले क्षेत्रों में कृषि जल संरक्षण इकाइयां स्थानीय समुदायों के लिए उपयोगी हो सकती हैं।
1: क्लाइमेट चेंज मानव अस्तित्व के अनेक स्तरों पर असंतुलन पैदा करता है। बायोडायवर्सिटी लॉस, वाटर स्ट्रेस और लैंड डिग्रेडेशन इससे गहराई से जुड़े हैं। वाटर स्ट्रेस वाले क्षेत्रों में फार्म पॉन्ड्स स्थानीय समुदाय के लिए अत्यंत उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं। ये न केवल वर्षा जल को खेतों में रखने के लिए अपितु सिंचाई के लिए समय पर जल उपलब्ध कराते हैं, इनसे भूजल भी रिचार्ज होता है।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पर्यावरण संबंधी कानूनी मामलों में राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की भूमिका की भी सराहना की। उन्होंने कहा कि न्यायाधिकरण ने बड़ी संख्या में मामलों का तेजी से निपटारा किया है और नदियों, वायु गुणवत्ता तथा कचरा प्रबंधन से जुड़े मामलों में प्रभावी अनुपालन व्यवस्था विकसित की है। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल, सुप्रीम कोर्ट की न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के अध्यक्ष न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने भी सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित किया। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन मंगलवार को नई दिल्ली में 9वें भारत अंतर्राष्ट्रीय जल सप्ताह का उद्घाटन करेंगे। 5 दिन के इस आयोजन का विषय है जलवायु अनुकूल जल प्रबंधन। जल शक्ति मंत्रालय ने बताया कि इस अंतर्राष्ट्रीय आयोजन में नीदरलैंड और जर्मनी साझेदार देश के रूप में शामिल होंगे। 14 राज्य साझेदार राज्यों के रूप में भाग लेंगे, जबकि 6 केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों को भी साझेदार के रूप में आमंत्रित किया गया है। 22 से 25 सितंबर तक अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी का भी आयोजन किया जाएगा। इसमें टिकाऊ और जलवायु अनुकूल जल प्रबंधन से जुड़ी नवीन तकनीकों, उत्पादों और समाधानों को प्रदर्शित किया जाएगा। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं।
2: खबरों और अपडेट्स के लिए कभी भी कहीं भी expert@AIRNewsHindi और फेसबुक पर ऑल इंडिया रेडियो न्यूज को फॉलो करें।
0: दिल्ली सरकार ने चांदनी चौक स्थित ऐतिहासिक टाउन हॉल को विकसित करने की दिशा में महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। इस कड़ी में दिल्ली पर्यटन और परिवहन विकास निगम और दिल्ली नगर निगम के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। एक रिपोर्ट।
3: मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि चांदनी चौक का ऐतिहासिक टाउन हॉल केवल भवन नहीं बल्कि दिल्ली के समृद्ध इतिहास और विरासत का महत्वपूर्ण हिस्सा है। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार का प्रयास है कि इसकी ऐतिहासिक और स्थापत्य पहचान को सुरक्षित रखते हुए इसे आधुनिक पर्यटन और सांस्कृतिक गतिविधियों से जोड़ा जाए। श्रीमती गुप्ता ने कहा है कि ग्लोबल हेरिटेज सेंटर के रूप में विकसित होने के बाद ये परिसर देश दुनिया से दिल्ली आने वाले पर्यटकों को पुरानी दिल्ली के इतिहास, संस्कृति और विरासत से परिचित कराने का महत्वपूर्ण केंद्र बनेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि समझौता ज्ञापन के अंतर्गत ऐतिहासिक टाउन हॉल, प्रेस बिल्डिंग और पार्क का संरक्षण करते हुए एक ग्लोबल हेरिटेज सेंटर के रूप में विकसित किया जाएगा। इस परियोजना का उद्देश्य ऐतिहासिक भवन की मूल विरासत पहचान को सुरक्षित रखते हुए उसका अनुकूली पुनः उपयोग करना है। नीतिका की रिपोर्ट के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए प्रशांत कुमार।
0: दिल्ली मेट्रो रेल निगम की सहायक कंपनी दिल्ली मेट्रो इंटरनेशनल लिमिटेड बर्लिन में होने वाले इनोट्रांस 2026 में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी शुरुआत करेगी। इसके माध्यम से वो मोबिलिटी के क्षेत्र में अपनी विशेषज्ञता और अनुभव को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पेश करेगी।
4: इनोट्रांस 2026 जर्मनी के बर्लिन में हर दो वर्ष में आयोजित होने वाला विश्व का सबसे बड़ा व्यापार मेला और रेल परिवहन उद्योग पर आधारित केंद्र है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में DMIL के मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजय जमुआर ने कहा कि इनोट्रांस 2026 DMRC और DMIL की विशेषज्ञता को वैश्विक स्तर पर दिखाने के लिए एक अहम मंच प्रदान करता है। उन्होंने बताया कि इस कार्यक्रम के माध्यम से सभी दुनिया भर के परिवहन अधिकारियों, इंफ्रास्ट्रक्चर पार्टनर्स और मोबिलिटी लीडर्स के साथ जुड़ने में मदद मिलेगी। DMIL ने पिछले 3 महीनों में 5 अंतर्राष्ट्रीय निविदाएं जमा की हैं, जो उसके अंतर्राष्ट्रीय बिजनेस अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विस्तार की एक अहम शुरुआत है। इनोट्रांस 2026 संस्करण उन तकनीक पर ध्यान केंद्रित करेगा जो रेल परिवहन को बदल रही है। प्रादेशिक समाचार के लिए नीतिका गुप्ता।
0: दिल्ली के उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधू ने आज इंडियन कैंसर सोसाइटी द्वारा आयोजित कैंसर देखभाल में नवाचार और इलाज को किफायती बनाने से जुड़े विशेष सेमिनार को संबोधित किया। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री संधू ने कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं को सुलभ बनाने के लिए नवाचार और किफायतीपन का साथ साथ चलना जरूरी है। उन्होंने कैंसर की रोकथाम, जागरूकता, शुरूआती जांच और समय पर रेफरल को प्रभावी कैंसर देखभाल की आधारशिला बताया। उन्होंने कहा कि समय पर बीमारी की शुरुआती पहचान से जान बचाने के साथ परिवारों को आर्थिक कठिनाइयों से भी राहत मिलती है।
5: फॉर अ पेशेंट एंड देयर फैमिली,
6: किसी मरीज और उसके परिवार के लिए कैंसर का निदान केवल एक चिकित्सकीय चुनौती नहीं है, बल्कि यह भावनात्मक तनाव, अनिश्चितता और भारी आर्थिक बोझ भी लेकर आता है। इसीलिए वहनीयता को नवाचार से अलग मुद्दे के रूप में नहीं देखा जा सकता। दोनों को साथ साथ आगे बढ़ना होगा। कैंसर के इलाज को अधिक किफायती बनाने के सबसे प्रभावी तरीकों में से एक है बीमारी का शुरुआती चरण में पता लगाना।
0: उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधू ने मरीजों को 35 वर्षों तक सहानुभूतिपूर्ण सहयोग देने के लिए कैंसर सहयोग की सराहना की। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता आज नायर सर्विस सोसाइटी और ग्लोबल नायर सेवा समाज द्वारा आयोजित नायर शिखर सम्मेलन 2026 और विद्याधिराजा महोत्सव समारोह में शामिल हुई। एक सोशल मीडिया पोस्ट में मुख्यमंत्री ने कहा कि महान संत और समाज सुधारक चट्टम्पी स्वामीकल ने सामाजिक भेदभाव और जातिगत रूढ़ियों के विरुद्ध समाज को जागरूक कर समानता और समरसता का संदेश दिया। ये आयोजन उनके इन्हीं विचारों को आगे बढ़ाता है। श्रीमती रेखा गुप्ता ने कहा कि इसी भावना के साथ दिल्ली में रह रहे केरलम के सभी भाई बहन अपनी संस्कृति और परंपराओं को सहेजते हुए दिल्ली की विविधता को समृद्ध कर रहे हैं। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता आज इंदिरा गांधी स्टेडियम में हरितालिका तीज महोत्सव 2026 में शामिल हुई। इस अवसर पर उन्होंने हरितालिका तीज की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि तीज व्रत नहीं बल्कि नारी के संकल्प और शक्ति की गाथा है। माता पार्वती के तप और संकल्प से जुड़ा ये पर्व आज भी सभी माताओं और बहनों की आस्था, शक्ति और समर्पण का प्रतीक है। श्रीमती रेखा गुप्ता ने हरितालिका तीज को नेपाली और गोरखाली नारी की शक्ति और स्वाभिमान का पर्व बताते हुए समाज की सभी महिलाओं को शुभकामनाएं दी। दिल्ली के उच्च शिक्षा मंत्री आशीष सूद आज दिल्ली विश्वविद्यालय के भारतीय कॉलेज के 55वें वार्षिक समारोह में शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने उपलब्धि हासिल करने वाले विद्यार्थियों को शुभकामनाएं दी। श्री सूद ने कहा कि विद्यार्थियों की उपलब्धियों और उनके सफर का जश्न मनाना उनके लिए खुशी का अवसर है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं।
2: अपडेट रहे, आगे रहे। expert@airnewshindi और Instagram पर AIR News Alerts को फॉलो करें।
0: राजधानी में विभिन्न रामलीला समितियों ने आज भूमि पूजन और ध्वजारोहण के साथ श्री रामलीला महोत्सव की तैयारियों का शुभारंभ किया। आज ऐतिहासिक लव कुश रामलीला समिति ने लाल किले के सामने लव कुश पार्क में भव्य भूमि पूजन और ध्वजारोहण समारोह आयोजित किया। इस अवसर पर चांदनी चौक के सांसद प्रवीण खंडेलवाल और दक्षिण दिल्ली के सांसद रामवीर सिंह बिधूड़ी ने वैदिक मंत्रोच्चार और धार्मिक अनुष्ठानों के साथ भूमि पूजन में भाग लिया। दोनों नेताओं ने भगवान श्रीराम, माता सीता, प्रभु लक्ष्मण और भगवान श्री हनुमान जी की पूजा अर्चना की। श्री हनुमान ध्वज को भूमि में स्थापित कर दिल्ली के रामलीला महोत्सव का विधिवत शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर श्री खंडेलवाल ने कहा कि रामलीला केवल एक सांस्कृतिक आयोजन नहीं बल्कि भारतीय जीवन मूल्यों, आदर्शों, मर्यादा, कर्तव्यनिष्ठा और धर्म के प्रति समर्पण का जीवंत उत्सव है।
7: प्रभु राम की जो मर्यादा है, उनके जो सिद्धांत है, वो प्रतिपादित होते रहे और हम सब मिलकर के प्रभु श्री राम के गुण गाते रहे। रामलीला हमारे देश का सबसे बड़ा पर्व है और आज से विधिवत रूप से भूमि पूजन के साथ दिल्ली में रामलीला महोत्सव की तैयारियां प्रारंभ हो जाएंगी।
0: श्री खंडेलवाल ने कहा कि दिल्ली की रामलीलाएं देश की सांस्कृतिक विरासत का गौरवशाली प्रतीक हैं, जो नई पीढ़ी को भारतीय संस्कृति, सनातन परंपराओं और राष्ट्रभक्ति से जोड़ने का महत्वपूर्ण कार्य करती हैं। दक्षिण दिल्ली के बदरपुर और तुगलकाबाद विधानसभा क्षेत्रों में आज 11 करोड़ 70 लाख रुपए के विकास कार्यों का शुभारंभ किया गया। दिल्ली सरकार में समाज कल्याण और सहकारिता मंत्री रविन्द्र इंद्राज सिंह ने इन विकास कार्यों का शिलान्यास किया। इस अवसर पर दक्षिण दिल्ली से भाजपा सांसद रामवीर सिंह बिधूड़ी और निगम पार्षद रोहतास बिधूड़ी तथा मंजू भी उपस्थित रही। रामवीर सिंह बिधूड़ी ने बताया कि इन कार्यों पर खर्च की जा रही राशि दिल्ली सरकार के अनुसूचित विभाग द्वारा उपलब्ध कराई जा रही है। दिल्ली नगर निगम एमसीडी ने स्वच्छता ही सेवा पहल के अंतर्गत राजधानी के विभिन्न क्षेत्रों में स्वच्छता, पौधारोपण और जन जागरूकता अभियान चलाए। पुरानी दिल्ली में विकसित फाउंडेशन के सहयोग से लाल किला और अंगूरी बाग क्षेत्र में आयोजित अभियान में करीब 400 स्वयंसेवकों ने भाग लिया। अंगूरी बाग में पौधारोपण भी किया गया। पूर्वी क्षेत्र में स्वामी दयानंद मार्ग और उत्तरी क्षेत्र के तिमारपुर, गांधी विहार, वजीराबाद और जीटीबी नगर में विशेष सफाई अभियान चलाए गए। इस दौरान नागरिकों को कचरे के उचित निस्तारण और स्वच्छता बनाए रखने के लिए जागरूक किया गया। राजधानी दिल्ली में आज मौसम सामान्य रहा। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 35.4 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 25.2 डिग्री सेल्सियस रहा। विभाग ने बताया कि कल राजधानी में आसमान साफ रहने की संभावना है। कल का अधिकतम तापमान 34 से 36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 24 से 26 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में पर्यावरण और जलवायु गतिशीलता के भविष्य पर आयोजित सम्मेलन को संबोधित किया। जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने के लिए ठोस प्रयास जरूरी। दिल्ली के चांदनी चौक स्थित ऐतिहासिक टाउन हॉल के विकास के लिए दिल्ली पर्यटन और परिवहन विकास निगम ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। दिल्ली मेट्रो की सहायक कंपनी दिल्ली मेट्रो इंटरनेशनल लिमिटेड बर्लिन में इनोट्रांस 2026 में भाग लेगी। वैश्विक मंच पर सेवा विस्तार की दिशा में बड़ा कदम। और दिल्ली नगर निगम ने स्वच्छता ही सेवा 2026 के अंतर्गत राजधानी में स्वच्छता, पौधारोपण और जन जागरूकता अभियान चलाया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
8: ये आकाशवाणी दिल्ली है। लीजिए सुनिए कवि गोष्ठी। गोष्ठी का संचालन कर रहे हैं युवा कवि हिमांशु शुक्ला।
9: आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आकाशवाणी दिल्ली स्टूडियो में आपके लिए जुड़े हैं। आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत करते हैं। आज हमारे बीच में राष्ट्रीय स्तर के कवि कवित्री उपस्थित हैं, जिनमें डॉक्टर ऋषि कुमार मौर्य जी हैं, दीप शिखा श्रीवास्तव दीप जी हैं और डॉक्टर सलोनी चावला जी हैं। तो आइए हम इनकी रचनाओं से, इनकी कविताओं से जुड़ते हैं आप सभी के साथ और आनंद लेते हैं इनकी रचनाओं का। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और जहाँ कविताएं होती हैं वहाँ कहते हैं स्वर्ग अपने आप जमीन पर उतर आता है। मौसम ने आज कुछ ऐसा रंग जमाया है, हवा ने भी जैसे कोई गीत सुनाया है। हल्की सी ठंड, चाय की प्याली और शायरी का साथ, लगता है आज की शाम में खुद को कविता से सजाया है। कुछ मौसम कविता लिखवाते हैं, कुछ मौसम कविता सुनवाते हैं और कुछ शामें ऐसी होती हैं जो कवि और श्रोता दोनों को ही अपना बना लेती हैं। तो आइए आज की इस शाम को शब्दों की गर्माहट, भावनाओं की मिठास और कविताओं की खुशबू से महका दें, क्योंकि जब शब्द जब दिल से निकलते हैं तो असर करते हैं। मैं सबसे पहले आवाज देता हूं, हमारे बीच में उपस्थित हैं डॉक्टर ऋषि कुमार मौर्य जी। तो आइए सुनते हैं डॉक्टर ऋषि कुमार मौर्य जी को और इनको मैं आमंत्रण देता हूँ मोहम्मद अलवी साहब की इन चार पंक्तियों के साथ। शरीफे के दरख्तों में छुपा घर देख लेता हूँ, मैं आंखें बंद करके घर के अंदर देख लेता हूँ, उधर उस पार क्या है ये कभी सोचा नहीं मैंने, मगर मैं रोज खिड़की से समंदर देख लेता हूँ। तो स्वागत करते हैं हमारे बीच में उपस्थित डॉक्टर ऋषि कुमार मौर्य जी का, स्वागत है आपका।
10: नमस्कार सभी श्रोताजनों को, मैं ऋषि मौर्य अपने एक मुक्तक से आप सभी लोगों से रूबरू होता हूँ।

0: के दिल।
1: वाह, क्या बात।
0: और मैं झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जी की प्रेरणा से मैंने एक कविता लिखी है, शेरनी।
2: स्वागत
0: तो
2: है।
0: मैं वो आपके सामने रखना चाहता हूँ कि घूंघट की लाज रखी घूंघट उतार दई, मीन जैसी आंखों में अंगार भरे शेरनी, आंचल में बांधी सुते ममता बढ़ाए दई, चूड़ियां उतार दई कृपाण लिए शेरनी, पायल ने की छनक घोड़न के टाप संग, पायल ने की छनक घोड़न के टाप संग, युद्ध के मैदान में बवाल लगे शेरनी, प्रखर प्रचंड रण देख ललकारी, जब अश्व में सवार पाषाण लगे शेरनी, चपला से तेज गति तेज तलवार ने की, चपला से तेज गति तेज तलवार ने की, पलक झपक धड़ काटती है शेरनी,
1: क्या बात,
0: युगन जुगन की प्यासी धरती की प्यास, पापियों के खून से बुझाए रही शेरनी, पापियों के खून से बुझाए रही शेरनी, और तोपन और मोतन को ठेंगा दिखाए दे, खुद मुस्काए के चढ़ाए रही शेरनी, खुद मुस्काए के चढ़ाए रही शेरनी, मुंह में लगाम रखी आंखने शिकार कर, मुंह में लगाम रखी आंखने शिकार करी, वे अजब गजब कमाल करे शेरनी, अहे में बहे में तोड़ जान ले वे जान से, अहे में बहे में तोड़ जान ले वे जान से, रूप ऐसा रौद्र का दिखाए रही शेरनी।
2: वाह वाह वाह,
1: बहुत
2: बहुत
1: खूब,
2: बढ़िया,
1: बहुत
2: वाह
1: खूब,
2: वाह।
1: बहुत
0: और
1: खूब।
0: इसी करतार में हम आपको अयोध्या ले चलते हैं, और अयोध्या में 14 साल पूरे हो चुके हैं, भगवान राम अभी लौट के नहीं आए हैं। तो भरत की जो विरह वेदना है वो हम आपके सामने रखते हैं।

0: तो आए।
1: बहुत ही सुंदर काव्य पाठ आपका डॉक्टर ऋषि कुमार मौर्य जी,
0: जी धन्यवाद।
1: शुभकामनाओं के साथ चलिए तो आइए आगे बढ़ते हैं। अब हमारे बीच में देश की प्रसिद्ध कवित्री दीपशिखा श्रीवास्तव दीप जी हैं, और आपकी रुचियां बहुत सारी हैं। आप कविताएं लिखती हैं, आप गजल लिखती हैं, नज्म, मुक्तक, हाइकू, कहानी, लघु कथाएं, नाटक, नुक्कड़ नाटक, ऐसी बहुत सी आपकी रुचियां हैं लेखन के प्रति, और आपको बहुत सारे सम्मानों से सम्मानित किया जा चुका है। मैं आपको आमंत्रण देता हूं प्रभाकर माचवे जी की इन चार पंक्तियों के साथ। निर्जन की जिज्ञासा है निर्झर की तुतली बोली में, विटपो के हैं प्रश्न चिन्ह विघों की वन्य ठिठोली में, इंगित है कुछ और पूछ लूं इंद्रचाप की रोली में, संशय के दो कर लाया हूं आज ज्ञान की झोली में। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है दीपशिखा श्रीवास्तव दीप जी, आइए अपनी कविताओं से हमारे श्रोताओं का मन मोह लीजिए।
0: बहुत धन्यवाद आकाशवाणी दिल्ली का, मैं बहुत धन्यवाद देती हूं और अपने श्रोताओं का मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूं, नमस्कार करती हूं। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हिंदी दिवस अभी अभी बीता है, तो हिंदी हिंद की अभिलाषा है ऐसा मैं मानती हूँ, और भारत माता के मस्तक की बिंदी हिंदी के लिए मैं कुछ पंक्तियां कहना चाहती हूँ।
2: स्वागत है।
0: हिंदी खड़ी बाजार में मांगे अपना हक, दोयम दर्जा ही मिला अपने घर में नाहक, करें प्रयास सार्थक चुकाएं अपना कर्ज, सिर्फ हिंदी दिवस मनाकर ना निभाएं अपना फर्ज।
1: वाह बहुत खूब।
0: हिंदी सिर्फ भाषा नहीं हिंदुस्तान की अभिलाषा है, रसों की चाशनी में घुली भावों का बताशा है। हिंदी प्रेम का अंकुर है, प्रिय का उज्जवल उर है, संस्कारों की धरती है और मर्यादा का अंबर है। हिंदुस्तान के हृदय का भाव है, शहरों का अदब नेह का गांव है, सरल सुग्राह्य रूप इसका जिसमें ज्ञान का ठहराव है। माँ भारती के गले का हार है, गंगा की धवल धार है, मानस की सरस चौपाइयां भूषण की तीखी कटार है, कृष्ण की बंसी का स्वर शिव धनुष की टंकार है, मीरा की रागिनी मनोहर दिनकर की हुंकार है, महादेवी का राग संचित निराला का राग विराग है, पंत का प्रकृति प्रेम समाहित जिसमें सुभद्रा की सी आग है, और माँ की स्नेह भरी पाती है, घर घर की दिया बाती है, संचित संस्कृति अनमोल, हिंदी भाषा नहीं हमारी थाती है। हिंदी भाषा नहीं हमारी थाती
1: बहुत है। क्या बहुत सुंदर।
0: और कहना चाहती हूँ आप सभी से कि कवियों की कलम उनकी कुछ जिम्मेदारी होती है, और वो अपनी जिम्मेदारी अच्छे से निभा रहे हैं कि नहीं, इसी को लक्ष्य में करके मैं कवियों की कलम से एक प्रश्न करती हूँ अपनी पंक्तियों के माध्यम से, सुनिएगा।
1: स्वागत है।
0: राग रंग से सजा सजा के नयनों के अभिराम लिखे, मधुर अधर मुस्कानों पर सिंदूरी अरुण ललाम लिखे, लिखा पायल कंगना हार लिखे वही श्रृंगार लिखे, जी हजूरी लिखी सबने दरबारी संज्ञान लिखे, दफ्तर बंगला पाकर सबने सरकारी गुणगान लिखे, आत्मश्लाघा के वश में सबने चरण वंदन सौ बार लिखे, अब मौन धरे क्यों बैठी हो, भाव शून्य होकर ऐठी हो, सत्य लिखना है धर्म तुम्हारा, चुप रहने का क्या मर्म तुम्हारा, मक्कारों से भयभीत हुई हो या निज गौरव से रिक्त हुई हो, प्रश्नों के इस उमड़े ज्वार को आज सच की दरकार है, बोल मेरी कलम लिख सके जो उस सच को, क्या तुझ में वो अंगार है।
1: वाह वाह क्या बात
0: है। दीनहीन दुखियों की पीर और खुदाओं के बिकते जमीर, सौ सौ मील चलती राचारी, दांव लगा बैठा व्यभिचारी, पोषक पर शोषक के वार, छूटे आंगन टूटे दीवार को आज सच की दरकार है, बोल मेरी कलम लिख सके जो उस सच को, क्या तुझ में वो अंगार है।
1: बहुत खूब।
0: कब तक नर्तक बनकर नक्कालों की जयकार करोगी, या दर्शक बनकर अन्याय स्वीकार करोगी, दिनकर की रणभेरी हो सुभद्रा की तुम चेरी हो, अब निर्बल में हुंकार भरो तुम, दुर्बल की ललकार बनो तुम, जीत लिखो या हार लिखो, पर युग परिवर्तक बन तुम सच हर बार लिखो, तुम सच हर बार लिखो, तुम सच हर बार।
1: क्या बात है। बहुत सुंदर, बहुत ही।

0: खूबसूरत करता।
1: और इसी क्रम में मैं और एक अपनी छोटी सी रचना सुनाना चाहती हूँ, यायावर।
0: स्वागत है।
1: यायावर से बीते दिन बंजारों सी ये रातें, दिल आवारा बादल ढूंढे खुशियों की बातें। बढ़ता रहा यूं ही जीवन, ठहरा सा कहीं ये मन, पथरीली राहों पर खोजे समतल सा एक उपवन। मुट्ठी भर सपनों के बीज, चाहतों की बरखा से सींचे, उपजे समय की धरा पर नन्ही नन्ही अखियां मीचे। कर कंटक कभी पांव शूल चुभे, कभी हर्षित पुष्प प्रसून खिले। डगर में मिला कभी सूर्य प्रखर, कभी मिला अंधकार गहन। युग पर्व संवत्सर बीते, आशाओं के समर भी जीते। मिला जो पथ पाथे ये मुझे, लगा हृदय स्वीकार किया। मैं पथिक प्रवासी चकित, बहती नदियां सी निरंतर, आदि अंत और अनंत से भ्रमित, सागर में जा मिली चिरंतन, सागर में जा मिली चिरंतन।
0: क्या बात है, बहुत ही
1: बहुत
0: खूबसूरत
1: अच्छा,
0: कविता,
1: बहुत
0: बहुत खूब,
1: अच्छा।
0: बहुत सुंदर, बहुत ही खूबसूरत कविताएं आपने पढ़ी दीपशिखा श्रीवास्तव दीप जी, और बहुत ही भावपूर्ण आपकी कविताएं, बहुत ही खूबसूरत शब्दावली आपकी, और इन्हीं आशाओं के साथ, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ एक बार आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही खूबसूरत शाम चल रही है, बहुत ही खूबसूरत कविताओं का आनंद हम सब ले रहे हैं। आशा है कि हमारे श्रोतागण भी इन कविताओं का आनंद ले रहे होंगे। और अब इसी श्रृंखला में हमारे बीच में उपस्थित हैं डॉक्टर सलोनी चावला जी, और आप देश की सुप्रसिद्ध कवित्री हैं, और आप साहित्य शिरोमणि सम्मानित अंतर्राष्ट्रीय कवित्री हैं, गीत के लेखिका और गायिका हैं, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित हैं। मैं अदम गोंडवी साहब की चार पंक्तियों से आपका स्वागत करता हूँ। अचेतन मन में प्रज्ञा कल्पना की लौ जलाती है, सहज अनुभूति के स्तर में कविता जन्म पाती है, उठाता पाँव है विज्ञान संशय के अंधेरे में, अचानक उस अंधेरे में ही बिजली कौंध जाती है, अचानक उस अंधेरे में ही बिजली कौंध जाती है। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका डॉक्टर सलोनी चावला जी, आइए आपको सुनते हैं।
1: बहुत बहुत शुक्रिया मुझे इतनी प्यारी पंक्तियों से बुलाने के लिए, और कला की देवी माँ सरस्वती को नमन करते हुए और दिल्ली आकाशवाणी का आभार प्रकट करते हुए, श्रोताओं को नमस्कार करते हुए मैं एक कविता तरन्नुम में पेश करना चाहती हूँ जो आज के युग में बहुत मायने रखता है।

0: रहे सीधे साफ रस्तों पर, खुश नसीब चलते रहे सीधे साफ रस्तों पर, हमने एक कदम सागर दूजे खाई देखी है। वक्त दूर नहीं जब डिजिटल पलंग भी मिलेंगे, बस हम वो जमाना है जिसने चारपाई देखी है।
1: क्या बात है,
0: बस हम वो जमाना है जिसने चारपाई देखी है। आज खरौंदे सिमट गए, आसमां भी हुआ तन्हा, हमने भरे घर में दादी चाची और ताई देखी है। कदम बढ़ाते रहो, बढ़ने का नाम है जिंदगी, हमने रुके हुए पानी में उगती काई देखी है। आज के बालक बहुत ज्यादा समझदार, हमने तो मात पिता की पिटाई देखी है।
1: क्या बात है,
0: हमने तो मात पिता की पिटाई देखी है। क्षमा को मालूम था कि वो बुझ जाएगी, लोगों ने तो सिर्फ लौ की अंगड़ाई देखी है। लोगों ने तो सिर्फ लौ की अंगड़ाई देखी है। बनी बनाई पोशाकों का दौर है आज, बनी बनाई पोशाकों का दौर है आज, हमने हर घर में कढ़ाई बुनाई देखी है।
1: वाह,
0: हमने हर घर में कढ़ाई बुनाई देखी है।
1: बहुत अच्छे।
0: अमन और शांति बस किताबों में अमर हैं, हवा की नैनों ने देश देश में लड़ाई देखी है। दौलत की कद्र महलों में रहने वाले नहीं करते, करता है जिसने सिक्के सिक्के की कमाई देखी है। काबिलियत जिसमें भी ज्यादा होती है, जमाने ने हमेशा उसी में बुराई देखी है।
1: सही बात है।
0: कर्म फल के तमाचे हल्के नहीं होते जनाब, अच्छे अच्छों की अच्छी खासी धुलाई देखी है। अब अंतिम, न्याय का लफ्ज बेमायने हो गया सलोनी,
1: क्या बात है।
0: निर्दोषों को सजा दोषियों की रिहाई देखी है। दुश्मनों में वफा दोस्तों में बेवफाई देखी है, हमने मरहम में नमक की परछाई देखी है। हमने मरहम में नमक की परछाई देखी है। बहुत बहुत शुक्रिया।
1: क्या बात है, बहुत बहुत आभार आपका सलोनी जी, और बहुत ही खूबसूरत कविताएं, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं।
0: बहुत बहुत शुक्रिया।
2: तो आइए, खूबसूरत संचालन कर रहे हमारे सुप्रसिद्ध कवि हिमांशु शुक्ला जी को मैं चार पंक्तियों से आमंत्रित करती हूँ। हालात के कदमों पे कलंदर नहीं गिरता, हालात के कदमों पे कलंदर नहीं गिरता, टूटे भी जो तारा तो जमी पर नहीं गिरता, गिरते हैं समुंदर में बड़े शौक से दरिया, लेकिन किसी दरिया में समुंदर नहीं गिरता। तो ऐसे ही समुंदर दिल वाले को हिमांशु शुक्ला जी को मैं सादर आमंत्रित करती हूँ।
1: बहुत बहुत धन्यवाद दीपशिखा जी, और मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूँ आकाशवाणी दिल्ली का। और जैसा कि बहुत ही खूबसूरत शाम ये रही, हमारे बीच में जो भी कवि कवित्री जुड़े उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी कविताएं पढ़ी, और जैसा कि मुझे आमंत्रण दिया गया है, और मैं माँ हिंदी को समर्पित अपनी चार पंक्तियां देता हूँ, यहाँ से शुरुआत करता हूँ, सुनिएगा। है शब्द शब्द अर्थपूर्ण, पंक्तियों में सार है, शाश्वत है मात्राएं, व्याकरण अपार है, गद्य पद्य काव्य सब माँ हिंदी के प्रारूप हैं, पर्याय संधि अलंकार सब हिंदी के श्रृंगार हैं, सब हिंदी के श्रृंगार हैं। ये मेरी पंक्तियां माँ हिंदी को समर्पित। और अब मैं सीधे सीधे आपको अपने गीत से जोड़ता हूँ, इस गीत को सुने। मैं

0: अच्छा
1: लो आज अभी कह देता हूँ मेरी जान, मैं तुझ पे मरता
0: बहुत
1: हूँ।
0: बहुत बहुत
1: बहुत
0: ही
1: बहुत
0: बढ़िया।
1: धन्यवाद, ये मेरा गीत था। और आइए अब मैं आपको सीधे द्वापर से जोड़ता हूँ। ये कटाक्ष सुने जो राधा जी का एक कटाक्ष है कन्हैया के लिए। कृष्ण कृष्ण जपती है विरहा में तपती है, ऐसी मेरी राधा रानी दुख नामा लाल है। कृष्ण कृष्ण जपती है विरहा में तपती है, ऐसी मेरी राधा रानी दुख नामा लाल है। अविरल हर पल छलिया को छल छल उत्तर भी जानती है, फिर भी सवाल
0: वाह
1: है।
0: क्या बात
1: क्या सवाल है? सवाल ऐसा पूछती है माधव उससे जूझती है, कारी कारी अखियों में लाली माँ बवाल
0: वाह
1: है।
0: बहुत सुंदर।
1: भाग्य खुद लिखते हो भाग्य में ही दिखते हो, भाग्य से ही हारी हूं मैं कैसा ये कमाल है।
0: क्या बात
1: भाग्य
0: है
1: भाग्य से ही हारी हूं मैं कैसा ये कमाल
0: क्या बात
1: है।
0: क्या बात।
1: बहुत
0: अच्छा
1: बहुत धन्यवाद। मेरे माधव को अक्सर सुनिएगा जो क्या कहते हैं त्रिलोक के स्वामी राधा जी से। राधे।

0: बहुत
1: और
0: अच्छा
1: एक बहुत छोटी सी अपनी एक कविता के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ,
0: जी।
1: और ये कविता आज के परिप्रेक्ष्य में जो भी हमारे बीच में घटित हो रहा है महिलाओं के साथ में, उसके ऊपर मैंने ये कविता लिखी है। और आज के परिवेश में महिलाओं को क्या करना चाहिए, इस कविता के अंत में आपको ये सुनाई देगा। इसका शीर्षक है चूड़ियां गई भाड़ में। इस कविता को सुनिएगा। कुछ नहीं बदला युगों से हर तरफ शैतान है, कुछ नहीं बदला युगों से हर तरफ शैतान है, भेष मानुष का धरे हैं कर्म से हैवान है। जानकी भी त्रस्त थी त्रेता युगी अब कर्म से, द्रौपदी अल्पवस्त्र थी द्वापरी दुष्कर्म से। कलयुगी इस दौर में केशव कहां से लाओगे, लुट चुकी अस्मत धरा की क्या नवतलक दी जाओगे। वेद विद्या सब है मिथ्या, ज्ञान का ना मोल है, गर आत्मा अमृत तू साधे

0: यह भी अनमोल है। न्याय घुट घुट मर रहा इन शकनियों की आड़ में, न्याय घुट घुट मर रहा इन शकनियों की आड़ में, तुम खुद सुदर्शन साध लो अब चूड़ियां गई भाड़ में। तुम ही
1: अरे
0: दुर्गा शक्ति भी हो, तुम ही दुर्गा शक्ति भी हो, बेवजह क्यों मौन हो तुम, प्राण देह से खींच लो अब और बताओ कौन हो तुम, और
1: बात
0: बताओ
1: अच्छी
0: कौन
1: है,
0: हो
1: बहुत
0: तुम।
1: सुंदर।
0: आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और मैं आकाशवाणी दिल्ली को बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। आज हमारे बीच में हमने बहुत ही खूबसूरत कविताएं सुनी, बहुत ही खूबसूरत गीत सुने, और आज हमारे बीच में जो उपस्थित थे देश के सुप्रसिद्ध कवि कवित्री डॉक्टर ऋषि कुमार मौर्या जी, दीप शिखा श्रीवास्तव दीप जी और डॉक्टर सलोनी चावला जी, आप सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद अपनी कविताओं से, अपने गीतों से, अपनी रचनाओं से श्रोताओं के दिल में उतरने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।
1: बहुत बहुत शुक्रिया
0: धन्यवाद।
1: जी। अभी आप कवि गोष्ठी सुन रहे थे। गोष्ठी का संचालन कर रहे थे युवा कवि हिमांशु शुक्ला। इसी के साथ कवि गोष्ठी का ये अंक अब यहीं संपन्न होता है। प्रस्तुति सहयोग था वंदना का और प्रस्तुतकर्ता थे श्रवण मीणा।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। अभी आपने कार्यक्रम कवि की गोष्ठी का आनंद लिया और अब से कुछ ही देर बाद यानी कि 8:30 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम। 8:45 पर समय होगा समाचार संध्या का और ठीक 9:00 आप सुनेंगे इवनिंग न्यूज़। 9:15 पर आप उर्दू में खबरें सुन सकते हैं और आज 9:30 पर आप सुनेंगे रेडियो नाटक पगली। कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। 8:30 हो चुके हैं और ये समय है कार्यक्रम फिल्म संगीत का और इस कार्यक्रम में आज मैं हूं आपके साथ तलत। तो शुरुआत करते हैं एक बेहतरीन गीत के साथ जो लिया गया है फिल्म फुकरे से और इस गीत को गाया है सोना महापात्रा ने।

नए को पुराना और पुराने को फिर से थोड़ा सा नया कर देने में जो मज़ा है ना, और जो उसकी एक ताजगी बनी रहती है वो ज़बरदस्त है। जैसे इस गीत के जो बोल थे वो बहुत ज़बरदस्त थे, कहीं उसमें पीछे फोक म्यूज़िक जो है, फोक गीत जो है, जो लोकगीत हैं उसका टच था, लेकिन जो म्यूज़िक था वो आज के दौर का था। तो दोनों को फ्यूजन कर गया कमाल। और अगला गीत जो है वो है सुखविंदर सिंह की आवाज़ में और फिल्म है एक था टाइगर।

और अब इस कार्यक्रम का अंतिम गीत आप सुनेंगे अब से कुछ ही देर बाद। अब मुझे दीजिए इजाजत, आपसे फिर मुलाकात होगी हमारे अगले कार्यक्रम में जो होगा 11:10 पर। कार्यक्रम होगा आपकी फरमाइश, तो मिलते हैं कुछ ही देर में, सुनते हैं ये आखिरी गीत जो है फिल्म चमेली से।

0: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, DRM 810 किलोहर्ट्स पर। 8:45 होने को हैं और अब से कुछ ही देर बाद आप सुनेंगे समाचार संध्या। कृपया समाचारों की प्रतीक्षा कीजिए। नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं जया भारती। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बढ़ती प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए मजबूत जलवायु कार्रवाई और वैश्विक सहयोग का आह्वान किया। उन्होंने नई दिल्ली में पर्यावरण और जलवायु गतिशीलता के भविष्य विषय पर सम्मेलन को संबोधित किया। भारत और जापान के वायुसेना प्रमुखों ने जोधपुर में संयुक्त हवाई अभ्यास के दौरान तेजस विमानों से उड़ान भरी। वायुसेना प्रमुख AP सिंह ने कहा, भारतीय धरती पर जापानी लड़ाकू विमान का पहला ऑपरेशन रक्षा संबंधों में महत्वपूर्ण उपलब्धि। वाराणसी में उत्तर प्रदेश आतंकवाद निरोधक दस्ते के साथ मुठभेड़ में 30 लाख रूपये का इनामी नक्सल कमांडर मारा गया। यूक्रेन ने रूस पर अब तक का सबसे बड़ा ड्रोन हमला किया। मॉस्को सहित रूस के विभिन्न इलाकों में 1000 से अधिक ड्रोन दागे, एक तेल शोधन संयंत्र को भी निशाना बनाया। और एशियाई खेलों में भारत ने निशानेबाजी में 2 रजत पदक जीते। महिला क्रिकेट टीम फाइनल और बैडमिंटन टीम क्वार्टर फाइनल में पहुंची। वहीं पुरुष और महिला हॉकी टीमों ने जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत की। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि हाल के दिनों में आई कई प्राकृतिक आपदाओं से स्पष्ट है कि जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने के लिए ठोस प्रयास जरूरी हैं। नई दिल्ली में पर्यावरण और जलवायु गतिशीलता के भविष्य विषय पर आयोजित सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि वैश्विक वैज्ञानिक समुदाय जलवायु जोखिम को लेकर गंभीर चेतावनी दे रहा है।
1: हाल के समय में हुई अनेक प्राकृतिक आपदाओं ने यह स्पष्ट किया है कि क्लाइमेट इम्पैक्ट्स को कम करने के लिए सशक्त क्लाइमेट एक्शन करना आवश्यक है। विश्व का वैज्ञानिक समुदाय चेतावनी दे रहे हैं कि क्लाइमेट रिस्क बहुत गंभीर हो चुका है। इनकी यथासंभव रोकथाम और सामना करने के लिए स्थानीय, क्षेत्रीय और वैश्विक सभी स्तर पर स्टेक होल्डर्स के बीच सक्रिय सहयोग की सुदृढ़ आवश्यकता है।
0: राष्ट्रपति ने कहा कि जलवायु परिवर्तन से जैव विविधता में कमी, जल संकट और भूमि क्षरण जैसी समस्याएं बढ़ रही हैं।
1: क्लाइमेट चेंज मानव अस्तित्व के अनेक स्तरों पर असंतुलन पैदा करता है। बायोडायवर्सिटी लॉस, वाटर स्ट्रेस और लैंड डिग्रेडेशन इससे गहराई से जुड़े हैं। वाटर स्ट्रेस वाले क्षेत्रों में फार्म पॉन्ड्स स्थानीय समुदाय के लिए अत्यंत उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं। ये न केवल वर्षा जल को खेतों में रखने के लिए अपितु सिंचाई के लिए समय पर जल उपलब्ध कराते हैं।

0: इनसे भूजल भी रिचार्ज होता है।
1: राष्ट्रपति ने पर्यावरण संबंधी कानूनी मामलों में राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की भूमिका की भी सराहना की। उन्होंने कहा कि न्यायाधिकरण ने बड़ी संख्या में मामलों का तेजी से निपटारा किया है और नदियों, वायु गुणवत्ता तथा कचरा प्रबंधन से जुड़े मामलों में प्रभावी अनुपालन व्यवस्था विकसित की है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पर्यावरण संरक्षण में आम लोगों और युवाओं की भागीदारी की सराहना करते हुए कहा कि मिशन लाइफ के जरिए पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा मिला है। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल, सर्वोच्च न्यायालय की न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के अध्यक्ष न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने भी सम्मेलन को संबोधित किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल से गुजरात के 3 दिन के दौरे पर रहेंगी। वे मंगलवार को एकता नगर केवड़िया में 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार वितरण समारोह में विजेताओं को सम्मानित करेंगी। राष्ट्रपति बुधवार को वडोदरा में महाराजा सयाजीराव विश्वविद्यालय के 75वें वार्षिक दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन मंगलवार को नई दिल्ली में 9वें भारत अंतर्राष्ट्रीय जल सप्ताह का उद्घाटन करेंगे। 5 दिन के इस आयोजन का विषय है जलवायु अनुकूल जल प्रबंधन। 22 से 25 सितंबर तक अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी का आयोजन भी किया जाएगा। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह और जापान के वायु आत्मरक्षा बल के प्रमुख जनरल ताकेहिरो मोरिता ने आज जोधपुर में भारत के स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस में एक साथ उड़ान भरी। दोनों देशों के वायुसेना प्रमुखों की ये उड़ान जोधपुर में चल रहे संयुक्त हवाई अभ्यास वीर गार्जियन 2026 के दौरान हुई है। ये पहला अवसर है जब किसी द्विपक्षीय अभ्यास के तहत जापानी लड़ाकू विमान भारत की धरती से उड़ान भर रहे हैं। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने इसे भारत जापान रक्षा संबंधों में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। उन्होंने कहा कि भारतीय धरती पर जापानी लड़ाकू विमान का पहला ऑपरेशन रक्षा संबंधों में महत्वपूर्ण साबित होगा।
2: The Japanese fighters have operating from Indian soil for the first time.
3: जापानी लड़ाकू विमानों का पहली बार भारतीय धरती से संचालन हमारे दोनों देशों के संबंधों के इतिहास में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। मुझे तरंग शक्ति 2024 का समय बहुत स्पष्ट रूप से याद है। उस समय आपकी टीम यहाँ आई थी, मैं वाइस चीफ के रूप में आया था और मैंने उन सभी से मुलाकात की थी, लेकिन दुर्भाग्यवश दक्षिण पूर्व एशिया के कुछ हिस्सों में खराब मौसम की वजह से आपके विमान यहाँ नहीं आ सके थे और समय हम ये अवसर गंवा बैठे, लेकिन मुझे बहुत खुशी है कि इस बार हम उस अवसर की भरपाई कर पाए हैं। ये दोनों देशों के बीच विशेष रणनीतिक और व्यापक साझेदारी के बढ़ते हुए आयाम को दर्शाता है।
1: उधर जापानी वायुसेना प्रमुख जनरल मोरिता ने भारतीय मेहमान नवाजी की प्रशंसा की और तेजस को भारत के मेक इन इंडिया अभियान तथा तकनीकी नवाचार का एक बेहतरीन प्रतीक बताया। 9 सितम्बर से शुरू हुआ वीर गार्जियन अभ्यास 22 सितंबर तक चलेगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
4: ध्यान दें, आपकी मेहनत को राष्ट्रीय पहचान, पशुपालन क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने और नवीन प्रौद्योगिकी प्रथाओं को अपनाने वालों को भारत सरकार का पशुपालन एवं डेयरी विभाग प्रदान करता है राष्ट्रीय सम्मान। आज ही नामांकन करें राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 के लिए। इस पुरस्कार के लिए 3 श्रेणियों में होता है चयन, सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान, सर्वश्रेष्ठ डेयरी सहकारी समिति और सर्वश्रेष्ठ AI तकनीशियन। उत्तर पूर्वी क्षेत्र और हिमालयी राज्यों के लिए विशेष पुरस्कार का प्रावधान। नामांकन की तिथि 10 अगस्त से 30 सितंबर 2026 तक, तो देर किस बात की। आज ही आवेदन करें www.awards.gov.in पर या संपर्क करें नजदीकी CSC केंद्र पर। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 पशुपालन एवं डेयरी विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। उत्तर प्रदेश आतंकवाद निरोधक दस्ता ATS ने आज वाराणसी में बड़ी कार्रवाई करते हुए झारखंड के प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन तृतीय प्रस्तुति समिति TPC के प्रमुख ब्रजेश गंजू उर्फ गोपाल सिंह भोक्ता को मुठभेड़ में मार गिराया। हमारी संवाददाता ने बताया है कि ब्रजेश गंजू की गिरफ्तारी पर झारखंड पुलिस और राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA ने कुल 30 लाख रुपये का इनाम घोषित किया था।
5: ब्रजेश गंजू करीब 2 दशक से फरार था। उसके खिलाफ हत्या, हत्या के प्रयास, अपहरण, रंगदारी, आगजनी, आपराधिक साजिश और सरकारी कर्मचारियों पर हमले समेत 50 से अधिक मामले दर्ज थे। इनमें नागरिकों और पुलिसकर्मियों की कथित हत्या के मामले भी शामिल हैं। पुलिस

0: महानिदेशक राजीव कृष्ण ने मुठभेड़ में शामिल एटीएस टीम के लिए 2 लाख रुपए के इनाम की घोषणा की है। बृजेश गंजू पर घोषित 30 लाख रुपए के इनाम में झारखंड पुलिस ने 25 लाख और एनआईए ने 5 लाख रुपए की राशि रखी थी। महवेश रहमान की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से करिश्मा राय।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष पूरे हो रहे हैं। जनसेवा से देश सेवा के मंत्र के साथ उनकी ये यात्रा लगातार जारी है। सेवा और सुशासन के इसी संकल्प के साथ सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में लगातार काम कर रही है। समावेशी विकास और समाज के सशक्तिकरण पर जोर दिया जा रहा है, जिससे लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव आ रहे हैं। इसी कड़ी में आज हमारी विशेष श्रृंखला में हम बात करेंगे भारत मंडपम और यशोभूमि जैसे अत्याधुनिक सम्मेलन और प्रदर्शनी केंद्रों की। इन केंद्रों में देश विदेश के बड़े सम्मेलन, प्रदर्शनियां और अन्य महत्वपूर्ण कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। ये आधुनिक परिसर भारत के मजबूत होते बुनियादी ढांचे और वैश्विक स्तर पर बढ़ती उसकी क्षमता को दर्शाते हैं।
2: भारत मंडपम और यशोभूमि भारत के विश्व स्तरीय प्रदर्शनी सह सम्मेलन परिसर हैं। इन्हें भारत को माइस यानी मीटिंग्स, इंसेंटिव्स, कॉन्फ्रेंस और एग्जीबिशन के क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर अग्रणी बनाने के उद्देश्य से तैयार किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सितंबर 2023 में नई दिल्ली के द्वारका में यशोभूमि का उद्घाटन किया था। इसके कन्वेंशन सेंटर में मुख्य सभागार, ग्रैंड बॉल रूम और 13 बैठक कक्ष समेत कुल 15 कन्वेंशन कमरे हैं। इनमें एक साथ करीब 11,000 प्रतिनिधियों के बैठने की क्षमता है। भारत मंडपम को प्रधानमंत्री ने जुलाई 2023 में राष्ट्र को समर्पित किया था। यहाँ G20 शिखर सम्मेलन और हाल ही में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन जैसे महत्वपूर्ण वैश्विक कार्यक्रम आयोजित किए जा चुके हैं। भारत मंडपम के बहुउद्देशीय हॉल और प्लेनरी हॉल में कुल 7,000 लोगों के बैठने की क्षमता है। यह क्षमता ऑस्ट्रेलिया के प्रसिद्ध सिडनी ओपेरा हाउस की बैठने की क्षमता से भी अधिक है। भारत मंडपम के उद्घाटन के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि यह प्रदर्शनी सह सम्मेलन केंद्र देश में कॉन्फ्रेंस टूरिज्म को बढ़ावा देगा। उन्होंने कहा था कि इससे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शकों को भी सुविधा मिलेगी।
3: भारत मंडपम देश विदेश के बड़े बड़े एग्जीबिटर्स को मदद करेगा। भारत मंडपम देश में कॉन्फ्रेंस टूरिज्म का बहुत बड़ा जरिया बनेगा। भारत मंडपम हमारे स्टार्टअप की शक्ति को शोकेस करने का माध्यम बनेगा। भारत मंडपम हमारे सिनेमा जगत, हमारे आर्टिस्ट के परफॉर्मेंस का साक्षी बने। भारत मंडपम हमारे हस्तशिल्पियों, कारीगरों, बुनकरों के परिश्रम को प्लेटफॉर्म देने का एक महत्वपूर्ण माध्यम बनने वाला है।
2: आज भारत मंडपम और यशोभूमि दोनों ही देश में कॉन्फ्रेंस टूरिज्म के सबसे बड़े केंद्रों के रूप में उभर चुके हैं। सुपर्णा सैकिया के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: भारतीय वायुसेना की सूर्य किरण एरोबेटिक टीम ने मेरठ में आयोजित 2 दिवसीय एयर शो में शानदार हवाई प्रदर्शन किया। टीम के 9 हॉक MK-132 विमानों ने एक साथ उड़ान भरते हुए रोमांचक प्रदर्शन किया। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने एयर शो देखा और सूर्य किरण टीम की सराहना की। उन्होंने कहा कि इस आयोजन का उद्देश्य युवाओं को सशस्त्र सेनाओं में शामिल होने के लिए प्रेरित करना है।
4: सूर्य किरण एरोबेटिक जो टीम है उसका अद्भुत साहस और भारतीय वायुसेना का पराक्रम तो दुनिया लोहा मानती है और दुनिया के 800 जगह इन्होंने शो किए हैं। हम सब प्रेरणा लेते हैं हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी से। वही मोटिवेशन भारत की सेना को हमारे रक्षा मंत्री आदरणीय राजनाथ सिंह जी का, जिनका हमेशा रहता है कि कैसे भारतीय पूरे डिफेंस सेक्टर को इंडिजिनस करना, उनको मजबूत करना।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। यूक्रेन ने रूस पर बड़ा ड्रोन हमला करते हुए मॉस्को में एक तेल शोधन संयंत्र और रिहायशी इमारत को नुकसान पहुंचाया है। यूक्रेन में बीती रात रूस पर 1,000 से अधिक ड्रोन दागे हैं, जिनमें से सैकड़ों का रुख सीधे राजधानी मॉस्को की तरफ था। मॉस्को के मेयर सर्गेई सोबियानिन ने इसे राजधानी पर अब तक का सबसे बड़ा ड्रोन हमला बताया। एक रिपोर्ट।
5: मेयर सोबियानिन के अनुसार मॉस्को क्षेत्र में हुए हमलों में 2 लोगों की मौत हुई जबकि 20 अन्य घायल हो गए। उधर रूस के रक्षा मंत्रालय का दावा है कि उनकी सेनाओं ने देश भर में 1100 यूक्रेनी ड्रोनों को मार गिराया है। इस बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की ने कहा है कि यूक्रेन ने रूस के तेल और लॉजिस्टिक्स ठिकानों को निशाना बनाने के लिए कई तरह की मिसाइलों और ड्रोनों का इस्तेमाल किया। उन्होंने बताया कि इस कार्रवाई में यूक्रेन में ही बनी फ्लेमिंगो और पेलिकन मिसाइलों का भी इस्तेमाल किया गया। पिछले सप्ताह अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया के जरिए दावा किया था कि दोनों पक्ष बुनियादी ऊर्जा ढांचों पर हमला न करने के लिए सहमत हो गए हैं। इसके बावजूद रूस और यूक्रेन दोनों की तरफ से एक दूसरे के ऊर्जा संयंत्रों पर हमले अब भी लगातार जारी हैं। समाचार कक्ष से मुनीश शर्मा।
1: रूस में ये नया हमला ऐसे समय में हुआ है जब वहां 3 दिवसीय संसदीय चुनावों का आखिरी चरण जारी था। इस बीच यूरोप के वरिष्ठ अधिकारियों की चिंताएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। जापान एशियाई खेलों में भारत की एलावेलिन वलारेवन ने महिलाओं की व्यक्तिगत 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा का रजत पदक अपने नाम किया। इससे पहले भारत ने इसी प्रतियोगिता में महिला टीम स्पर्धा का रजत पदक जीता। एलावेलिन वलारेवन, सोनम मस्कर और विदर्शा विनोद की टीम ने देश को यह पदक दिलाया। उधर भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने सेमीफाइनल में बांग्लादेश को 114 रन से हराकर फाइनल में प्रवेश किया। इसके साथ ही पीवी सिंधु, उन्नति हुडा और तन्वी शर्मा की भारतीय महिला टीम ने बैडमिंटन में प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स में सुचिका तारियाल ने पारंपरिक श्रेणी के 60 किलोग्राम वर्ग के सेमीफाइनल में पहुंचकर पदक पक्का किया और हॉकी में भी भारत की महिला और पुरुष दोनों टीम ने आज अपने अपने मैच जीते। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बढ़ती प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए मजबूत जलवायु कार्रवाई और वैश्विक सहयोग का आह्वान किया। उन्होंने नई दिल्ली में पर्यावरण और जलवायु गतिशीलता के भविष्य विषय पर सम्मेलन को संबोधित किया। भारत और जापान की वायुसेना प्रमुखों ने जोधपुर में संयुक्त हवाई अभ्यास के दौरान तेजस विमानों से उड़ान भरी। वाराणसी में उत्तर प्रदेश आतंकवाद निरोधक दस्ते के साथ मुठभेड़ में 30 लाख रुपए का इनामी नक्सल कमांडर मारा गया। और एशियाई खेलों में भारत ने निशानेबाजी में 2 रजत पदक जीते। महिला क्रिकेट टीम फाइनल और बैडमिंटन टीम क्वार्टर फाइनल में पहुंची। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
6: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम निशित कुमार विद द न्यूज एट 9। The headlines. President Draupadi Murmu calls for stronger climate action and global cooperation to tackle rising natural disasters, addresses conference on future of environment and climate dynamics in New Delhi. India and Japan air chiefs take Tejas sorties during joint air exercise in Jodhpur. IAF chief AP Singh says first ever operation of Japanese fighter jet on Indian soil marks major milestone in defense ties. Naxal commander carrying 30 lakh rupee bounty killed in encounter with Uttar Pradesh anti-terrorism squad in Varanasi. Ukraine fires over 1,000 drones at Russia in largest ever attack, including hundreds at Moscow oil refinery hit. And at Asian Games, India bagged 2 silver medals in shooting. Women's cricket team reaches final and badminton team enters quarterfinal. Men's and women's hockey teams begin campaigns with wins in Japan. Now the news in detail. President Draupadi Murmu has said the increasing frequency of natural disasters in recent time underlines the urgent need for strong climate action and global cooperation to mitigate the impacts of climate change. The president was addressing the valedictory session of the 2-day conference on the future of environment and climate dynamics organized by the National Green Tribunal in New Delhi this evening.
7: हाल के समय में हुई अनेक प्राकृतिक आपदाओं ने यह स्पष्ट किया है कि क्लाइमेट इम्पैक्ट्स को कम करने के लिए सशक्त क्लाइमेट एक्शन करना आवश्यक है। विश्व का वैज्ञानिक समुदाय चेतावनी दे रहे हैं कि क्लाइमेट रिस्क बहुत गंभीर हो चुका है। इनके यथासंभव रोकथाम और सामना करने के लिए स्थानीय, क्षेत्रीय और वैश्विक सभी स्तर पर स्टेक होल्डर्स के बीच सक्रिय सहयोग की सुदृढ़ आवश्यकता है।
6: President Murmu said climate change is creating imbalances in various aspects of human life, including biodiversity, water availability, and land resources.
7: Climate change मानव अस्तित्व के अनेक स्तरों पर असंतुलन पैदा करता है। Biodiversity loss, water stress, और land डिग्रेडेशन इससे गहराई से जुड़े हैं। वाटर स्ट्रेस वाले क्षेत्रों में फार्म पॉन्ड्स स्थानीय समुदाय के लिए अत्यंत उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं। ये न केवल वर्षा जल को खेतों में रखने के लिए अपितु सिंचाई के लिए समय पर जल उपलब्ध कराते हैं, इनसे भूजल भी रिचार्ज होता है।
6: The President said a well-structured framework of policies and actions is essential to

0: Lavrin. Vidarsa Vinod and Sonam Maskar won silver in the women's 10-meter air rifle team event, while Ella Venil added another silver in the individual event. The president and prime minister have congratulated the athletes on the feat. In cricket, Indian women's team stormed into the final after a 114-run win over Bangladesh. They will take on Sri Lanka in the gold medal match on Tuesday. Suchika Tarial created history, becoming the country's first athlete to assure an Asian Games medal in mixed martial arts after reaching the women's traditional 60 kg semifinals. Indian women's badminton team advanced to quarterfinal with a 3-0 win over Kazakhstan. The men's and women's hockey teams also began campaign with big wins. Men's team defeated Indonesia 13-1 in their Pool A match, while women's team beat Uzbekistan 19-0 in their Pool B opener. The India Meteorological Department, IMD, has issued an orange color warning for very heavy rainfall over Odisha, coastal Andhra Pradesh and Telangana over the next 2 to 3 days. For Delhi, the weather agency has forecast a partly cloudy sky tomorrow. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. President Draupadi Murmu calls for stronger climate action and global cooperation to tackle rising natural disasters, addresses conference on future of environment and climate dynamics in New Delhi. India and Japan air chiefs take Tejas sorties during joint air exercise in Jodhpur. IAF chief AP Singh says first ever operation of Japanese fighter jet on Indian soil marks major milestone in defense ties. Naxal commander carrying 30 lakh rupee bounty killed in encounter with Uttar Pradesh anti-terrorism squad in Varanasi. Ukraine fires over 1,000 drones at Russia in largest ever attack, including hundreds at Moscow oil refinery hit. And at Asian Games, India bagged 2 silver medals in shooting. Women's cricket team reaches final and badminton team enters quarterfinal. Men's and women's hockey teams begin campaigns with wins in Japan. And that's all in the news at 9. Good night.
1: आदाब, ये आकाशवाणी है खबरों के साथ मैं अब्दुल वाहिद। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने कुदरती आफात के बढ़ते हुए हादसात से निपटने के लिए आबोहवा से मुतल्लिक मजबूत तर कार्रवाई और आलमी तआवुन पर जोर दिया है। उन्होंने नई दिल्ली में माहौलियात और आबोहवा के मुहर्रिकात के मुस्तकबिल से मुतल्लिक कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। भारत और जापान के फजाई सरबराहान ने जोधपुर में मुश्तरका फजाई मश के दौरान तेजस तैयारों की परवाजें की। भारतीय फजाइया के सरबराह ने कहा कि भारतीय सरजमीन से जापानी जंगजू तैयारे की अभी तक की ये पहली परवाज दिफाई ताल्लुकात में एक अहम संग मील है। एक नक्सल कमांडर जिस पर 30 लाख रुपए का इनाम था, वाराणसी में दहशतगर्दी की रोकथाम के उत्तर प्रदेश स्क्वाड के साथ एक झड़प में मारा गया। यूक्रेन ने रूस पर 1,000 से ज्यादा ड्रोन दागे हैं, जो अभी तक का सबसे बड़ा हमला है। इन हमलों में मास्को और तेल रिफाइनरी पर दागे गए सैकड़ों मिसाइल भी शामिल हैं। और एशियाई खेल मुकाबलों में भारत ने निशानेबाजी में चांदी के 2 तमगे जीते हैं। खवातीन क्रिकेट टीम फाइनल में पहुंच गई है और बैडमिंटन टीम क्वार्टर फाइनल में दाखिल हो गई है। मर्दों और खवातीन की हॉकी टीमों ने जापान में अपनी कारकर्दगी का आगाज जीत के साथ किया। और अब खबरें तफसील से। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि हालिया दिनों में बार बार रोनुमा होने वाली कुदरती आफात की वजह से आबोहवा से मुतालिक मजबूत इकदाम और आलमी तआवुन की फौरी जरूरत है, ताकि आबोहवा की तब्दीली के मुजिर असरात से निपटा जा सके। सदर जमहूरिया आज शाम नई दिल्ली में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की तरफ से मुनक़िदा माहौलियात और आबोहवा के मुहरिकात के मुस्तकबिल के बारे में 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस के इख्तितामी जलसे से खिताब कर रही थी।
2: हाल के समय में हुई अनेक प्राकृतिक आपदाओं ने यह स्पष्ट किया है कि क्लाइमेट इम्पैक्ट्स को कम करने के लिए सशक्त क्लाइमेट एक्शन करना आवश्यक है। विश्व का वैज्ञानिक समुदाय चेतावनी दे रहे हैं कि क्लाइमेट रिस्क बहुत गंभीर हो चुका है। इनकी यथासंभव रोकथाम और सामना करने के लिए स्थानीय, क्षेत्रीय और वैश्विक सभी स्तर पर स्टेक होल्डर्स के बीच सक्रिय सहयोग की सुदृढ़ आवश्यकता है।
1: सदर मुर्मू ने कहा कि आबोहवा की तब्दीली से इंसानी जिंदगी में मुख्तलिफ पहलुओं से अदम तवाजुन पैदा हो रहा है, जिनमें हयातियाती तनव्वो, पानी की दस्तियाबी और जमीनी वसाइल भी शामिल हैं।
2: क्लाइमेट चेंज मानव अस्तित्व के अनेक स्तरों पर असंतुलन पैदा करता है। बायोडाइवर्सिटी लॉस, वाटर स्ट्रेस और लैंड डिग्रेडेशन इससे गहराई से जुड़े हैं। वाटर स्ट्रेस वाले

वीर गार्डियन 2026 के तहत अंजाम दी। ऐसा पहली बार है कि जापानी फजाइया के जंगजू तैयारे इस दोतरफा मशक के तौर पर भारतीय सरजमीन पर प्रवास कर रहे हैं, जिसका मकसद दोनों मुल्कों के दरमियान दिफाई शराकत दारी में मजीद गहराई लाना है। फजाइया के सरबराह एपी सिंह ने इस मशक को भारत जापान दिफाई ताल्लुकात में एक बड़ा संग मील करार दिया है। भारतीय फजाइया के सरबराह ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि तेजस की परवास का जनरल मुरीता का फैसला भारत में तैयार करदा जंगजू तैयारे पर उनके एतमाद की एक वाजह मिसाल है। उन्होंने ये भी कहा कि भारत का फजाई शोबा तेजी से तरक्की कर रहा है, जिसमें तहकीको तरक्की और तैयारे तैयार किया जाना भी शामिल है। वीर गार्डियन 2026 मशक का आगाज 9 सितंबर को हुआ था और ये 22 सितंबर को इख्तिताम पजीर हो जाएगी। भारतीय फजाइया की सूर्य किरण एरोबेटिक टीम ने मेरठ में एक फजाई शो के तहत एक सहरंगेज कारकर्दगी का मुजाहरा किया, जिसमें 9 हॉक MK-132 सैयारों ने एक दूसरे के काफी करीब रहते हुए करतब पेश किए। दिफाई उमूर के वजीर मुमलिका संजय सेठ ने इस शो का नजारा किया और टीम की यह कहते हुए तारीफ की कि इस फजाई शो का मकसद नौजवानों को तहरीक देना है कि वो फौज में शामिल हों। ये दो रोजा फजाई शो कल शुरू हुआ था। वजारत दिफा ने बताया कि तलबा NCC कैडेट्स और नेशनल सर्विस स्कीम NSS के रजाकारों समेत 1,00,000 से ज्यादा लोगों ने इस शो का नजारा किया। एक सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब सेठ ने इस तकरीब को उसूल पसंदी, एहतियात से की जाने वाली कार्रवाई, तालमेल के साथ किए जाने वाले काम, पेशावाराना महारत का एक काबिल जिक्र इम्तिजाज और भारतीय फजाइया की शानदार सलाहियतों का एक सबूत करार दिया। उत्तर प्रदेश के इंसदाद दहशतगर्दी दस्ते ATS ने आज वाराणसी में एक बड़ी कार्रवाई के दौरान झारखंड की ममनुआ इंतहा पसंद तंजीम तृतीय प्रस्तुति कमेटी TPC के सरबराह ब्रिजेश कंझू उर्फ गोपाल सिंह भोक्ता उर्फ सरदार जी को एक एनकाउंटर में हलाक कर दिया। ब्रिजेश कंझू तकरीबन 2 दहाइयों से मफरूर था। झारखंड पुलिस और कौमी तहकीकती एजेंसी NIA ने उसके ताल्लुक से मालूमात फराहम करने पर मजमूई तौर पर 30,00,000 रुपए के इनाम का ऐलान कर रखा था। उसके खिलाफ अगवा, जबरी वसूली, आतिशजनी, मुजरमाना साजिश और सरकारी मुलाजमीन पर हमलों समेत 50 से ज्यादा मुकदमात दर्ज थे। इन मुकदमात में आम शहरियों और पुलिस अहलकारों की मुबैना हलाकतें भी शामिल थीं। डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस राजीव कृष्णा ने इस एनकाउंटर में शामिल ATS टीम के लिए 2,00,000 रुपए के इनाम का ऐलान किया है। गंजू के लिए ऐलान करदा कुल इनामी रकम में से 25,00,000 रुपए झारखंड पुलिस की जानिब से मुकर्रर किए गए थे, जबकि NIA ने 5,00,000 रुपए इनाम का ऐलान किया था। यूक्रेन ने रूस पर रात भर 1,000 से ज्यादा ड्रोन हमले किए हैं, जिसमें मास्को को निशाना बनाकर किए गए सैकड़ों ड्रोन हमले भी शामिल हैं। मास्को के मेयर सर्गेई सोबियानिन ने इसे राजधानी पर किया गया अब तक का सबसे बड़ा हमला करार दिया है और एक तेल रिफाइनरी और एक रिहायशी इमारत को नुकसान पहुंचने की भी इत्तला है। जनाब सोबियानिन ने बताया कि मास्को के वसी इलाके में इस हमले से 2 अफराद हलाक और 20 जख्मी हुए हैं। रूस की वजारत दिफा ने बताया कि उसकी फौजों ने मुल्क में 1,100 यूक्रेनी ड्रोन मार गिराए। यूक्रेन के सदर विलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि उनके मुल्क ने इस हमले में तेल और लॉजिस्टिक ठिकानों पर बहुत से मिसाइल और ड्रोन दागे थे, जिनमें यूक्रेन के अपने बनाए हुए मिसाइल भी शामिल थे। पाकिस्तानी हुकाम ने जेल में कैद साबिक वज़ीरे आज़म इमरान खान की हमशीरा अलीमा खान को आज गिरफ्तार कर लिया है। उन्हें अगले हफ्ते उनकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी PTI की तरफ से एक मनसूबा बंद एहतजाज से पहले गिरफ्तार किया गया है। अलीमा खान को लाहौर में गिरफ्तार किया गया और कोट लखपत जेल मुंतकिल किया गया। वो अपने 73 साल भाई की रिहाई के लिए मुहिम चला रही हैं, जो 2023 से कैद में हैं। लाहौर के डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली एजाज ने पंजाब में अवामी नज्म व नस्क के 1960 के हुक्म इम्तनाई के तहत उन्हें 30 दिन के लिए हिरासत में रखने का हुक्म दिया है। इस कानून के तहत हुक्काम को यह अख्तियार हासिल है कि वो ऐसे अफराद को हिरासत में ले लें जो अवामी जगहों और नज्म व नस्क के लिए खतरे का सबब बन गए हैं। खान की PTI पार्टी साबिक क्रिकेटर और सियासतदान की रिहाई के लिए हुकूमत पर दबाव बनाने के मकसद से 27 सितंबर को एक एहतजाज का मनसूबा बना रही है। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के अवामी खिदमत के 25 बरस मुकम्मल हो रहे हैं। एक ऐसा सफर जो जन सेवा से देश सेवा के मंत्र पर मबनी है और इसका सिलसिला जारी है। सेवा से सुशासन के नजरिए से तहरीक पाकर हुकूमत 2047 तक विकसित भारत के हदफ की खातिर मुसलसल काम कर रही है। आज अपनी खसूसी सीरीज में हम इस बारे में

0: मालूमात फराहम करेंगे कि भारत मंडपम और यशोभूमि जैसे जदीद तरीन और आला मेयार के कन्वेंशन और नुमाइश गाहों के जरिए इस विजन को किस तरह अमली जामा पहनाया गया है। पेश है एक रिपोर्ट।
1: भारत मंडपम और यशोभूमि भारत के आलमी मयार के नुमाइश और कन्वेंशन कॉम्प्लेक्स में जिनका मकसद भारत को माइस यानी इजलास, तरगीबात, कॉन्फ्रेंसों और नुमाइशों के शोबे में आलमी रहनुमा के तौर पर पेश करना है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने सितंबर 2023 में नई दिल्ली के द्वारका इलाके में यशोभूमि का इफ्तिताह किया था। इसमें 15 कन्वेंशन रूम्स हैं और 11,000 मंदूबीन की गुंजाइश है। वज़ीर आज़म ने जुलाई 2023 में भारत मंडपम मुल्क के लिए वक्फ किया था। भारत मंडपम में G20 सरबराह मीटिंग और हाल ही में मुनक़दा ब्रिक्स सरबराह मीटिंग जैसे अहम आलमी इज्तिमात मुनक़द हो चुके हैं। इसके शानदार हॉल में मजमूई तौर पर 7,000 अफराद के बैठने की गुंजाइश है, जो ऑस्ट्रेलिया के मशहूर सिडनी ओपेरा हाउस की गुंजाइश से भी ज्यादा है। भारत मंडपम का इफ्तिताह करते हुए वज़ीर आज़म मोदी ने कहा था कि ये कन्वेंशन सेंटर मुल्क में कॉन्फ्रेंसों से मुतालिक सियाहत को फरोग देगा।
2: भारत मंडपम देश विदेश के बड़े बड़े एग्जीबिटर्स को मदद करेगा। भारत मंडपम देश में कॉन्फ्रेंस टूरिज्म का बहुत बड़ा जरिया बनेगा। भारत मंडपम हमारे स्टार्टअप की शक्ति को शोकेस करने का माध्यम बनेगा। भारत मंडपम हमारे सिनेमा जगत, हमारे आर्टिस्ट के परफॉर्मेंस का साक्षी बने। भारत मंडपम हमारे हस्तशिल्पियों, कारीगरों, बुनकरों के परिश्रम को प्लेटफॉर्म देने का एक महत्वपूर्ण माध्यम बनने वाला है।
1: आकाशवाणी से बात करते हुए एक तालिबे इल्म ऋतिक, जिसने भारत मंडपम में मुख्तलिफ प्रोग्रामों में शिरकत की है और रजाकाराना तौर पर खिदमात अंजाम दी हैं, बताया कि इस आलमी मयार के मकाम ने भारत में तकरीबात के मंजरनामे को यकसर बदल कर रख दिया है। आज भारत मंडपम और यशोभूमि दोनों ही मुल्क में कॉन्फ्रेंस टूरिज्म के सबसे बड़े मराकज बन चुके हैं। सुपर्णा साइकिया की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं असलम बेग।
0: वज़ीर ख़ारिजा डॉक्टर एस जयशंकर अमरीका के न्यूयॉर्क में अक़वामे मुत्तहिदा जनरल असेंबली के 81वें आला सतह के इजलास के दौरान भारतीय वक्त की क़यादत करेंगे। वज़ीर ख़ारिजा इस माह की 26 तारीख को अक़वामे मुत्तहिदा जनरल असेंबली के 81वें इजलास के आला सतह के सेशन से खिताब करेंगे। अपने दौरे के दौरान डॉक्टर जयशंकर मुख्तलिफ कसीर जहती और दो तरफ़ा मीटिंगों में भी शिरकत करेंगे। जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली का मौसम खजां का सेशन कल से श्रीनगर में शुरू हो रहा है। 10 रोज़ा सेशन 7 इजलास के साथ 30 सितंबर तक जारी रहेगा। सेशन के दौरान हुकूमत मुख्तलिफ कानूनी तजावीज़ पेश करेगी, जिसमें GST से मुतलिक तजावीज़, बल्दियाती हुकूमत और तजारत के तरीक़ेकार शामिल हैं। आज मुल्क भर में संकल्प समारोह का इनेकाद किया गया, जो 100 हफ्ते के नशा मुक्त युवा अभियान के हिस्से के तौर पर था। अभियान का मकसद एक तरक्की याफ्ता भारत के लिए नशे से पाक एक नौजवान बिरादरी तैयार करना था। नौजवानों और खेलकूद की वजारत ने बताया कि इस मुहिम में नौजवानों ने सरगर्म हिस्सा लिया और पूरे मुल्क में 1067 जगहों पर प्रोग्राम मुनक़िद किए गए। भारत के महकमे मौसमियात IMD ने ओडिशा, साहिली आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में अगले 2-3 रोज के लिए शदीद से शदीद तर बारिश की पेशगोई करते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। महकमे मौसमियात ने छत्तीसगढ़, मगरबी बंगाल के गंगा के इलाके, कर्नाटक, कोंकण और गोवा, मध्य महाराष्ट्र और शुमाल मशरक के कुछ हिस्सों में भी शदीद बारिश की पेशगोई की है। जापान के शिनोगोया में जारी एशियन गेम्स के आज इफ्तिताही दिन भारत ने चांदी के 2 तमगे जीतकर एक मजबूत शुरुआत की है। 3 खिलाड़ियों की टीम दर्सा विनोद, एलवेनिल वेलवीरा और सोनम मास्कर ने खवातीन के 10 मीटर एयर राइफल मुकाबले में चांदी का तमगा जीता है, जबकि एलवेनिल ने भी इनफरादी मुकाबले में एक और चांदी का तमगा हासिल किया। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने खिलाड़ियों को इस कारकर्दगी पर मुबारकबाद दी है। क्रिकेट में भारतीय खवातीन टीम ने गोल्ड मेडल मैच में बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए बांग्लादेश से 114 रन से जीत हासिल की है। शिफाली वर्मा ने अपने T20 इंटरनेशनल का पहला सेंचुरी 49 गेंदों पर 100 रन बनाई। स्मृति मंधाना ने 19 गेंदों पर 37 रन बनाया। भारत ने 4 विकेट पर 195 रन बनाकर बांग्लादेश को 81 रन पर आउट कर दिया। फाइनल मैच भारत और श्रीलंका के दरमियान मंगल के रोज खेला जाएगा। सुचिका त्रियाल एशियन गेम्स में खवातीन के रवायती 60 किलोग्राम के सेमीफाइनल में पहुंचकर मुल्क की पहली एथलीट बनकर तारीख रकम की है। भारतीय खवातीन की बैडमिंटन टीम कजाकिस्तान से 3-0 से जीत हासिल करके क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। हॉकी में मर्दों और खवातीन दोनों टीमों ने एक बड़ी जीत के साथ शुरुआत की है। मर्दों की टीम ने इंडोनेशिया

को पूल ए के मैच में 13-1 से शिकस्त दी, जबकि खवातीन टीम ने अपने पूल बी में उज्बेकिस्तान को 19-0 से शिकस्त दी। टेबल टेनिस में भारतीय खवातीन टीम ने इंडोनेशिया को 3-0 से और सिंगापुर को 3-2 से, जबकि मर्दों की टीम ने इंडोनेशिया को 3-0 से शिकस्त दी, लेकिन ईरान से 0-3 से हार गई। आखिर में खास खास खबरें एक मरतबा फिर। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने कुदरती आफात के बढ़ते हुए हादसात से निपटने के लिए आबो हवा से मुतल्लिक मजबूत तर कार्रवाई और आलमी ताबुन पर जोर दिया है। उन्होंने नई दिल्ली में माहौलियात और आबो हवा के मुहर्रिकात के मुस्तकबिल से मुतल्लिक कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। भारत और जापान के फजाई सरबराहान ने जोधपुर में मुश्तरका फजाई मशक के दौरान तेजस तैयारों की परवाजें की। भारतीय फजाइया के सरबराह ने कहा कि भारतीय सरजमीन से जापानी जंगजू तैयारे की अभी तक की पहली परवाज दिफाई ताल्लुकात में एक अहम संग मील है। एक नक्सल कमांडर जिस पर 30 लाख रुपए का इनाम था, वाराणसी में दहशतगर्दी की रोकथाम के उत्तर प्रदेश स्क्वाड के साथ एक झड़प में मारा गया। यूक्रेन ने रूस पर 1000 से ज्यादा ड्रोन दागे हैं, जो अभी तक का सबसे बड़ा हमला है। और एशियाई खेल मुकाबलों में भारत ने निशानेबाजी में चांदी के 2 तमगे जीते हैं। खवातीन की क्रिकेट टीम भी फाइनल में पहुंच गई है। इसी के साथ खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ।

समझी। अरमानों के खुले दरीचे आजा जरा सिमट के, हो गया दिल का पुर्जा पुर्जा लगे 85 झटके। हट तेरा।

0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि हाल के दिनों में आई कई प्राकृतिक आपदाओं से स्पष्ट है कि जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने के लिए ठोस प्रयास जरूरी हैं। नई दिल्ली में पर्यावरण और जलवायु गतिशीलता के भविष्य विषय पर आधारित सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि वैश्विक वैज्ञानिक समुदाय जलवायु जोखिम को लेकर गंभीर चेतावनी दे रहा है।
1: हाल के समय में हुई अनेक प्राकृतिक आपदाओं ने यह स्पष्ट किया है कि क्लाइमेट इम्पैक्ट्स को कम करने के लिए सशक्त क्लाइमेट एक्शन करना आवश्यक है। विश्व का वैज्ञानिक समुदाय चेतावनी दे रहे हैं कि क्लाइमेट रिस्क बहुत गंभीर हो चुका है। इनकी यथासंभव रोकथाम और सामना करने के लिए स्थानीय, क्षेत्रीय और वैश्विक सभी स्तर पर स्टेक होल्डर्स के बीच सक्रिय सहयोग की सुदृढ़ आवश्यकता है।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से गुजरात के 3 दिन के दौरे पर रहेंगी। वे मंगलवार को एकतानगर केवड़िया में 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार वितरण समारोह के विजेताओं को सम्मानित करेंगी। राष्ट्रपति बुधवार को वडोदरा में महाराज सयाजीराव विश्वविद्यालय के 75वें वार्षिक दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन कल नई दिल्ली में 9वें भारत अंतर्राष्ट्रीय जल सप्ताह का उद्घाटन करेंगे। 5 दिन के इस आयोजन का विषय है जलवायु अनुकूल जल प्रबंधन। 22 से 25 सितंबर तक अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी का भी आयोजन किया जाएगा। उत्तर प्रदेश आतंकवाद निरोधक दस्ता ATS ने वाराणसी में बड़ी कार्रवाई करते हुए झारखंड के प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन तृतीय प्रस्तुति समिति TPC के प्रमुख ब्रजेश गंझू उर्फ गोपाल सिंह भोक्ता को मुठभेड़ में मार गिराया। ब्रजेश गंझू की गिरफ्तारी पर झारखंड पुलिस और राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA ने कुल 30 लाख रुपए का इनाम घोषित किया था। दिल्ली कैंट विधानसभा क्षेत्र के निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी के कार्यालय ने साफ किया है कि भारत के चुनाव आयुक्त डॉ. सुखबीर सिंह संधु द्वारा दी गई जानकारी, तथ्यों और दस्तावेजों की ठीक से जांच कर ली गई है। एक प्रेस नोट में निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी ने कहा कि डॉ. संधु की वोटर लिस्ट एंट्री को मंजूरी दे दी गई है और इसे विधानसभा क्षेत्र 38 दिल्ली कैंट की फाइनल वोटर लिस्ट में शामिल करने के लिए बरकरार रखा गया है। यूक्रेन ने रूस पर बड़ा ड्रोन हमला करते हुए मॉस्को में एक तेल शोधन संयंत्र और रिहायशी इमारत को नुकसान पहुंचाया है। यूक्रेन ने रूस पर 1000 से अधिक ड्रोन दागे हैं, जिनमें से सैकड़ों का रुख सीधे राजधानी मॉस्को की तरफ था। मॉस्को के मेयर सरगई सोबियानिन ने इसे राजधानी पर अब तक का सबसे बड़ा ड्रोन हमला बताया है। रूस में यह नया हमला ऐसे समय हुआ है जब वहां 3 दिवसीय संसदीय चुनावों का आखिरी चरण जारी था। समरकंद में चल रहे 46वें शतरंज ओलंपियाड के 5वें राउंड में आर प्रज्ञानंद और डी गुकेश ने अनिश गिरी और इरविन अलामी के खिलाफ अहम जीत हासिल की, जिससे भारत ने नीदरलैंड्स पर 3-1 से जीत पक्की कर ली है। लेकिन भारतीय महिला टीम को पोलैंड से हार का सामना करना पड़ा। ओपन कैटेगरी में आर प्रज्ञानंद और डी गुकेश की शानदार जीत की बदौलत भारत ने नीदरलैंड्स पर 3-1 से अहम जीत दर्ज की। दूसरी ओर महिला टीम को पोलैंड के हाथों 1.5-2.5 से हार का सामना करना पड़ा, क्योंकि आर वैशाली को अलेक्जेंड्रा माल्टसेवस्किया ने हरा दिया। अवंतिका अग्रवाल, दिव्या देशमुख और केनेरो हम्फी के मैच ड्रॉ रहे। इस बीच उज्बेकिस्तान की टीम ने जबरदस्त खेल दिखाते हुए 8वीं वरीयता प्राप्त हंगरी को 4-0 से हराया। अब उज्बेकिस्तान, जर्मनी और भारत तीनों ही 10-10 मैच पॉइंट्स के साथ टॉप पर हैं। जापान एशियाई खेलों में भारत की एलाविनेल वलारिवन ने महिलाओं की व्यक्तिगत 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा का रजत पदक अपने नाम किया। इससे पहले भारत ने इसी प्रतियोगिता में महिला टीम स्पर्धा का रजत पदक जीता था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय आशीष इब्राहिम।

ये आकाशवाणी दिल्ली का एयरलाइन न्यूज 24/7 चैनल है। स्टूडियो की घड़ी में रात के 1:10

सेकंड हुए हैं। श्रोताओं, ये वक्त है कार्यक्रम गीत सुनहरे का। आज के गीत सुनहरे कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ, आपकी अपनी सरिता। लाई हूं आपके लिए बेहतरीन, खूबसूरत गोल्डन एरा के वो गीत जो हमेशा हमारे दिलों पर राज करते हैं। तो कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं फिल्म आई मिलन की बेला। आवाजें हैं मोहम्मद रफी और आशा भोसले की। संगीत दिया है शंकर जयकिशन ने।

आप सुन रहे गीत सुनहरे कार्यक्रम। गीतों की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए लीजिए सुनते हैं अगला गीत लता मंगेशकर की आवाज में। संगीत दिया है मदन मोहन ने और फिल्म का नाम है वो कौन थी।

अभी आपने सुना आशा भोसले की आवाज में ये गीत। इसे सुनते हैं अगला गीत फिल्म रूप सुंदरी से। आवाजें हैं सुमन कल्याणपुर की।

अभी आप सुने, आपने सुना जहां आरा फिल्म का ये गीत लता मंगेशकर और आयशा भोसले की आवाज में। नीचे सुनते हैं अगला गीत, आवाजें हैं मोहम्मद रफी और आयशा भोसले की। ओपी नैयर का संगीत है, गीतकार हैं SH बिहारी। फिल्म का नाम है कश्मीर की कली।

लीजिए सुनते हैं अगला गीत फिल्म संगम से। संगीत दिया है शंकर जयकिशन ने और गीतकार है शैलेंद्र। आवाजें हैं मुकेश और लता मंगेशकर की।

0: तो मोहम्मद रफ़ी और उषा तिमोंती की आवाज़ के साथ ही ये गीत सुनाए कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। हमें जाने की इजाज़त दीजिए, नमस्कार। ये आकाशवाणी दिल्ली का एयर लाइव न्यूज़ 24/7 चैनल है। रात के 2 बजने को हैं, अब समाचार होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं पूनम आहूजा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि हाल के दिनों में आई कई प्राकृतिक आपदाओं से स्पष्ट है कि जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने के लिए ठोस प्रयास जरूरी है। नई दिल्ली में पर्यावरण और जलवायु गतिशीलता के भविष्य विषय पर आयोजित सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि वैश्विक वैज्ञानिक समुदाय जलवायु जोखिम को लेकर गंभीर चेतावनी दे रहा है।
2: हाल के समय में हुई अनेक प्राकृतिक आपदाओं ने यह स्पष्ट किया है कि क्लाइमेट इम्पैक्ट्स को कम करने के लिए सशक्त क्लाइमेट एक्शन करना आवश्यक है। विश्व का वैज्ञानिक समुदाय चेतावनी दे रहे हैं कि क्लाइमेट रिस्क बहुत गंभीर हो चुका है, इनकी यथासंभव

0: रोकथाम और सामना करने के लिए स्थानीय क्षेत्रीय और वैश्विक सभी स्तर पर स्टेक होल्डर्स के बीच सक्रिय सहयोग की सुदृढ़ आवश्यकता है।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से गुजरात के 3 दिन के दौरे पर रहेंगी। वे मंगलवार को एकता नगर केवड़िया में 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार वितरण समारोह में विजेताओं को सम्मानित करेंगी। राष्ट्रपति बुधवार को वडोदरा में महाराजा सयाजीराव विश्वविद्यालय के 75वें वार्षिक दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन कल नई दिल्ली में 9वें भारत अंतर्राष्ट्रीय जल सप्ताह का उद्घाटन करेंगे। 5 दिन के इस आयोजन का विषय है जलवायु अनुकूल जल प्रबंधन। 22 से 25 सितंबर तक अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी का भी आयोजन किया जाएगा। उत्तर प्रदेश आतंकवाद निरोधक दस्ता एटीएस ने वाराणसी में बड़ी कार्रवाई करते हुए झारखंड के प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन तृतीय प्रस्तुति समिति टीपीसी के प्रमुख ब्रजेश गंझू उर्फ गोपाल सिंह भोक्ता को मुठभेड़ में मार गिराया। ब्रजेश गंझू की गिरफ्तारी पर झारखंड पुलिस और राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने कुल 30 लाख रुपए का इनाम घोषित किया था। नागालैंड में निर्वाचन आयोग की वोटर लिस्ट की स्पेशल इंसेंटिव रिवीजन एसआईआर प्रक्रिया के तहत 16 अगस्त से 14 सितंबर तक चले मतदाता गणना चरण में 88.38% मतदाता गणना फॉर्म जमा किए गए। एसआईआर से पहले के 13,97,208 मतदाताओं में से कुल 11,99,456 मतदाताओं ने अपने मतदाता गणना फॉर्म जमा किए। इस गणना प्रक्रिया में 28,944 मृत मतदाताओं की पहचान की गई, जबकि 1,23,749 मतदाताओं की अनुपस्थिति कहीं और चले गए या अन्य श्रेणी में रखा गया। इसके अलावा 5,059 मतदाता एक से ज्यादा जगहों पर पंजीकृत पाए गए। इस प्रक्रिया के बाद आज ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी की गई है, जिसमें सर्विस वोटर सहित 12,06,457 मतदाता शामिल हैं। हेती के राष्ट्रपति जोवेनेल मोइस की जुलाई 2021 में हुई हत्या के मामले में गिरफ्तार किए गए 18 संदिग्धों को रविवार को अमेरिका को प्रत्यर्पित किया गया। इसके साथ ही हैती में चल रही लंबी कानूनी प्रक्रिया खत्म हो गई। इस हत्या ने कैरिबियन देश को हिलाकर रख दिया था। फ्लोरिडा के दक्षिणी जिले के अमरीकी अटॉर्नी रेडिंग क्विनोस ने के मुताबिक इन संदिग्धों पर फ्लोरिडा में मुकदमा चलेगा। उन्होंने कहा कि एफबीआई और अन्य एजेंसियां ये पक्का करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं कि देश के प्रमुख की हत्या से फायदा उठाने की कोशिश करने वाले सभी लोगों को पूरी तरह जवाबदेह ठहराया जाए। ये प्रत्यर्पण ऐसे समय में हो रहा है जब अमेरिका इस मामले में कई अन्य संदिग्धों पर मुकदमा चला रहा है और उन्हें सजा सुना रहा है। समरकंद में चल रहे 46वें शतरंज ओलंपियाड के 5वें राउंड में आर प्रज्ञानंद और डी गुकेश ने अनीश गिरी और इरविन एलामी के खिलाफ अहम जीत हासिल की, जिससे भारत ने नीदरलैंड्स पर 3-1 से जीत पक्की कर ली है। लेकिन भारतीय महिला टीम को पोलैंड से हार का सामना करना पड़ा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Ashish P. Abraham. President Draupadi Murmu has said the increasing frequency of natural disasters in recent times underlines the urgent need for strong climate action and global cooperation to mitigate the impacts of climate change. The President was addressing the valedictory session of the 2-day conference on the future of environment and climate dynamics organized by the National Green Tribunal in New Delhi last evening.
0: हाल के समय में हुई अनेक प्राकृतिक आपदाओं ने यह स्पष्ट किया है कि क्लाइमेट इंपैक्ट्स को कम करने के लिए सशक्त क्लाइमेट एक्शन करना आवश्यक है। विश्व का वैज्ञानिक समुदाय चेतावनी दे रहे हैं कि क्लाइमेट रिस्क बहुत गंभीर हो चुका है। इनकी यथासंभव रोकथाम और सामना करने के लिए स्थानीय क्षेत्रीय

ये आकाशवाणी दिल्ली का एआई लाइव न्यूज 24/7 चैनल है। स्टूडियो की घड़ी में रात के 2:10 हुए हैं। लीजिए सुनते हैं कार्यक्रम गीत बहार नॉनस्टॉप फिल्म म्यूजिक। आज के गीत बहार नॉनस्टॉप फिल्म म्यूजिक कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी सरिता। स्वीकार कीजिए मेरा प्यार भरा नमस्कार। कार्यक्रम का आगाज करते हैं फरहान अख्तर और ऋतिक रोशन की आवाज में गाए इस खूबसूरत से गीत के साथ। जुड़े रहिए एआई लाइव न्यूज 24/7 चैनल के साथ।

दोस्तों नॉनस्टॉप गीत संगीत कार्यक्रम गीत बहार अब यहीं संपन्न होता है। अपनी दोस्त सरिता को दीजिए जाने की इजाजत। नमस्कार।

0: ये आकाशवाणी दिल्ली का एआई लाइव न्यूज 24/7 चैनल है। रात के 3 बजने को हैं, अब समाचार सुनिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं पूनम आहूजा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि हाल के दिनों में आई कई प्राकृतिक आपदाओं से स्पष्ट है कि जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने के लिए ठोस प्रयास जरूरी हैं। नई दिल्ली में पर्यावरण और जलवायु गतिशीलता के भविष्य विषय पर आयोजित सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि वैश्विक वैज्ञानिक समुदाय जलवायु जोखिम को लेकर गंभीर चेतावनी दे रहा है।
2: हाल के समय में हुई अनेक प्राकृतिक आपदाओं ने यह स्पष्ट किया है कि क्लाइमेट इम्पैक्ट्स को कम करने के लिए सशक्त क्लाइमेट एक्शन करना आवश्यक है। विश्व का वैज्ञानिक समुदाय चेतावनी दे रहे हैं कि क्लाइमेट रिस्क बहुत गंभीर हो चुका है। इनकी यथासंभव रोकथाम और सामना करने के लिए स्थानीय, क्षेत्रीय और वैश्विक सभी स्तर पर स्टेक होल्डर्स के बीच सक्रिय सहयोग की सुदृढ़ आवश्यकता है।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से गुजरात के 3 दिन के दौरे पर रहेंगी। वे मंगलवार को एकता नगर केवड़िया में 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार वितरण समारोह में विजेताओं को सम्मानित करेंगी। राष्ट्रपति बुधवार को वडोदरा में महाराजा सयाजीराव विश्वविद्यालय के 75वें वार्षिक दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन कल नई दिल्ली में 9वें भारत अंतर्राष्ट्रीय

0: राष्ट्रीय जल सप्ताह का उद्घाटन करेंगे। 5 दिन के इस आयोजन का विषय है जलवायु अनुकूल जल प्रबंधन। 22 से 25 सितंबर तक अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी का भी आयोजन किया जाएगा। उत्तर प्रदेश आतंकवाद निरोधक दस्ता ATS ने वाराणसी में बड़ी कार्रवाई करते हुए झारखंड के प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन तृतीय प्रस्तुति समिति TPC के प्रमुख ब्रजेश गंजू उर्फ गोपाल सिंह भोक्ता को मुठभेड़ में मार गिराया। ब्रजेश गंजू की गिरफ्तारी पर झारखंड पुलिस और राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA ने कुल 30 लाख रुपए का इनाम घोषित किया था। नागालैंड में निर्वाचन आयोग की वोटर लिस्ट की स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन SIR प्रक्रिया के तहत 16 अगस्त से 14 सितंबर तक चले मतदाता गणना चरण में 88.38% मतदाता गणना फॉर्म जमा किए गए। SIR से पहले के 13,97,208 मतदाताओं में से कुल 11,99,456 मतदाताओं ने अपने मतदाता गणना फॉर्म जमा किए। इस गणना प्रक्रिया में 28,944 मृत मतदाताओं की पहचान की गई, जबकि 1,23,749 मतदाताओं की अनुपस्थिति, कहीं और चले गए या अन्य श्रेणियों में रखा गया। इसके अलावा 5,059 मतदाता एक से ज्यादा जगहों पर पंजीकृत पाए गए। इस प्रक्रिया के बाद कल ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी की गई, जिसमें सर्विस वोटर्स सहित 12,06,457 मतदाता शामिल हैं। हेती के राष्ट्रपति जोवेनेल मोइस की जुलाई 2021 में हुई हत्या के मामले में गिरफ्तार किए गए 18 संदिग्धों को रविवार को अमेरिका को प्रत्यर्पित किया गया। इसके साथ ही हेती में चली लंबी कानूनी प्रक्रिया खत्म हो गई। इस हत्या ने कैरेबियन देश को हिलाकर रख दिया था। फ्लोरिडा के दक्षिणी जिले के अमरीकी अटॉर्नी रेडिंग क्विनोन्स ने के मुताबिक इन संदिग्धों पर फ्लोरिडा में मुकदमा चलेगा। उन्होंने कहा कि FBI और अन्य एजेंसियां ये पक्का करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं कि देश के प्रमुख की हत्या से फायदा उठाने की कोशिश करने वाले सभी लोगों को पूरी तरह जवाबदेह ठहराया जाए। ये प्रत्यर्पण ऐसे समय हो रहा है जब अमरीका इस मामले में कई अन्य संदिग्धों पर मुकदमा चला रहा है और उन्हें सजा सुना रहा है। मौसम विभाग ने ओडिशा, तटीय आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में अगले 2 से 3 दिनों के लिए मूसलाधार वर्षा का अलर्ट जारी किया है। वहीं मौसम विभाग के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी में आज आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। दिल्ली में अधिकतम तापमान 34 से 36 डिग्री सेल्सियस के आसपास और न्यूनतम 24 से 26 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। समरकंद में चल रहे 46वें शतरंज ओलंपियाड के 5वें राउंड में आर प्रज्ञानानंद और डी गुरकेश ने अनीश गिरी और इरविन अलामी के खिलाफ अहम जीत हासिल की।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय आशीष पी इब्राहिम। President Draupadi Murmu has said the increasing frequency of natural disasters in recent times underlines the urgent need for strong climate action and global cooperation to mitigate the impacts of climate change. The President was addressing the valedictory session of the 2-day conference on the future of environment and climate dynamics organized by the National Green Tribunal in New Delhi last evening. President Murmu said climate change is creating imbalances in various aspects of human life, including biodiversity, water availability and land resources.
2: Climate change manav astitva ke anek staron par asantulan paida karta hai. Biodiversity loss, water stress aur land degradation isse gehrai se jude hai. Water stress wale kshetron mein farm ponds sthaniya samuday ke liye atyant upayogi siddh ho sakte hain. Ye na keval varsha jal ko क्षेत्रों में रखने के लिए अपितु सिंचाई के लिए समय पर जल उपलब्ध कराते, इनसे भूजल भी रिचार्ज होता है।
1: President Draupadi Murmu will be on a 3-day visit to Gujarat from today. She will preside over the presentation ceremony of the 72nd National Film Awards at Ekta Nagar, Kevadia tomorrow. On Wednesday, the President will grace the 75th annual convocation ceremony of the Maharaja Sayajirao University of Baroda.

ये आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज 24/7 चैनल है। रात के 3:10 और पूरे 15 सेकेंड हो चुके हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम गीत और गजल।

जनाब अब्दुल हमीद आदम साहब का एक मशहूर कता पेश कर रहा हूं। बहुत ही खूबसूरत कता है जिसमें आदम साहब ने रंग खुशबू और नाज की एक खूबसूरत तस्वीर पेश की है। इसी अंदाज की एक नई गजल, एक ताजा तरीन गजल मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं। पहले कतार से

आज के इस कार्यक्रम में हम आपको श्री कृष्ण भक्ति रचनाएं सुनवा रहे हैं। पहले प्रस्तुत है त्यागराजा की एक तेलुगु रचना, सुनिए सहगान रूप।

अब हम आपको श्री स्वाति तिरुनाल की एक भक्ति रचना सुनवा रहे हैं, जिसे स्वर दिया है महाराजापुरम संतानम में।

0: अब आज का अर्चना कार्यक्रम समाप्त होता है।
1: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम नाद ब्रह्म। आइए सुनते हैं कार्यक्रम नाद ब्रह्म, जिसमें आप सुनेंगे गोट्टू वैद्यम उषा विजय कुमार रागम चारुकेसी।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम नाद ब्रह्म कर्नाटक म्यूजिक के। इस कार्यक्रम में अभी आपने सुना उषा विजय कुमार का रागम चारुकेसी में गोटू वैद्यम वादन।

ये आकाशवाणी दिल्ली का हिंदी प्रेस चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। आज सोमवार है, शक संवत 1948 के भाद्रपद मास की 30वीं तिथि, तदनुसार 21 सितंबर 2026। सुबह के 4:53 और पूरे 40 सेकंड हो चुके हैं। अब हमारे कार्यक्रम आरंभ होते हैं।

ये आकाशवाणी दिल्ली का AIR इंद्रप्रस्थ चैनल है। मिडीवेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज, DRM 810 किलोहर्ट्ज पर। श्रोताओं, सुबह 5 बजने को हैं और अब आप समाचार सुनेंगे, लेकिन उससे पहले आपको हम बता दें आज प्रसारित होने वाले कुछ खास कार्यक्रम जिन्हें आप इंद्रप्रस्थ पर सुन सकते हैं।

अब से थोड़ी देर में यानी 5:10 पर आप सुनेंगे खास कार्यक्रम आओ योग करें, और उसके बाद 5:20 पर आपको सुनाएंगे देशभक्ति गीत। 5:30 पर सुबह हर रोज की तरह आज भी आप सुनेंगे कार्यक्रम स्वर रंजनी। हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक के इस खास कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे पवार टंडन का बांसुरी वादन राग ललित में।

सुबह 10 बजकर माफ कीजिएगा सुबह 6 बजकर 10 मिनट पर आप सुनेंगे कार्यक्रम वंदना और 6 बजकर 40 मिनट पर सुनेंगे धर्म ग्रंथों से प्रेरणा कार्यक्रम चिंतन में आज का ये विषय होगा। हर रोज की तरह आज भी सुबह 6 बजकर 45 मिनट पर आप सुनेंगे श्री रामचरितमानस से संगीत में पाठ और 6 बजकर 55 मिनट पर सुनेंगे संस्कृत में समाचार।

0: सुबह 7:10 पर कार्यक्रम संगीतिका होगा और 7:30 पर आप सुनेंगे गीतों भरी गुड मॉर्निंग। तो श्रोताओं, ये वो कार्यक्रम थे जिन्हें आज आप इंद्रप्रस्थ पर सुन सकते हैं। सुबह के 5 बजने को हैं, अब समाचार होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मनोज। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि हाल के दिनों में आई कई प्राकृतिक आपदाओं से स्पष्ट है कि जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने के लिए ठोस प्रयास जरूरी हैं। नई दिल्ली में पर्यावरण और जलवायु गतिशीलता के भविष्य विषय पर आयोजित सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि वैश्विक वैज्ञानिक समुदाय जलवायु जोखिम को लेकर गंभीर चेतावनी दे रहा है।
2: हाल के समय में हुई अनेक प्राकृतिक आपदाओं ने यह स्पष्ट किया है कि क्लाइमेट इम्पैक्ट्स को कम करने के लिए सशक्त क्लाइमेट एक्शन करना आवश्यक है। विश्व का वैज्ञानिक समुदाय चेतावनी दे रहे हैं कि क्लाइमेट रिस्क बहुत गंभीर हो चुका है। इनकी यथासंभव रोकथाम और सामना करने के लिए स्थानीय, क्षेत्रीय और वैश्विक सभी स्तर पर स्टेक होल्डर्स के बीच सक्रिय सहयोग की सुदृढ़ आवश्यकता है।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से गुजरात के 3 दिन के दौरे पर रहेंगी। वे कल एकता नगर केवड़िया में 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह की अध्यक्षता करेंगी। श्रीमती मुर्मू बुधवार को वडोदरा में महाराजा सयाजी राव विश्वविद्यालय के 75वें दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। वे ब्रह्मा कुमारी के विश्व नवीनीकरण के लिए आध्यात्मिक जागृति अभियान का शुभारंभ और वडोदरा में ग्लोबल स्पिरिचुअल पैलेस स्ट्रीट केंद्र का उद्घाटन भी करेंगी। इस अवसर पर राष्ट्रपति ब्रह्मा कुमारी नडियाड के विकसित भारत के लिए युवा राष्ट्र निर्माण के लिए आंतरिक शक्ति का जागरण अभियान का वर्चुअल शुभारंभ भी करेंगी। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन कल नई दिल्ली में 9वें भारत अंतर्राष्ट्रीय जल सप्ताह का उद्घाटन करेंगे। 5 दिन के इस आयोजन का विषय है जलवायु अनुकूल जल प्रबंधन। 22 से 25 सितंबर तक अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी का भी आयोजन किया जाएगा। नागालैंड में निर्वाचन आयोग की मतदाता सूची की विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया के तहत 16 अगस्त से 14 सितंबर तक चले मतगणना गणना चरण में 88.38% मतदाता गणना फॉर्म जमा किए गए। एसआईआर से पहले के 13,57,208 मतदाताओं में से कुल 11,99,456 मतदाताओं ने अपने मतदाता गणना फॉर्म जमा किए। इस गणना प्रक्रिया में 28,944 मृत मतदाताओं की पहचान की गई, जबकि 1,23,749 मतदाताओं को अनुपस्थित

कहीं और चले गए या अन्य श्रेणियों में रखा गया। इसके अलावा 5,059 मतदाता एक से ज्यादा जगहों पर पंजीकृत पाए गए। इस प्रक्रिया के बाद कल मसौदा मतदाता सूची जारी की गई, जिसमें सर्विस वोटर्स सहित 12,06,457 मतदाता शामिल हैं। सदियों के इंतजार के बाद भव्य राम मंदिर के निर्माण से भगवान राम की नगरी अयोध्या में विकास के एक नए अध्याय की शुरुआत हुई। अयोध्या नगरी अब धार्मिक, पर्यटन और विकास के वैश्विक पटल पर प्रमुखता से उभरी है। केंद्र और राज्य सरकारों के प्रयासों से अयोध्या में विकास के नए दौर की शुरुआत हुई है और ये नगरी एक बार फिर सनातन धर्म के प्रमुख वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित हो रही है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के उच्च स्तरीय सप्ताह के लिए भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व करेंगे। साथ ही डॉक्टर जयशंकर इस महीने की 26 तारीख को संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित भी करेंगे। यात्रा के दौरान वे विभिन्न बहुपक्षीय और द्विपक्षीय बैठकों में भी हिस्सा लेंगे। रूस में युद्ध के दौरान हुए पहले संसदीय चुनाव के लिए मतदान कल रात समाप्त हो गया। इस चुनाव में राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की नीतियों का कोई विरोध नहीं था और क्रेमलिन का दबदबा और मजबूत होना लगभग तय है। 3 दिन तक चले इस सप्ताह के आखिरी दिन यूक्रेन की सेना ने रूस पर 1,000 से ज्यादा ड्रोन दागे, जिनमें से सैकड़ों मॉस्को की ओर दागे गए थे। हैती के राष्ट्रपति जोवेनेल मोइस की जुलाई 2021 में हुई हत्या के मामले में गिरफ्तार किए गए 18 संदिग्धों को रविवार को अमेरिका को प्रत्यर्पित किया गया। इसके साथ ही हैती में चली लंबी कानूनी प्रक्रिया खत्म हो गई। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज पर। श्रोताओं, सुबह के 5:10 और पूरे 30 सेकंड हो चुके हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम आओ योग करें।

नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर हिमानी शोखंत, आपकी योग विशेषज्ञ। आज हम चर्चा करेंगे कि किस आसन को करने से आप अपनी दृष्टि दोष में लाभ पा सकते हैं। इसके लिए आज हम करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण आसन जिसका नाम है ऊष्ट्रासन। ऊष्ट्र का अर्थ होता है ऊंट। तो आइए सीखते हैं कि किस प्रकार ऊष्ट्रासन किया जाता है। घुटनों को जमीन पर टिकाते हुए अपने दोनों पैरों की जांघ और पंजों को आपस में मिला लीजिए। पंजों को बाहर की तरफ रखते हुए जमीन पर फैला दें। घुटनों और पंजों के बीच 1 फुट की दूरी रखते हुए घुटनों के बल खड़े हो जाएं। श्वास लेते हुए पीछे की ओर झुकने का प्रयास। इस बात का ध्यान रहे कि पीछे झुकते समय गर्दन में किसी भी प्रकार का कोई झटका ना लगे। पीछे की ओर झुकें और धीरे धीरे दाहिने हाथ से दाहिनी एड़ी और बाएं हाथ से बाएं एड़ी को पकड़ने का प्रयास करें। अंतिम स्थिति में जांघ को जमीन पर लंबवत रखते हुए सिर को हल्का सा पीछे की ओर खींचकर रखें। अगर संभव हो तो पूरे शरीर का भार अपनी भुजाओं और पैरों पर टिकाए रखें। यह हमारी ऊष्ट्रासन की स्थिति होती है। बहुत लोगों में देखा गया है कि वह ऊष्ट्रासन नहीं कर पाते, तो इसके लिए आप अर्धऊष्ट्रासन का भी प्रयास कर सकते हैं। अर्धऊष्ट्रासन के लिए आपको कुछ नहीं, बस अपने दोनों हाथों को अपनी कमर पर टिकाएं और धीरे धीरे श्वास भरते हुए गर्दन और वक्षस्थल के भाग को पीछे की ओर ले जाएं और उस स्थिति में कुछ क्षण रुके और धीरे धीरे श्वास भरते हुए ही आगे सामान्य स्थिति में वापस आ जाए। तो यह

अर्धउष्ट्रासन की अभ्यास विधि है। उष्ट्रासन दृष्टि दोष में अत्यंत लाभदायक होता है, पर इसके लिए आपको उष्ट्रासन का अभ्यास प्रतिदिन करना जरूरी है और एक दिन एक सेशन में आप उष्ट्रासन का अभ्यास 3 से 4 बार अवश्य दोहराएं। उष्ट्रासन करने के बाद आप विश्राम स्थिति में वापस आ जाएं और कुछ क्षण वहीं रुकें। विश्राम स्थिति या तो आप वज्रासन में बैठ सकते हैं या आप दंडासन में भी विश्राम कर सकते हैं। तो आज हमने सीखा कि किस प्रकार आप प्रतिदिन उष्ट्रासन करने के अभ्यास से अपने दृष्टि दोष को कैसे दूर कर सकते हैं और अपनी आई साइट को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। प्रतिदिन करें योग, रहें निरोग।

0: किसी भी पोजीशन में और किसी भी काम को 20 मिनट से ज्यादा की अवधि में ना करें। 30 सेकंड का ब्रेक लेकर के आंखों को रिलैक्स किया, अपनी सांस को थोड़ी देर देख लिया, यानी थोड़ा आपे में आ जाना है, क्योंकि जो आपे में नहीं है फिर वो स्यापे में रहता है। तो हमें स्यापे में नहीं रहना,
1: जी
0: हमें
1: जी
0: आपे में जीवन जीना है।
1: जी
0: और हमारे गुरुदेव कहते हैं लैप जो है ना वो बच्चे को रखने के लिए होती है, टॉप को रखने के लिए नहीं
1: जी
0: होती है ना। तो एक
1: बिल्कुल
0: तो इसे लैपटॉप को लैप में नहीं रखना, पहली चीज। अभी तो
1: जी
0: बहुत अच्छी अच्छी बेड टेबल्स भी आ जाती हैं, उनको रख के, यानी जब आप गोद में लैपटॉप को रखते हैं तो ये आपके जितने भी प्रजनन अंग हैं उनको हाँ इफेक्ट करता है एडवर्स रूप में। तो गोद में या जेब में मोबाइल फोन रखना, इससे बचें।
1: जी
0: और सर्वाइकल, जहाँ हम सर्वाइकल की बात करते हैं, चाहे वो सर्वाइकल स्पैज्म हो जाता है कुछ लोगों को, कुछ को स्पॉन्डिलाइटिस है या सर्वाइकल पेन है, तो
1: जी
0: ऐसे में बहुत महत्वपूर्ण, क्योंकि विजुअली तो हम नहीं दिखा सकते।